मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

तो लीजिए जनाब, एक बार फिर से हम आपके पास आ चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और कार्यक्रम भोर सुहानी, और आपके साथ हूँ मैं रूपा धवन। तो दोस्तों, कहते हैं कि सुबह का जो पहला घंटा होता है ना, वही तय करता है कि आपका पूरा दिन कैसा बीतेगा आज। तो आज की सुबह खुद से एक छोटी सी बात कहिए, मैं आज के दिन का आभारी हूँ, जो बीत गया वो कल था, जो सामने है वो एक नया अवसर है। आज जब आप चाय या पानी का पहला घूंट ले, तो बिना किसी जल्दबाजी के बस उस पल को महसूस कीजिएगा। अपनी चिंताओं को थोड़ी सी देर के लिए दरवाजे से बाहर ही रहने दें। ओहो, मेरी तो चाय भी ठंडी हो गई। तो लीजिए मेरे साथ फिलहाल चाय का, चुस्कियों का आनंद, और गाते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जी हाँ, चाय पीकर तो थोड़ी सी आप में अभी चुस्ती दुरुस्ती आ ही गई होगी। क्या कहा, अभी आप बिस्तर पर ही हैं? ओहो, अगर बिस्तर पर ही हैं तो धीरे से उठिए जनाब और हल्का गुनगुना पानी पीजिए, अपनी खिड़की खोलिए और ताज़ी हवा को अंदर आने दीजिए। सिर्फ 5 मिनट अनुलोम विलोम या प्राणायाम कीजिए और पूरा दिन बस तरोताज़ा रहिए।

दोस्तों, जब आप सुबह उठते ही ये तय कर लेते हैं कि आज का दिन मेरा है और मैं हर चुनौती का सामना मुस्कुराकर करूंगा या करूंगी, तो आधी जंग तो आप वहीं जीत जाते हैं। जिंदगी के इस मैदान में हार मुझे स्वीकार नहीं, मेरी मेहनत मेरी ताकत किसी की मोहताज नहीं। जब तक मंजिल के शिखर पर परचम ना लहरा दूं, रुकूंगा नहीं झुकूंगा नहीं, ये वादा निभाऊंगा। तो आज का दिन, आज की सुबह नई ऊर्जा के साथ आई है, तो इसे यूं ही अपने हाथों से ना जाने दें। पुरजोर कोशिश के साथ आज के दिन के साथ एक नई शुरुआत करें।

दिल के रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, हर रास्ते का कोई अंजाम नहीं होता। अगर निभाने की चाहत हो दोनों तरफ तो कोई भी रिश्ता नाकाम नहीं होता। इन्हीं पंक्तियों के साथ रूपा अनुमति लेती है भोर सुहानी से। खुश रहिए, आबाद रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेती है रूपा। आप सुनेंगे कुछ ही पलों में समाचार। नमस्कार।

सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना जरूरी था। बयान में कहा गया है कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से रूस की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। वे व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग

पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉ जयशंकर यात्रा के दौरान रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स JRSE लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। शिलान्यास समारोह के बाद JRSE भवन में लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती किरंगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नवी मुंबई के कपड़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण मॉडल का विस्तार महाराष्ट्र के अन्य नगर निगमों में भी करने का आह्वान किया है। इससे बढ़ते कपड़ा अपशिष्ट की समस्या से निपटने के साथ साथ

0: कम एक पदक जीतने वाले सिर्फ दो देश हैं, चीन और भारत। और कितने युवाओं को सपने देखने की वजह दी है, कितनों के दिलों में उम्मीद जगाई है, ये हौसला दिया है कि वो भी विश्व स्तरीय मंच पर कुछ कर सकते हैं, उसका कोई माप नहीं। शायद इसलिए इस हफ्ते उन्हें अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा भी भारतीय सरकार ने की है।
1: Being into that club, I feel like so happy. There is a lot of journey we have in future. I feel like this is just a start. We just need to take this as a positive and in a confidence way. I feel like this all moments and getting this medal and even that Arjuna Award this week when they announced, I feel like that also give us some other boost in this tournament.
0: इस कैटेगरी के दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की बेक हाना और ली सो ही की जोड़ी ने जीत हासिल कर फाइनल में प्रवेश पाया है। वहीं पुरुषों के सिंगल्स में पहला सेट हारने के बाद फ्रांस के एलेक्स लानियर ने मजबूत वापसी की और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के फाइनल में पहुंचने वाले पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी बन गए। लेकिन फाइनल से पहले जज्बातों में बह जाने और जश्न मनाने से एलेक्स ने साफ इनकार कर दिया।
2: I mean, I don't feel that emotional at the moment. I think I'm a little bit too tired, but I'm also proud of the way I managed that match. Also, mentally, I'm not really thinking how big it is. We haven't done the tournament yet, so definitely I'm still in the tournament and I don't want to think about any kind of historical aspect or anything.
0: उनसे हारने वाले विक्टर लाई को कांस्य पदक मिला है, जो उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में दूसरा पदक है।
3: Of course, I'm really proud to have another world's medal. Not everyone can say that they have two, so I'm really proud. First of all, hopefully we're inspiring some young kids from our countries.
0: एलेक्स का सामना फाइनल में जापान के कोडाई नारोका के साथ होगा। महिलाओं के सिंगल्स में जापान की अकाने यामागुची और दक्षिण कोरिया से आने वाली मौजूदा ओलंपिक चैंपियन आन से युंग आमने सामने होंगी। पुरुषों के डबल्स में खिताबी भिड़ंत में होंगे मौजूदा ओलंपिक चैंपियन मलेशिया के एरन चिया और सो वुई यिक। उनसे भिड़ेंगे भारतीय प्रशंसकों का दिल तोड़ देने वाले चीन के लियांग और वांग। मिक्स डबल्स में फ्रांस के गिक्वेल और डेलरू की जोड़ी चीन की फेंग और हुआंग की जोड़ी से भिड़ेगी। प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और एडिटर वंदना के साथ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से मोहम्मद शाहिद आजमी की रिपोर्ट लिए मैं दर्पण टिकिया।

सब कुछ इतना यूनिक था कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। और आज के इस स्पेशल सेगमेंट में हम उनकी लाइफ, उनके फिल्म्स और उनकी अनफॉरगेटेबल जर्नी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गो बैक टू वेयर इट ऑल स्टार्टेड। सायरा बानो जी का जन्म एक फिल्मी बैकग्राउंड में हुआ। उनकी मदर नसीम बानो भी एक वेल नोन एक्ट्रेस थी। और फिर सिर्फ 16 इयर्स में सायरा बानो ने बॉलीवुड में एंट्री की विद द फिल्म जंगली, विच वॉज इन 1961 अपोजिट शमी कपूर। और क्या एंट्री थी! याहू वाला आइकॉनिक मोमेंट तो आज भी लोग भूल नहीं पाए। उनकी नेचुरल ब्यूटी और इनोसेंस ने सबके दिल जीत लिया। लोग कहने लगे, अ न्यू स्टार इज बॉर्न। फ्रॉम दैट पॉइंट देर वॉज नो लुकिंग बैक। सो लेट्स लिसन टू वन ऑफ हर फेमस एंड मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग फ्रॉम हर फिल्म जंगली। स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9।

FM Rainbow 101.9 with me, your RJ Lahri. It's 10:50 in studio clock. Aaj hai Saira Banu ji ka birthday. And ye jo famous film Saira Banu ji ka hai, usme se do teen hai, Padosan, Purab aur Paschim, Victoria number 203 aur Sagird. सब में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. और आते हैं पड़ोसन. वो फिल्म में उसकी केमिस्ट्री सुनील दत्त के साथ और किशोर कुमार का कॉमेडी प्योर गोल्ड था. और सायरा बानू जी ने अपनी ग्रेस से हर रोल को स्पेशल बना दिया. उनका चार्म इतना नेचुरल था कि ऑडियंस उन्हें स्क्रीन पर देखते ही कनेक्ट कर लेती थी. बट उनकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर अभी बाकी है और वो है उनका लव स्टोरी. नाउ कम्स द मोस्ट आइकॉनिक पार्ट ऑफ हर लाइफ, दैट इज हर लव स्टोरी. सायरा बानू जी ने शादी की लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार से इन 1966. और ये सिर्फ एक मैरिज नहीं थी, ये एक टाइमलेस लव स्टोरी था. सायरा जी हमेशा कहती थी कि उन्हें बचपन से ही दिलीप कुमार साहब पर क्रश था. शादी के बाद उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया और फिल्म्स कम कर दी. बट उनका डेडिकेशन और लव फॉर दिलीप कुमार साहब वो हर इंटरव्यू में क्लियरली दिखता था. उन्होंने उनका हर स्टेप पर साथ दिया एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह. और इसी वजह से उनकी जोड़ी बॉलीवुड की मोस्ट रेस्पेक्टेड और लव्ड जोड़ियाँ में से एक बनी. स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 एंड वी विल लिसन टू अनदर वंडरफुल ट्रैक फ्रॉम हर फिल्म्स.

0: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, मन की बात के विस्तार के रूप में आज हम इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं दो भेंट वार्ताएं, जो ऐसे विषयों पर आधारित हैं जो हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, अमृत सरोवर और कैच द रेन। लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं इन विषयों के बारे में मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्गार।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से घास निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदयाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी है और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, ओडिशा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है।
0: रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, ये दोहे की केवल एक पंक्ति नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भाग्य तय करने वाला सच है। पानी जो हमारी प्यास बुझाता है, फसलों में जान डालता है और जीवन का आधार बनता है। लेकिन ये भी सच है कि अगर यही पानी, यही जल धीरे धीरे हमारी जमीन से गायब होने लगे तो सब तबाह होना शुरू हो जाएगा। इसी जल संकट को दूर करने और हमारी आने वाली पीढ़ियों के कल को सुरक्षित करने के लिए शुरू हुआ एक अनूठा अभियान, मिशन अमृत सरोवर। अमृत सरोवर केवल पानी का तालाब या पोखर नहीं है, बल्कि ये हमारी ग्रामीण संस्कृति, सामुदायिक एकता और जल संरक्षण की एक नई क्रांति है। देश के हर जिले में 75 ऐसे तालाबों का पुनरुद्धार और निर्माण किया जा रहा है, जो भूजल स्तर को बढ़ाने के साथ साथ हमारे गांवों को एक नया जीवन दे रहे हैं। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में लीजिए आपको सुनवा रहे हैं ऐसी ही एक प्रेरित करने वाली भेंट वार्ता। ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी जबलपुर के सौजन्य से प्राप्त हुई है।
2: श्रोताओं, बहुत बहुत नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत परमार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण, कैच द रेन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के महत्व को बताते हुए देश भर में हो रहे उल्लेखनीय कार्यों का जिक्र करते हुए नरसिंहपुर जिले में अमृत सरोवरों के संवर्धन और पुनर्जीवन की सराहना की। प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय मंच से जिले के कार्यों का उल्लेख किया जाना निश्चित रूप से नरसिंहपुर जिले के लिए गौरव और सम्मान का विषय है। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमने हमारे विशेषज्ञ अतिथियों को आज आमंत्रित किया है। श्रीमती रजनी सिंह, कलेक्टर जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर श्री गजेंद्र सिंह नागेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
2: रजनी मैम, अमृत सरोवर का जब जिक्र होता है तो एक छवि हमारे मानस पटल पर बनती है, साफ स्वच्छ पानी से लबालब भरे हुए तालाबों की, सरोवरों की। और जब स्वयं प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम में इसका उल्लेख कर रहे हों तो हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि अमृत सरोवरों के संवर्धन, जल संरक्षण, जल स्रोतों के संवर्धन के लिए आपने किस प्रकार कार्य किया, किस प्रकार इसकी

0: योजना तैयार की गई और कैसे इस पूरे अभियान को अंजाम दिया गया?
1: पिछले कई वर्षों से लगातार भारत सरकार के द्वारा और मंत्री शासन द्वारा जल संरक्षण को लेके कई प्रयास किए जा रहे हैं। उसी तारतम्य में JSJB जल संचय जन भागीदारी अभियान और मंत्री शासन का जल गंगा संवर्धन अभियान ये प्रारंभ किए गए हैं। इन्हीं दोनों अभियानों के अनुक्रम में जिले में अमृत सरोवरों का ये काम प्रारंभ हुआ था और पिछले 2 वर्षों में लगभग 63 अमृत सरोवर जिले में निर्माण किए गए। इन जो अमृत सरोवर

0: कैंपेन जो भारत सरकार ने शुरू किया उसके अंतर्गत जो हमने कुछ काम लिए उसमें अमृत सरोवरों को मुख्य रूप से लिया गया, क्योंकि अमृत सरोवर के जो साइज होते हैं वो उस क्षेत्र में एक बड़ा जल भराव का सेंटर होता है और उस क्षेत्र में जल का हम कहें संग्रहण का एक अच्छा माध्यम बनता है। वो हम लोगों ने प्लानिंग की कि पहले हमने चिन्हित किए कि कितने हमारे पास अमृत सरोवर बने हुए हैं और हमारे जो कुछ अपूर्ण थे उनको पूर्ण करना, हम उनको पूर्ण कर पाए, और जो निर्मित हो गए हैं उनमें गाद निकासी करके उनकी जल भराव क्षमता को मेंटेन करें। तो हम लोग लगभग जनवरी फरवरी में इसकी कार्ययोजना बनाई। और इसके साथ ही जैसे मैंने कहा कि जल संचय जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत हमने जो हमारे खेत तालाब जो भी एक तरह के सरोवर होते हैं जो छोटी साइज के रहते हैं, तो खेत तालाब लगभग हमने 1100 खेत तालाबों की योजना बनाई जिन्हें हमें पूर्ण करना था। और इन दोनों ही जो हम अगर तालाबों की बात करें तो दोनों ही कार्यों में लगातार प्रयास करके हम लोगों ने जून तक सभी एक तो कार्य पूर्ण किए जो अधूरे थे और जिसकी क्षमता कम हो गई थी उनको उनकी जल भराव क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य ध्येय वाक्य होता है कि कैच द रेन वेयर इट इज जो है उसको लेके हमने प्रयास किया कि हम उसको चरितार्थ कर पाए और अधिक से अधिक वर्षा जल को संचय कर पाए अपने जिले में।
1: जी गजेंद्र सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे अभियान में, इस पूरे जल संरक्षण और अमृत सरोवर के अभियान में सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी बाधा क्या रही मैदानी स्तर पर नरसिंहपुर जिले में कार्य करते हुए, जब आपने जल संरक्षण का कार्य और अमृत सरोवरों का संवर्धन का कार्य शुरू किया, सर आपसे जानना चाहेंगे।
2: देखिए, जहाँ तक जल संरक्षण के कार्यों में समाज के रुख का प्रश्न है, थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं धारणा है कि कोई काम अगर सरकार नीत है तो वो काम सरकार के नुमाइंदे ही करेंगे, एक ऐसी धारणा है। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट जो हम समझते हैं कि जल के विषय में तो अनिवार्य आवश्यकता है। हम बिना समाज के, बिना स्थानीय संसाधनों के, मानव प्रबंधन के, महिलाओं के, युवा साथियों के नहीं किया जा सकता। तो जब हमने इन जल इकाइयों के निर्माण या कि उनकी पूर्णता का विषय रखा, तो सहज रूप से जो एक पहला रहता है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, कि वो परखते हैं, थोड़ा देखते हैं कि आप किस स्तर की बात कर रहे हैं, वो उसमें औपचारिकता है या वास्तविक रूप से आप उसमें अपना इनपुट दे रहे हैं। तो लोग धीरे धीरे शामिल हुए, और पहले उनकी जो जिज्ञासा थी वो कुछ प्रश्नों के रूप में थी, लेकिन वो बाद में कहीं ना कहीं समागम के रूप में और साहचर्य के रूप में आती चली गई। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि गोटेगांव जनपद में मेख में एक तालाब था, लगभग 1959 में वो वहाँ के कुछ परिवारों ने दान दिया था जल संरक्षण इकाई के लिए। बाद में वो फिर अतिक्रमण होकर और उसमें खेतियाँ होती रही, लेकिन इसी अभियान में जब उसको लिया गया और गांव ने ही सहयोग करके उस पूरे 21 एकड़ को एक जल इकाई के रूप में, सरोवर के रूप में विकसित किया। और ये जल संरक्षण के जो कार्य हैं, न केवल ये केवल भौतिक उपागम है या कि जल ही रोक रहे हैं, लेकिन समाज को भी कहीं ना कहीं जोड़ना एक महत्वपूर्ण बात है।
1: एक प्रशासक के तौर पे क्या चुनौतियां रही आपके लिए?
2: एक तो नरसिंहपुर के लिए अगर हम बात करें, नर्मदा जी का कछारी क्षेत्र है, परंपरागत रूप से इसमें जल का स्तर रहा है, भूमिगत जल का स्तर काफी अच्छा रहा, लेकिन इधर धान, गेहूं और आपके गन्ने की फसल जो कि थोड़ा सा ज्यादा पानी की खपत करते हैं, उनके लगातार उपयोग से और बोरिंग की अधिकता के कारण जिले में जल का स्तर बहुत तेजी से डिप्लीट किया है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ खेती में कई कई दफे एक एक किसान के पास छह छह आठ आठ बोर हैं, वो असफल हुए, और लगभग 3 क्रॉप 4 क्रॉप का जिला है। तो वो जब रबी से लेके जब सिंचाई गर्मी के पूरे सीजन होती है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भूगर्भीय जल का स्तर कैसे गिरेगा। तो लोगों को इस बात के लिए तैयार करना कि उनकी उपजाऊ भूमि में ही हम जल इकाइयां का निर्माण करें और उसके अपने हिस्से की जमीनों को वो कुछ मामला में जल संरक्षण के लिए छोड़ा, ये समझाना एक महत्वपूर्ण बात है। फिर मतलब ऐसे भी उदाहरण देखे गए कि फॉर्म पॉन्ड बने हुए हैं और उसमें वो पानी न रोकते हुए उसमें वो दूसरी खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनके कुछ धारणाओं को थोड़ा सा परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। फिर स्थानीय समुदाय को जोड़ना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। पंचायत के हमारे जो इकाई हैं, सरपंच सचिव हैं, जो कि निश्चित रूप से उनका भी मानस वही होता है जो गांव का होता है लगभग, तो उससे फिर अपना अभीष्ट निकालना, उससे वो सहयोग प्राप्त कर लेना, स्वीकृत कार्यों को पूरा कराना, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो जैसे कि माननीय मैडम ने कहा कि 1500 से अधिक हमारे ऐसे काम जो मनरेगा के रहे हैं उनको भी इसी अवधि में हमने पूरा कराया है और लोगों का सहयोग लिया है। और फिर बाद में तो बात ये हुई कि लोगों ने खुद आगे बढ़ के सहयोग दिया, विभिन्न इकाइयों ने, और वो हमारे चाहे इंडस्ट्रीज के लोग हैं, उन्होंने भी मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाया।
1: यानी कि एक समन्वित प्रयास रहा है पूरे जिले का, तब ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, अमृत सरोवर और जल संरक्षण पर बातचीत आगे भी जारी रहेगी। लेकिन पहले हमारे अतिथियों की पसंद का एक गीत सुन लेते हैं। रजनी मैम, कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: सावन का महीना है तो मुझे लगता है लगी आज सावन।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज की हमारी बातचीत का विषय है नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में अमृत सरोवरों का पुनरुद्धार और जल संरक्षण, जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जुलाई माह के मन की बात कार्यक्रम में किया था। बातचीत का ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रजनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा अभियान अमृत सरोवर और जल संरक्षण का आपने सफलतापूर्वक किया, इसमें अलग अलग व्यक्तियों का, विभागों का, समुदायों का किस प्रकार योगदान रहा है, कैसे ये समन्वय बनाया आपने?
1: नरसिंहपुर जिले में JSJB 2.0 और जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत, क्योंकि हमारे यहाँ जैसा कि आपको जानकारी है कि कृषि प्रधान जिला है और बहुत उपजाऊ जमीन है, ऐसा कहा जाता है कि कुछ क्षेत्रों में तो कि एशिया की सबसे उपजाऊ जमीन नरसिंहपुर जिले में है और बहुत लोग इसमें उसका उपयोग करते हैं, हमारे यहाँ मल्टीपल टाइप के क्रॉप्स होते हैं। तो शासकीय जो भूमियां भी हैं जो बहुत बड़ी संख्या में है, उनमें भी स्थानीय स्तर पर लोग संज्ञान में आए कि लोग कृषि कर रहे हैं, तो उससे जो और कृषि को लेकर इतना उत्साह है लोगों में, इतना लगाव है कि वो जरा सी भी भूमि, मतलब ऐसा है कि उसको खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो और जैसा कि अभी सीओ साहब ने आपको बताया कि नर्मदा नदी हमारे यहाँ बहुत मतलब लंबा एक उनका क्षेत्र है और सारे घाटों के आसपास ये खेती, लगातार खेती के कारण जो हमारा इरोजन, सॉइल इरोजन बहुत बढ़ता जा रहा है, तो ये सब समस्याएं हमारे सामने थी। तो हम जब ये अभियान आया तो हम लोगों ने एक इसको सबको एक होलिस्टिक प्लान इसको लेकर तैयार किया कि कैसे हम इन सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए किस प्रकार के स्ट्रक्चर जो हैं वो सोच सकते हैं, क्योंकि जैसे अमृत सरोवर है वो कुछ विशिष्ट स्थानों पर स्पेसिफिक टोपोग्राफी होनी चाहिए या स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए, वहीं बन सकते हैं और रिसोर्स की भी उसके लिए आवश्यकता होती है, तो जहां वो आवश्यक है वहां अमृत सरोवर, अन्य जगहों पर कुछ जगहों पर हमने जो कंट्रोल ट्रेंचेस होते हैं, जो कंटिन्यूस या स्टेगर्ड कंट्रोल ट्रेंच होते हैं, वो बहुत सारे हमने लिए, क्योंकि ऐसी भूमियां जो बहुत समय से खेती के लिए उपयोग हो रही हैं उनको मुक्त करा के और वाटर कंजर्वेशन सुनिश्चित करना और दोबारा उसका उपयोग उस प्रकार से ना हो पाए, अतिक्रमण ना हो पाए, ये सुनिश्चित करना एक बड़ा टास्क था हमारे लिए। तो जिले में हम लोगों ने हमारे सभी मतलब हमारे सीओ साहब और हमारे सभी रेवेन्यू ऑफिसर जितने हैं, तहसीलदार और SDMs, उनको एक सूची प्रोवाइड की गई और सभी सरपंचों की हमने लगातार 2 महीने बैठक की, मतलब व्यक्तिगत बैठक की सरपंचों की, सचिवों की, और उनसे ये जानकारी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कितनी भूमि उपलब्ध है और वो किस प्रकार से उसमें उपयोग हो रहा है। और फिर सबके सहयोग से हमने प्रयास किया, लगभग 900 एकड़ भूमि जिले में हम लोगों ने मुक्त कराई और उसमें से लगभग 450 एकड़ पे हमने कंट्रोल ट्रेंचेस निर्माण कराए। तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि भविष्य में एक तो वो खेती के लिए दोबारा उपयोग नहीं हो पाएगी, दूसरा अगर हम उसके जल संरक्षण की बात करें तो लगभग 2 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी एक वर्ष में वो संरक्षित कर पाएंगे जो हमारे कंट्रोल ट्रेंचेस हैं। जिस समय ये काम चल रहे थे उसमें नए कार्य जो हमारे उसमें नरेगा स्कीम मनरेगा चल रहा था और जीवी राम जी आ चुका था, तो नए कार्य हम नहीं कर पा रहे थे। तो हमने इसमें जितने भी समाज के अंग होते हैं, चाहे वो पंचायतें हों, सामाजिक संस्थाएं हों, कुछ इंडिविजुअल लोग हैं जो सक्षम लोग हैं, बड़े किसान हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट टाइप के, उन सब से मीटिंग करके सबसे मतलब ये सहयोग लिया कि जिसके पास चाहे मानव संसाधन हो, चाहे हमारे पास मशीनरी हो या अन्य तरह के रिसोर्सेज हैं जो उपलब्ध करा पाए।

0: वो हम उसमें करें, तो उसमें इन सब के सहयोग से आप मतलब हम लगभग 70,000 ट्रेंचेस बनाए हैं जिसमें बिल्कुल भी शासकीय राशि का उपयोग नहीं किया गया। तो और इसके अलावा जैसे हमारे शासकीय स्कूल या प्राइवेट स्कूल उनमें हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनवाए, नगर पालिकाओं में हमने स्ट्रक्चर बनवाए। हमने ये प्रयास किया कि समाज के सभी अंग, चाहे वो शासकीय हो, निजी हो, उद्योग हो, स्कूल हो, संस्थाएं हो, सब मिलके अगर जिस भी स्थान पे हैं अगर वो ये देखें कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है और सब अपने अपना प्रयास करेंगे तो हम इसमें कुछ अचीव कर पाएंगे। तो यही लगभग हमने 70,000 संरचनाएं जो जेएसजेबी में बनाई है उसमें सभी प्रकार की संरचनाएं हैं और ये सबके मतलब हम कहें एक क्यूमुलेटिव सहयोग से ही हम ये अचीव कर पाए जो भी स्थिति है। इसका रिजल्ट क्या होगा ये तो हम अगले सीजन में ही मतलब देख पाएंगे। हमने वाटर लेवल्स लिए हैं पंचायतों में कुओं के बोरवेल्स के लिए अभी कि अभी क्या है और संरचनाओं के बाद क्या स्थिति होती है, लेकिन निश्चित रूप से जितना जल हम जैसे मैं बताया कि 2 करोड़ घन मीटर हमने ट्रेंचेस में किए, ऐसे ही लगभग 2 लाख घन मीटर हमारा जो तालाब है उनके माध्यम से, तो इस तरह से बहुत मतलब एक हम कहें सफिशियंट नंबर हम कहें जो हमारे जल संरक्षण में हम लोग इस बार प्रयास कर पाए।
1: जी जी गजेंद्र जी, जल संरक्षण संवर्धन और अमृत सरोवर के इस पूरे अभियान के बाद स्थानीय लोगों को, किसानों को इस पूरे अभियान से किस प्रकार लाभ पहुंचा है, क्या बदलाव देखने को मिला है?
2: देखिए निश्चित रूप से मतलब खासकर अगर खेती के कार्यों के लिए देखें तो जल की तो आवश्यकता है, बाकी निस्तारी प्रयोजन के लिए भी और प्रत्येक चरण में जल की उपलब्धता तो बहुत आवश्यक है। जब हमने अमृत सरोवर और फार्म पॉइंट को निर्मित किया तो सामुदायिक स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों ने सिंचाई के लिए उनका एक विकल्प के रूप में उपयोग किया और वो जो उनकी क्रॉप निकल के आई वो उनके लिए निश्चित रूप से एक गिफ्ट थी, तो वो एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि हमको ये भी देख के काफी अच्छा लगा कि लोगों ने उसको भी कुछ अलग तरीके से देखा, जैसे फार्म पॉन्ड में उन्होंने जल की उपलब्धता के साथ मछली पालन किया, कुछ लोग पल्स के लिए भी जा रहे हैं या इस तरीके से, और ये भी मतलब इस तरीके का क्वांटम की अंडरग्राउंड वाटर की तुलना में जो सरफेस वाटर है वो कैसे फसल को ज्यादा बेनिफिट करता है। तो ये अब अल्टीमेटली धीरे धीरे बात इस तरीके से भी जा रही है कि वो लोग जो शुरू में थोड़ा सा रिलेक्टेंट रहते थे अब वो उनका और भी रहता है कि हम कैसे बेहतर करें। जैसे हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि खेतों में इस तरीके के रिचार्ज पिट बने जहां पे कि खेतों का पानी जब बाहर चला जाता था उसकी तुलना में वो अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे, इस तरीके के सिस्टम बनाने की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और जो असफल बोर हैं उनमें भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग रिचार्ज पिट बनाएं सो दैट कि पानी अगर वो बोर नहीं दे रहे हैं तो हम उनके माध्यम से पानी भूगर्भीय सतहों में प्रवेश करा सकें।
0: इसमें बस मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि क्या मतलब प्रभाव रहा, तो इसमें हम लोग जब इस अभियान के लिए गांव-गांव जा रहे थे तो कुछ किसानों ने स्वयं अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि उनके जो एक खेत में 6-8 बोरवेल करा चुके हैं किसी में पानी नहीं निकल रहा है, उसके बाद उनने खेत तालाब 3-4 बनाए और 1-2 सालों के अंदर उनके सभी जो पुराने बोर थे उसमें पानी का लेवल आ गया। तो ये अपने आप में एक बड़ी लर्निंग है यानी किसानों के लिए कि आप अनलिमिटेड एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं मतलब जो आपका भूगर्भीय जल है उसको, और फाइनली हमको सरफेस वाटर पर निर्भर होना ही पड़ेगा। तो अगर उस पर हम निर्भर रहे सिंचाई के लिए मुख्य रूप से अपने पास, तो हम एक तो भूगर्भीय जल को बचा सकते हैं और दूसरा उसको मतलब उसको रिजुविनेट भी कर सकते हैं, उस सोर्स को वो भी हम कर सकते हैं। तो ये उनके खुद के अनुभव है जो हम लोगों ने उसको प्रयास किया कि उन किसानों को जो अपनी विभिन्न सभाएं हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, जहां भी हम वर्कशॉप कर रहे हैं वहां उनको ही बोलें कि अपने अनुभव शेयर करें, अन्य लोग उससे थोड़ा सा प्रेरित हों और अपने यहाँ उसका उपयोग करें।
1: निश्चित रूप से आपके प्रयासों से स्थानीय लोगों को काफी फायदा हुआ है और जल संरक्षण के प्रति लोग ज्यादा जागरूक और संवेदनशील हुए हैं। श्रोताओं, जल संरक्षण पर बहुत ही अच्छी चर्चा हमारी चल रही है और अब बारी है गजेंद्र सर आपकी पसंद के एक गीत की।
2: जीवन में आपको हर जगह संघर्ष की स्थितियां रहती हैं। मेरी जंग फिल्म का एक गाना है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
1: जी जी जी
2: श्रोताओं को अगर सुना सके तो बहुत
1: बिल्कुल आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आज का हमारा विषय है अमृत सरोवर और जल संरक्षण, जिसकी चर्चा जुलाई माह के मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में अतिथि विशेषज्ञ हैं श्रीमती रजनी सिंह और श्री गजेंद्र सिंह नागेश जी। आप दोनों ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। गजेंद्र सर, आपने अमृत सरोवर जल संरक्षण और पुराने जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन का जो पूरा अभियान स्तर पर कार्य किया, हम जानना चाहेंगे कि क्या शुरुआत में जिस लक्ष्य को आप लेकर के चल रहे थे वो पूर्ण हो गए, और भविष्य में इस अभियान को लेकर के आपकी क्या योजनाएं हैं?
1: देखिए, जो नेशनल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उसकी एक रिपोर्ट है। एक तो इंडिया वाइड हमने अंडरग्राउंड वाटर का बहुत व्यापक दोहन किया है। नरसिंहपुर भी उन जिलों में एक है जो अब रेड जोन में है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर को बोर के माध्यम से एग्जॉस्ट करने की वजह से बहुत हम उस वाटर टेबल में कहीं ना कहीं नीचे गए हैं। तो एक आम के बारे में ऐसा दावा नहीं किया जा सकता कि कैसे और कब खत्म होगा, लेकिन ये जरूर है कि एक शुरुआत इसको मानी जा सकती है। और ये अगर सरकारी और सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से, स्थानीय सहभागिता के माध्यम से, जो बेसिकली बायर्स हैं सोसाइटी के, उनके साथ अगर हम कर रहे हैं तो शायद उम्मीद की जा सकती है कि ये सस्टेनेबल हो सकेगा। लेकिन आवश्यकता हमारे निस्तारी प्रयोजनों के साथ साथ अगर खेती की भी है, एक बात होती है कि खेती को हम ज़्यादा उपादेय और लाभ के रूप में हम ले जाएंगे, क्योंकि कृषकों के लिए वो एक चुनौती हमारी है, हम कृषक बाहुल्य जिले भी हैं, तो हमें पानी की निरंतरता भी चाहिए और उसकी सततता भी चाहिए। तो हमारे लिए ये काम निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसको मानते हैं कि शुरुआत ही हमने की है। एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूँगा कि नरसिंहपुर ज़िले को माँ नर्मदा की गिफ्ट मिली हुई है। लगभग 146 किलोमीटर का तट है दोनों क्षेत्रों में मिला के उत्तर दक्षिण में, तो बड़ा क्षेत्र नर्मदा जी के जल से सिंचित होता है और लगभग 24-25 ऐसी नदियां हैं जो कि उसको कहीं ना कहीं से अपने सहायकता प्रदान करती हैं जलों के रूप में, जो खासकर विंध्य और सतपुड़ा से जो नदियां छोटी छोटी निकलती हैं वो अपना जल भी उनको वापस देती हैं। लेकिन हम अगर हर जगह पे, हर खेत में, हर गाँव के लिए अगर कार्य योजना नहीं बनाएंगे तो वो एक मुश्किल होगी। एक हम लोग अपने जिले में नर्मदा समृद्धि परियोजना के माध्यम से हमने विभिन्न प्रकार की गतिविधियां ली हैं, जिसके अंतर्गत जैसे मैडम ने बताया कि करीब 900 एकड़ से ज्यादा जमीन हमने उसको, जो ट्रेडिशनल धान्य फसलें हैं उससे हटके, हम उसको वानिकी और उद्यानिकी के लिए ले जा रहे हैं, और ऐसी जमीनें हमने विधिवत फेंस करके सुरक्षित करें।

0: कम्युनिटी को, विशेष रूप से स्व सहायता समूहों को, उसको अनुबंध के माध्यम से कुछ जमीनें दे के एक निश्चित अवधि के लिए ये प्लानिंग है कि हम उनको दें और ये तय कर सकें कि नर्मदा जी के संरक्षण के लिए भी जल की उपलब्धता सतत बनाए रखने के लिए भी क्या आवश्यक है। तो क्या हम सॉयल इरोजन रोक रहे हैं, क्या हम रासायनिक खेती के स्थान पर प्राकृतिक खेती को बढ़ा पा रहे हैं और वो
1: जी
0: एक सस्टेनेबल मॉडल के रूप में आ रही है, क्या हम बी कीपिंग जैसे भी चीज कर रहे हैं जो ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम को नेचुरलाइज कर पा रहे हैं। तो नर्मदा समृद्धि समितियां हर ऐसे 91 गाँव में बनी जहाँ से नर्मदा जी प्रवाहित होती हैं, और
1: जी
0: अपेक्षा समिति के माध्यम से स्थानीय पंचायत के लोग और स्थानीय समुदाय को जोड़ने से है कि हम ये तय करें कि क्या नहीं करना है। मसलन जैसे कि जो नॉन डिग्रेडेबल गार्बेज है वो बहुत बड़ी चुनौती है, अजैविक कचरा, और खासकर अगर देहातों की बात करें क्योंकि शहर में की तुलना में वहाँ कहीं प्रसंस्करण नहीं है, बहुत ज़्यादा कलेक्शन का भी एक वातावरण निर्माण की आवश्यकता है। तो वो जितना भी अजैविक कचरा, वो चाहे पनी प्लास्टिक के रूप में, डिस्पोजल के रूप में होता है, वो नदियों के माध्यम से प्रदूषण का कारण बनता है। तो हम उनके भी रोकथाम की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक पत्तलों की बात कर रहे हैं, बर्तन बैंक की बात कर रहे हैं। तो एक तो ये बात, और क्या करें हम हरी चादर बिछाएं, रैपिडेंट जोन को हम ज़्यादा मजबूत करें, वानिकी और उद्यानिकी पौधे और उसी के माध्यम से आजीविका सृजन की भी गतिविधि हो। ऐसा नहीं हो कि हम जब इकोसिस्टम बैलेंस कर रहे हैं तो किसी की आजीविका बाधित हो, वो भी
1: जी
0: उपार्जन हो, महत्वपूर्ण बात है। ऐसे ही एक जिले में सिंगरी नदी है जो नरसिंहपुर की लाइफ लाइन है, उसके भी पुनर्जीवन का काम किया जा रहा है, और उसमें न केवल जन सहयोग, जैसे कि मैडम ने बताया कि उसमें लगभग 2 माह तक जिले के विभिन्न विभागों की जेसीबी और 200 जैसी बड़ी मशीनें लगभग नदी को उसके कोर्स करेक्शन के लिए मदद करती रहीं, बेंच बनाने का काम किया। फिर बाद में उसमें माननीय मंत्री जी ने उसमें हमको लगभग कुछ प्रोजेक्ट सेंक्शन किया है करीब 4 करोड़ रुपए का, जिसमें कि हम शहर से पहले के 4 गाँव में नदी पुनर्जीवन के काम के साथ साथ तो रिवर फ्रंट भी डेवलप कर रहे हैं और समाज को एक अच्छी गतिविधि के रूप में उसको देने का काम कर रहे हैं।
2: जी, अगर देखा जाए तो एक पूरे पारिस्थितिकी को, एक पूरे इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही
0: बिल्कुल
2: है। रजनी मैम, प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में अमृत सरोवरों और जल संरक्षण को लेकर के नरसिंहपुर जिले की सराहना की गई। तो आप नरसिंहपुर जिले की कलेक्टर हैं, 2013 बैच की युवा आईएएस अधिकारी हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप?
3: लेकिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब जिले का नाम मन की बात में लिया गया तो हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। जिले के लिए एक राष्ट्र स्तर पर जिले का नाम आना निश्चित रूप से, और आपके काम को इतना बड़ा एक रिकग्निशन मिलना अपने आप में हम सब के लिए बहुत उत्साह और गर्व का विषय रहा है। और इससे हमको और प्रेरणा मिली है, जो आपने अभी लक्ष्य की बात भी की थी कि जो हम अभी हमने काम किया है वो बस एक प्रारंभ है, जैसे सीओ साहब ने बताया। तो हमें बहुत प्रेरणा मिली है कि हम अपने इस काम को और आगे बढ़ाएं। और बरसात के बाद, जैसा अभी पहले भी जिक्र में आया कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी भूमियां हैं जहां हम लोग निखाली कराई है हमने, तो वहां पे हम लोग अभी तो हमने छोटे संरचनाएं बनाई हैं। हमारा प्लान है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उनका एक मुख्य विषय रहता है अमृत सरोवर को लेके, तो हम लोग इन क्षेत्रों में, भूमियों में बड़े बड़े सरोवरों का निर्माण कराएं। और विशेष रूप से अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बड़े तालाब होते हैं, तो बहुत एक तो आप जो जो हम कहते हैं कि एक आपका जल स्तर है उसको बढ़ाने में मदद मिलती है, और बेसिक जो आपका सरफेस वाटर है अगर वो हमने रोक लिया तो वो उस क्षेत्र की जो रूटीन की आवश्यकताएं हैं, चाहे जानवरों के लिए पेयजल की बात करें या सिंचाई की बात करें या फिशरीज की बात करें, तो जो कृषि को लाभ का धंधा बनाने वाला वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही प्रिय प्रोजेक्ट है, तो उसमें भी सहयोग मिलता है। तो हम लोग प्लान यही है कि हम जो ग्रामीण एक अर्थव्यवस्था है उसको किस तरह से सभी चीजें समन्वित करके उसको बढ़ाने का प्रयास कर पाए। निश्चित रूप से हम लोग अपना जो हमारा अभी बारिश के बाद का समय होगा उसके लिए हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं कि हम कैसे इन सभी भूमियों पे कुछ बड़े तालाब और निर्मित कर पाएं। और प्लांटेशन बेसिकली एक सेकेंड लेवल है जल संरक्षण का, जब आप संरचनाएं बनाते हैं उसके अलावा प्लांटेशन करते हैं। तो हम लोग लगभग 500 एकड़ भूमि पे फेंसिंग करके उसकी प्लांटेशन की मतलब कुछ जगह 200 एकड़ पे लगभग कर लिया है, और बाकी आगे प्लान है। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रोत्साहन से जिले को एक नई ऊर्जा मिली है और काम करने की, हमारी पूरी टीम बहुत उत्साहित हुई है, और विभिन्न माध्यमों से हमको जो बधाइयां मिली हैं मन की बात में नाम आने से, तो हम अब एक नई ऊर्जा से इसमें काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम जितना अभी हमने काम किया उससे और अधिक प्रगति लाएं। और जिले में निश्चित रूप से जो पानी की जो समस्या है जो अभी फील नहीं हो रही है लोगों को, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जल संरचनाएं या नदियां जैसा सीओ साहब ने बताया वो है, तो अभी हमारी वो चिंता का विषय नहीं है, लेकिन कुछ वर्षों बाद, 10 वर्षों बाद तो चिंता का विषय बनेगा।
1: बन सकता है।
3: तो हमारी योजना यह है कि जब वो विषय बने उसके पहले ही हम इतना कुछ काम कर लें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को समस्या का सामना न करना पड़े, उनके पास एक बेहतर जल की व्यवस्थाएं हो। और इसके लिए लगातार हम लोग जन समुदाय को भी, हमें प्रशासनिक भी बहुत सहयोग मिल रहा है। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी हैं, उनका लगातार मार्गदर्शन सहयोग मिलता रहता है, क्योंकि आरडी की मैक्सिमम स्कीम आरडी की होती है, तो स्थानीय

0: स्तर पर निश्चित रूप से बहुत हमको सहयोग मिल रहा है। सभी, मैं कहूँ, स्तर है समाज के, चाहे वो राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, समाज हो, संस्थाएं हो, सबका सहयोग मिल रहा है। और हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमें एक उपलब्धि मिली है, हमारा नाम जिले का लेके, उसको हम और आगे बढ़ाएं, यही हम प्रयास कर रहे हैं।
1: निश्चित रूप से नरसिंहपुर जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर आना आपके साथ साथ पूरे जिले के लिए एक प्रेरणादायी उपलब्धि है। क्या संदेश आप देना चाहेंगे जल संरक्षण के लिए, सरोवरों के संवर्धन के लिए, जल स्रोतों के संवर्धन और संरक्षण के लिए, और व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कैसे लोग इसमें अपना योगदान दे सकते हैं?
0: देखिए, अगर हम अपने मतलब देश की बात करें या प्रदेश की बात करें, तो आज की स्थिति में हम सब लगातार देख रहे हैं कि जल की कमी हर जगह महसूस हो रही है। और जितना हम उपयोग कर रहे हैं, जितना पर कैपिटा आवश्यकता है और कितना हम उपयोग कर रहे हैं, एक तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। मतलब बहुत ज्यादा पर व्यक्ति उपयोग किया जा रहा है जल, क्योंकि अवेलेबिलिटी अच्छी है इसलिए। और दूसरा, जो आज से हम कहें 10 वर्ष या 15 वर्ष पहले जो स्थिति थी आपके वाटर लेवल की, ग्राउंड वाटर लेवल की, वो बहुत डिप्लीट हो गई, हर जगह डिप्लीट हुई है। तो इवन जो आपके बहुत नदियों के कछार वाले क्षेत्र हैं, जो बहुत अच्छी जल उपलब्ध है, वहां पर भी जल के संकट की स्थितियां आ गई हैं। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जल संरक्षण में सरकार जरूर एक, क्योंकि प्रशासन का ये, सरकार का ये काम होता है कि जो चीजें वो प्लानिंग करे और उनको एग्जीक्यूट कराए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो समस्याएं जनता को झेलनी है, उसमें उसके जिम्मेदारी सरकार पे होती है। लेकिन जल संरक्षण ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां आज की स्थिति में पानी नहीं है, और पानी को लेके कितने सारे विषय हो रहे हैं। तो एज अ पर्सन, हम हमें अपने व्यक्तिगत, घर की बात करें, अपने ऑफिस की बात करें, या हमारे खेत हैं, किसान हैं, हमको अपना प्रयास करना चाहिए कि हम जो एक इस अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नारा भी दिया गया है कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, उस भावना से काम करें। और अपना जो भी परिसर है, जितना बड़ा भी घर है, जितना बड़ा हमारा क्षेत्र है, उसमें अगर हमने जल संरक्षण का प्रयास कर लिया, तो एटलीस्ट हम एक एक छोटे छोटे प्रयास से, हम जानते हैं बूंद बूंद सागर भरता है, बड़ी अच्छी कहावत है। तो हम सबको अपना व्यक्तिगत प्रयास करना चाहिए, और जो बड़े लेवल के प्रयास है वो तो शासन के माध्यम से हो ही रहे हैं, वो किए जा रहे हैं। लेकिन कम से कम हर व्यक्ति अगर इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो निश्चित रूप से इसका असर दिखेगा। और हमने भी यही प्रयास किया है, जो हम लोगों ने अभियान चलाया है, उसमें हमने यही प्रयास किया है कि जैसे हमने लगभग 4,000 SHG की महिलाओं के माध्यम से सोकपिट और बोरी बंधान के काम कराए,
1: जी
0: जिसमें कोई राशि खर्च नहीं हुई। तो
1: जी
0: बेसिकली इस पूरे अभियान का, या तो पंचायतों के माध्यम से, या तो इसमें और समुदाय के माध्यम से, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोग इस अभियान से जुड़े, लोगों को व्यक्तिगत रूप से महसूस हो कि ये हमारा काम है, ये किसी सरकार का या किसी का काम नहीं है, ये हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है, हमारे पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा है, इसलिए हमें ये काम करना चाहिए। तो प्रयास ये है कि हर एक ऐसा रूफ जिसमें पानी धारण करने की क्षमता हो, उसका पानी जमीन में जाए, हर एक खेत जिसमें पानी भरता है। हमने किसानों से चर्चा की है कि अपने खेत में छोटी जगह जहां भरता हो, वहां वो ऐसा कुछ सोकपिट जैसा बनाए जिससे पानी कम से कम भरे नहीं और उनके लिए उपयोगी हो। तो इसके लिए बड़ा एक, हम कहें, जन आंदोलन जैसा विषय है, जो सबको इसकी माता समझनी पड़ेगी। लेकिन प्रयास ऐसे धीरे धीरे शुरू होते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रयास हुए हैं जो आगे जाके बहुत उसके बड़े इम्पैक्ट हुए हैं। तो हमारा बस यही जिले में प्रयास है कि हम ऐसे ही, मतलब लोगों को, जब भी हम किसी जगह, जहां भी लोग होते हैं, जहां जन समुदाय होता है, चौपाल में चर्चा करते हैं कि भाई इसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो लोगों के दिमाग में इस बिंदु को लाना कि ये एक एसेंशियल आवश्यकता है, ये बहुत जरूरी है, और वही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और समुदाय, व्यक्ति, सरकार, सब मिलके जब काम करेंगे, तब हम, मैं चाहे जिले की बात करूं, प्रदेश की या देश की, तब हम जो ये जल की आवश्यकता है, जल की जो स्कार्सिटी है, उससे लड़ पाएंगे और उसको अपने भविष्य में, जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए, सुनिश्चित कर पाएंगे उपलब्धता। यही हमारा लगातार प्रयास है और उसी भावना को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं।
1: गजेंद्र सर, आपने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है। उसके बाद जल संरक्षण हो, अमृत सरोवर हो, कैच द रेन या ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, आपने इस क्षेत्र में लगातार मैदानी स्तर पर परिणामदायी कार्य किए हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को लेकर के? कौन से ऐसे व्यक्तिगत प्रयास किए जा सकते हैं? और जैसा कि आप जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे सामूहिक रूप से किस प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए।
2: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विजन है या जो उनकी अपेक्षा है हम सभी लोगों से, वो अगर जल संरक्षण के लिए है तो वो वास्तव में आवश्यक है। और आप देखें तो वर्ल्ड वाइड वाटर स्कैर्सिटी की स्थिति है और क्लाइमेट चेंज भी इससे जुड़ा हुआ विषय है, खासकर स्वच्छ जल और आपके निस्तारी प्रयोजन के लिए होने वाले जल की उपलब्धता बहुत कम है। भारत यूनिसेफ के एक रैंकिंग में भारत में उपलब्ध जल का केवल 18% वाटर जो है वो उपयोगी है आपके लिए, जो कि अदरवाइज वो पॉल्यूटेड है या कुछ अलग तरीके का कारण से है। तो ये विषय ऐसा है जो हर तरीके से लोगों

0: के प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। और
1: जी
0: अगर मैं नरसिंहपुर की बात करूं तो हमारे पास 3 लाख हेक्टेयर के आसपास भूमियां हैं, 2,40,000 परिवार हैं। तो जो मैडम के भी हमारे कॉल हैं, वो हम अपेक्षा ये करेंगे कि प्रत्येक किसान इसमें शामिल हो और अपने खेत में वो लो रिच जहाँ है हम वहाँ पर रिचार्ज पिट बनाएं, असफल बोरों को फिर से जीवंत करें। क्योंकि एक धारणा है जल के लिए कि स्रोतों से पानी लो और स्रोतों को पानी दो,
1: जी
0: तो जो
1: जी
0: स्रोत हमें देते देते सूख गए हैं उनको अगर हम वापस भर सकें तो हम नहीं तो अगली पीढ़ी उसको उपयोग कर पाएगी। तो आज की जो एक चुनौती है, मैं मानता हूँ कि क्लाइमेट चेंज भी उसका एक घटक है, तो हम उस पे जाके काम करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समाज का प्रत्येक वर्ग हर स्थिति में जो जहाँ जैसा हो वो रियल टाइम आज उसमें कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो एक ये धारणा के साथ नरसिंहपुर आगे बढ़ रहा है।
1: जी बिल्कुल। श्रोताओं, अमृत सरोवर जल संरक्षण, कैच द रेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इन विषयों का उल्लेख करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जुलाई माह के मन की बात कार्यक्रम में नरसिंहपुर जिले का जिक्र किया था। इन्हीं विषयों पर हमने चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था हमारे अतिथि विशेषज्ञों को, श्रीमती रजनी सिंह, कलेक्टर जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, और श्री गजेंद्र सिंह नागेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। हमें बता दें कि नरसिंहपुर जिले में अमृत सरोवरों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और जल संरक्षण के कार्य आप दोनों के ही नेतृत्व में, आप दोनों के ही मार्गदर्शन में प्रभावी रूप से संचालित किए गए हैं। विभिन्न विभागों, जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय नागरिकों के समन्वित प्रयास से अमृत सरोवरों का पुनर्जीवन सुनिश्चित हुआ है, जिससे जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, भूजल संवर्धन को भी नई दिशा मिली है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय देकर हमसे विस्तार में चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: नमस्कार।
3: नरसिंहपुर के अमृत सरोवर, ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी जबलपुर के सौजन्य से प्राप्त हुई। अब पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में लीजिए, आपको सुनवा रहे हैं ऐसी ही एक प्रेरित करने वाली भेंट वार्ता, कैश दे रेन। अतिथि हैं श्री भरत भाई तिलवा, ट्रस्टी गिर गंगा परिवार ट्रस्ट, श्री दिलीप भाई सेकिया, संस्थापक ट्रस्टी और अध्यक्ष गिर गंगा परिवार ट्रस्ट। भेंट करता है हितेश कुमार मावाणी, कार्यक्रम प्रमुख, आकाशवाणी अहमदाबाद।
4: दिलीप भाई और भरत भाई, आपका आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में हार्दिक अभिवादन है, स्वागत है।
5: नमस्कार।
4: सबसे प्रथम हम दिलीप भाई से जानेंगे कि आपको ये जल संचय कामगिरी है उसकी प्रेरणा कब मिली और इसके लिए किन परिस्थितियां जवाबदार हैं?
5: बेसिकली मैं किसान का बंदा हूँ, अभी भी मैं और मेरे फादर खेतीबाड़ी कर रहे हैं, मेरे पास भी पशुपालन का काम है, 200 गिर की गायों है। तो मैंने चीज देखा कि जिस साल बारिश होती है ना, इस साल मेरे को गाय को चारा मुफ्त मिलता था, जिस साल बारिश नहीं होती है इस साल मेरे को वो परचेस करना महंगा पड़ता था। किसान के साथ साथ मैं वहां के भारतीय किसान संघ का अध्यक्ष बना, तो इस समय में मैंने बहुत गांव का प्रवास किया किसानों को मिले। उस समय मेरे को सबसे बड़ी अगर किसान की और विस्तार की समस्या अगर कोई दिखाई देने वो दिखाई दी पानी। मैंने नजदीक से जुआ कि मेरी सौराष्ट्र की धरती के किसानों को अगर पूरा पानी मिल जाए ना, तो हमारे देश की 140 करोड़ जनता का पेट भरने जैसा अनाज पैदा करने की ताकत वहां की जमीनों में भी है और वहां के किसानों में भी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती थी पानी। इस जगह पे एक समय 20-30-40 फीट पे पानी था, वो पानी धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे बहुत गहराई पे 100-200-500 हजार, कहीं कहीं जगह पे तो 2000 फीट पे गहराई पे चला गया। वहां के किसानों की जो भी आमदनी होती है ना, वो आमदनी का 25% पानी ढूंढने में जा रही है। तो उस विषय की एक प्रेरणा मिली कि समस्या का रोल बहुत समझा। तो हमने देखा तो बारिश तो हो ही रही है फिर भी पानी नहीं है, तो हमने थोड़ी भौगोलिक रचना का अभ्यास किया, क्योंकि वो सौराष्ट्र की धरती है, यहाँ पे 1200 किलोमीटर का दरिया किनारा है, वहां की धरती पथराड़ और डूंगरा है, बारिश गिरती है, लेकिन वहां जरूरत है इतना रोकने का, छोटे मोटे चेक डैम और तालाब न होना हिसाबे 80-90% पानी समुद्र में चला जाए। तो इस विषय की गंभीरता हमको समझ में आ रही और उसके बाद हमने इस विषय पे काम शुरू किया, लोगों को जोड़कर ये पानी हम कैसे बचा पाए।
4: दिलीप भाई, आप ये भी बात कीजिए कि सौराष्ट्र रीजन में जो 1984-85-86 में जब 3 साल लगातार बारिश नहीं हुई थी, तो उस दौरान कैसी परिस्थिति थी?
5: एक समय था, वो हम बात किया जाए कि यहाँ से 40-50 साल के पुराने की बात है। इस समय में क्या हालत थी, कि वैसे कोई साधन भी नहीं।

0: थे तो जमीन में से पानी भी निकाल नहीं रहे थे हम लोग। और इस समय अब गुजरात के अंदर 3 साल का 85, 86 और 87, इन 3 साल में ऊपर से बारिश नहीं गिरी। फिर भी एक बात तो सही है कि वहां पे लोग सहन कर गए। उसका एक विजन था कि ऊपर से बारिश नहीं गिरी थी, जमीन के अंदर पानी कहीं ना कहीं पड़ा था। लेकिन उस समय में राजकोट को इतने दुष्काल के समय में देखो कि वहां पे उस समय भी बस्ती भी कम थी, फिर भी ट्रेन से पानी वहां पे आया था। और इसके बाद लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आई और यहाँ के सीएम ने भी वहां पे मेहनत की। और वो समय था कि बहुत सारे छोटे मोटे चेक डैम बने थे और वो चेक डैम बनने के बाद वो वहां के विस्तार में, किसानों में और विस्तारों में थोड़ी सी मजबूत आई हुई, लोगों दो पैसा कामने लगे, थोड़ा सा विकास हुआ और राष्ट्र को वहां पे फायदा भी हुआ है। मैंने जब देखा कि सबसे बड़ी समस्या पानी है तो उसको कैसे जोड़ा जाए, तो मैंने 3 साल तो मेहनत की गवर्नमेंट में रजूआत करने के लिए। तो काम इतना बड़ा था, ये प्रोसेस गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से कहीं ना कहीं काम कर रही है, लेकिन ये प्रोसेस इतनी बड़ी थी तो मैंने बोला कि अगर कोई भी कामयाबी चाहे ना तो इसमें लोक आंदोलन होना चाहिए, लोक जागृति होनी चाहिए। तो हमारा एक एनजीओ था गिर गंगा परिवार, जो हमने गायों के लिए तैयार किया था और ये हमने पानी के विषय में काम शुरू कर दिया। धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे लोगों को जोड़ जोड़ के हमने काम शुरू किया। पहली शुरुआत हमने की थी कि एक चेक डैम को रिपेयर किया, 2022 में हमने काम की शुरुआत की थी।
1: तो भरत भाई, आपको ये जल संचय कामगिरी में कैसे आपकी रुचि उत्पन्न हुई?
2: पहली बार गिरगंगा परिवार का मेरे को आमंत्रण दिया गया प्रेसिडेंट हिसाब से। मैंने पहली बार दिलीप भाई को सुना, उसकी जो बात में जो लगाव और प्रेम था पानी बचाने का, उसी संदेश से मेरे को प्रेरणा मिली कि गिरगंगा परिवार जो काम कर रहे हैं इसमें उसका पर्सनल ज्ञातिवाद वेरा कोई जन समुदाय का सबका भाग वाला इसे काम कर रहे हैं, तो मेरे को उसके साथ जुड़ने की प्रेरणा हो गई। तब से मैं गिरगंगा परिवार के साथ में उसका सार्थी तरीके से जुड़ा रहता हूँ।
1: भरत भाई, आप स्वयं अपनी जो फैक्ट्री है वहाँ पर भी आप ये हर महीने आपका ये प्रैक्टिस रहता है, और साथ ही में आप अपने जो इंडस्ट्रीज है, दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको भी आपने प्रेरित किया है। तो इसी तरह से हर महीने कितना कंट्रीब्यूशन होता है और जो गिर गंगा परिवार ट्रस्ट के आप डोनेशन करते हो?
2: अभी ये 2 महीने पहले की प्रक्रिया है, अभी शुरुआत हुई उसकी। कभी कभी जब भूख लगती है तो खाने के कोई ना कोई संशोधन कर ली, इसलिए भी इनमें से एक शोध बनाई। इनमें से ये प्रेरणा का फर्स्ट सब्जेक्ट है। अभी मेरी कंपनी में इसकी कॉलेज की तरफ बहुत स्टूडेंट रखाए थे, कंपनी के हर जगह पर एक एक बॉक्स रखा है। आगे का रिजल्ट के बाद आएगा, मालूम नहीं रिजल्ट सही आएगा ऐसा पक्की बात है, लेकिन कितना आएगा मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आएगा पक्का।
1: आपने बहुत अच्छी बात बताई भरत भाई। आइए हम फिर से दिलीप भाई से प्रश्न करते हैं कि कैच द रेन जल संचय कामगिरी के अंतर्गत आप कौन कौन सा कार्य कर रहे हैं?
0: हमारे देश भारत की सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो वो किसानों का काम है। अभी तक हमारा देश की पहचान भी विश्व के अंदर खेती प्रधान देश से हो रही है, और सबसे बड़ा पानी का यूज होता है वो तो किसान एग्रीकल्चर में हो रहा है। तो इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी प्रवृत्ति चल रही है, तो इस देश का जब बड़ा प्रधान कोई सूत्र देता है जल संचय जन भागीदारी, इस सूत्र को सार्थक करना है। तो इसके हिसाब से हमारी संस्था ने तय कर दिया कि पानी की एक भी बूंद हमको समुद्र में नहीं जानी है। तो इसको किस तरीके से किया जाए, बहुत अभ्यास किया जाए। हमारा जो भी अभ्यास है वो अभ्यास से हमको जो सीखना मिला, तो इसमें 2-3 चीज हमको जाना। पहली चीज होती है कि वहां की भौगोलिक रचना को देखना पड़ता है। हमारी गुजरात की अगर बात किया जाए तो गुजरात में 2 चीज है। हमारे अहमदाबाद के ऊपर मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात में हम जब जाए ना तो वहां पे माटी और रेताड़ का प्रदेश है, वो जमीन ऐसी है। लेकिन हम सौराष्ट्र की अगर चला जाए तो वहां पे पथराड़ और डूंगराल है। तो पानी स्टोरेज की बात है तो सौराष्ट्र की धरती में सबसे बड़ा पानी का स्टोरेज का कोई उपाय है तो छोटे मोटे चेक डैम और तालाब, इस विषय में अगर भार दिया जाए तो अच्छी बात होती है। लेकिन ये रूलर की बात हुई, क्योंकि मैंने बोला ना कि 80% पानी तो एग्रीकल्चर में जा रहा है, लेकिन अभी सिटी भी बड़े हो रहे हैं, लोग गांव छोड़ के सिटी में क्यों आ रहे हैं, उसका भी अगर विजन दिखा जाए तो वो पानी आएगा। तो हमने लोगों को बचाया कि सिटी के अंदर पानी कैसे रोका जाए, तो दरेक लोगों की एक जिम्मेदारी होती है, उसका साल का जो भी पीने का पानी है वो स्टोरेज का, बारिश का पानी का टंकी हर घर पे होना चाहिए, जमीन के अंदर बारिश का पानी स्टोरेज किया जाए, पहला तरीका। दूसरी बात, अभी तक हमको जब भी पानी की जरूरत पड़ती है तो हम जमीन से पानी निकाल रहे हैं, तो अब हम ऐसा बोर करें कि हम बोर करके जमीन को पानी रिचार्ज किया जाए, उसके बाद अगर बोर नहीं ले रही है पानी तो ही हम बाहर पानी निकालने देंगे। लेकिन गांव के लिए सबसे अगर बड़ी चीज है तो कुआं रिचार्ज, हम कुआं रिचार्ज करवा रहे हैं। जितने भी बोर है किसानों ने किया, जो फेल हो गए हैं, जिसमें पानी नहीं है, वो बोर रिचार्ज करना है। सभी किसान के खेत में छोटी मोटी खेत तलावड़ी

0: बनाना है। मैं बोलता हूं गांव के आगे वालों को, 25 इंच बारिश, 25 इंच बारिश अगर गिरती है और इस बारिश गिरने के बाद हमारे गांव की बॉर्डर के बाहर अगर बारिश का पानी निकला, तो वहां के गांव के आगे वालों की दीर्घ दृष्टि में कहीं ना कहीं कुछ क्वेरी है, उसको सुधारनी चाहिए। इस विषय में लोगों को समझाकर बस एक ही काम है, डैम बनाना, चेम ऊंडा करना, गहराई करना और खेत तलावड़ी बनानी, कुआं रिचार्ज करना और बोर रिचार्ज करके हम ये संस्था काम कर रही है। हम जब गांव में विलेज में मीटिंग करते हैं ना, लोगों को जोड़ते हैं, तो उस समय एक प्रसंग मेरे को याद, मैं सबको बताता हूँ, अगर हमने एक डंपर माटी अगर तालाब से निकाल कर अगर हमने बाहर डाल दी, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए 10,000 लीटर पानी की जगह होगी। एक बार खर्चा करना है। मैं बोलता हूं अगर पानी में कोई 1 लाख रुपया लगाता है ना, तो राष्ट्र को 1 करोड़ का फायदा होता है।
1: कैसे?
0: क्योंकि एक बार डैम खोदने का खर्चा होता है, बाद में 100 साल चलेगा, तो क्या होगा, बार बार एक बार पानी आया तो पानी की कीमत अमूल्य है। पानी की कोई कीमत, अगर पानी की कीमत समझना है ना, तो हम रण में जाए देखते हैं, तरस बताते हैं पानी की क्या कीमत होती है। किसान बताता है कि जब उसका पाक सूखता है पानी की क्या कीमत होती है। अगर पानी की कीमत हमको समझनी है ना, तो हमको ये विस्तार से हम समझाएगा, तो क्या होता है कि एक बार खर्चा करने से बार बार लाभ मिलता है, वो पानी और चेकडेम का तरीका होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं लोगों को कि एक बार पानी में रुपया लगाने से क्या हुआ, जिस गांव में हमने काम किया ने, उस गांव में खुशहाली आने देख। मैंने देखा, हमारे यहाँ के 2-3 गांव का मैं उदाहरण देता हूं। हमारे जामनगर डिस्ट्रिक्ट में कालावड़ तहसील के पास एक वरणा गांव है, इस गांव के पानी 700-800 फीट की गहराई पे पानी था। वहां पे लोगों ने, हमने जोड़ा, 2-3 मीटिंग की उसका, थोड़े लोग जामनगर रहते, थोड़े राजकोट गांव में, सभी जगह पे मीटिंग की और गांव लोगों ने चेरी की एकता करके वहां डैम करना शुरू किया। इस गांव में गर्मी के दिन में तो गांव को बोर करने का मशीन आता है हर साल, और किसानों का 1 करोड़ रुपया लेके जाती थी। और वहां पे अगर बोर को शुरू करने के 1-2 किसानों के बोर में अगर पानी ज्यादा हो गया, तो उस साल 2-3 करोड़ लेके जा रही थी। लेकिन जब किसानों के एकटा करके वो चेक डैम तालाब बनाने का शुरू किया, लास्ट 3 साल में उस गांव में बोरवेल आनी बंद हो गए, तो वो किसानों का रुपया बढ़ा बचा। बाद में जो पानी 800 फीट पे था, वो पानी 30-40-50 फीट पे आ गया, और पूरे अगले गर्मी में वो गांव में ज्यादा से ज्यादा गर्मी के दिन में भी कोप लगा, तो वो सबसे बड़ा फायदा होता।
1: दिलीप भाई, आपने उस गांव में कैसे काम किया, जल संचय की कामगिरी के, जो जहां पर बोरवेल के मशीन ही आनी बंद हो गई?
0: बहुत सारे ऐसे गांव की उदाहरण है, लेकिन एक बात मैं अगर बताऊं, हमारा गिर गंगा का तरीका होता है। मैं मानना चाहता हूं कि लोगों को जागरूक, जैसे जन आंदोलन के बिना कामयाबी नहीं होगी, वो मेरा सूत्र है, तो लोगों को कैसे जोड़ा जाए, तो हमारा एक छोटा सा तरीका होता है। हम जब गांव में जाते हैं ना, तो गांव को पहले देखने के बाद वहां पे एक मीटिंग करते हैं, लोगों को एक छोटी सी गांव सभा बोला जाता है, वहां पे हम समझाते हैं लोगों को पानी का महत्व समझाते हैं, और वहां पे ही गांव की एक 10-11 लोगों की कमिटी बनाते हैं, वहां भी चैरिटी करते हैं, और वो चैरिटी गांव में ही रखते हैं, वो चैरिटी का वही टीम के सदुपयोग करके हमने काम शुरू करते हैं। जिस गांव की बात की मैंने, एक वरणा की बात की, ऐसा एक टोडी गांव है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट के सीहोर तालुका का टोडी गांव है, वहां पे एक विपस्याना केंद्र के जैन समाज के ग्रुप के आर्थिक सहयोग से वहां काम शुरू किया, जो समझना की बात है। उस गांव में भी पानी की यही हालत थी, क्षत्रिय समाज का गांव है, 800-900 फीट पे पानी, और वो डुंगराल प्रदेश का गांव, अगर बारिश चौमासे के दिन में अगर बारिश कम होती है तो चौमासु पाक भी फेल हो जाता था। उस गांव में हमने एक सीरीज ऑफ डैम बनाना शुरू किया, एक ही गांव में 15-17 डैम बना पाए। इस साल हम गर्मी में गया था ना, तो वो पहले दूसरे तीसरे लास्ट वाले डैम से नदी बह रही थी गर्मी के दिन में। वो किसान की अगर वो प्रसंग हमको महसूस करना है ना, तो वहां को किसान को मिलना चाहिए। अगर किसान को पानी मिल जाए ना, तो उसकी 90% खुशियां मिल जाती है। तो वो हमने देखी, तो वो यहाँ की गांव की खुशियां अगर देखा जाए, क्योंकि पानी है सबको, 90 समस्या के एकमात्र विकल्प है तो पानी है। किसान क्या बोलते हैं ना कि पशु को खुराक मिलता है, पंखियों को चण मिलता है, लोगों को रोजगारी मिलती है, अच्छा अनाज पैदा होता है। हम क्या है ना, हरियाली और खुशहाली गांव में अगर देखना है ना, तो पानी बचाना है, वो हमने नजदीक से देखा।
1: बहुत ही उम्दा तरीके से बताया जल संचय की कामगिरी। भरत भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने आसपास के लोगों को, आप कैसे जल संचय की कामगिरी में आप लोगों को प्रेरित करते हैं?
2: जो भी पानी साहब ने जो बताया पहले, और आदमी पानी बचाए और कम बिगाड़े, तो इस सूत्र है कि पानी जितना बिगाड़े इतना कम बिगड़े,

0: ये जो समझदारी की बात है, हम तो बिजनेसमैन है, खेती बाड़ी तो है नहीं, लेकिन उतना समय पानी बना भी नहीं सकते, बचाने की कोशिश करने की समझदारी सबको देते हैं।
1: हम जो सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पर शहरी विस्तार और ग्रामीण विस्तार दोनों विस्तार हैं। तो आप जब भी सेमिनार का आयोजन करते हैं जल संचय के बारे में, तो शहरी विस्तार और ग्रामीण विस्तार, उसमें से आपको कैसा प्रतिभाव मिलता है?
0: ज्योत से ज्योत जलाने का मैं पहला काम करता हूँ, हर जगह मैं एक ही काम करता हूँ, दिलीप भाई को सुने और पानी बचाने का क्या फायदा गैर फायदा होता है उसके बारे में मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। मालूम नहीं है, कभी टेस्ट नहीं किया तो मैंने, हमारी सोचा जब भी बात हुई मैं दिलीप भाई को बार बार बुलाता हूँ और जो सुनता है, सुनने जो भी प्रेरणा मिलती है प्रेरणा से आगे आगे बात काम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: पोस्टबॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम जारी रखते हुए दिलीप भाई से पूछेंगे कि आपके जल संचय के कामगिरी में आपको सरकार की ओर से किस तरह से सपोर्ट मिलता है?
2: हमारी गिर गंगा की जो पानी का काम में गवर्नमेंट की अगर बात किया जाए तो वो पहले तो मैं सोच रहा था कि जब हम गांव में काम करने जाते हैं तो गांव में क्या होता है, लोक भागीदारी से सब प्रकार का काम होता है। गांव में गेट भी बनता है, गांव में समाज भी की बाड़ी भी बनती है, गांव में बेंच भी लगाया जाता है, गांव में स्मशान भी अच्छी बनती है, गांव में मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो जाता है। लेकिन जब पानी की बात होती है तो लोगों में साइकोलॉजी होती है कि क्या काम गवर्नमेंट करेंगे, तो इस विषय के लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़ता था कि गवर्नमेंट करेगी ऐसा दिमाग में क्यों है। तो ये बात भी सही है कि वो जिस समय जिस काम किया था सब गवर्नमेंट में किया था, तो लोगों की मानसिकता में आया था कि पानी का काम गवर्नमेंट में, तो इस विषय में लोगों को भी भावना है कि गवर्नमेंट में इसमें जुड़े। तो जब हमारी संस्था का काम करना के शुरुआत की तो हम तो लोग भागीदारी से लोगों को जोड़ना करते थे, लेकिन इस देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने जब सूत्र दिया, इस सूत्र को बार पहली बार हमारे देश में जल शक्ति मंत्रालय तैयार की और मंत्रालय का काम कर रहे सीआर पाटिल साहब, सीआर पाटिल जी ने गिर गंगा परिवार को खूब प्रोत्साहित किया है। और कभी भी छोटे मोटे कोई भी प्रोग्राम गिर गंगा का होता है तो सर का आशीर्वाद रहता है। मेरे को मालूम है कि लोकसभा के अंदर भी सर ने गिर गंगा एनजीओ का नाम लिया कि वहां पे एनजीओ अच्छा काम कर रहे, राज्यसभा ने अंदर भी यहाँ के एमपीओ ने काम किया कि गिर गंगा अच्छा काम कर रहे। तो ये गवर्नमेंट के जो भी लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं वो भी हमारी सराहना कर रहे थे। दूसरी बात, जल शक्ति मंत्रालय ने अगले साल बेस्ट एनजीओ का अवार्ड भी हमको गिर गंगा को दिया है। तो इससे क्या हुआ, हमारी प्रेरणा बढ़ी, हमको हिम्मत मिली। हम कहीं भी काम करते तो लोकल वहां के डिस्ट्रिक्ट के जो भी कलेक्टर होते हैं वो भी अधिकारियों को सूचना देते हैं कि गिर गंगा जब काम कर रही है तो हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जितनी भी मदद करेंगे लेकिन उसकी काम में कहीं रुकावट नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से, इस होप के हिसाब से हम बड़ा काम कर पा रहे हैं। तो इस हिसाब से और आगे अभी भी नया नया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बना रही है कि इस साल कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से आर्थिक सहयोग भी कैसे मिल पाए, ये चल रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट की प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस अगर खत्म होगी तो आर्थिक भी सहयोग कुछ ना कुछ मिलेंगे। लेकिन उसने जो हमको वो कहीं ना कहीं आर्थिक के बिना जो भी मदद की है वो बढ़िया की है और हिसाब से काम आगे बढ़ रहा है।
1: दिलीप भाई, आप ये जो जल संचय कामगिरी कर रहे हैं तो हमारे श्रोताओं को प्रेरणादायी बात बताइए और श्रोताओं के लिए संदेश भी बताइए।
2: मैंने पहले भी बोला था, लास्ट भी बोल रहा हूँ कि पानी कोई बना नहीं सकता, बिना पानी से काम हो नहीं सकता। पैर नहीं है फिर भी चलता है पानी, जीव नहीं है फिर भी जिंदा रहता है पानी, ये पानी की मूल्य है। ऐसा कीमती और अमूल्य पानी बचाना है वो गवर्नमेंट एक का काम नहीं है, हम देशवासी भारत देश के सभी लोगों का यह धर्म है कि सभी को साइकिल चलानी है ना तो पानी की जरूरत है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े इंजीनियर फट फट के इतना आगे बढ़ गए, इतने आगे बढ़ गए, वो मंगल और चंद्र पे चले गए, वहां जाकर भी पानी ढूंढ रहे, तो हम यहाँ पानी क्यों ना बचा पाए। तो पानी बचाने का सभी लोगों का धर्म है। तो गिर गंगा परिवार का तो एक ही ध्येय है कि हम हमारे जन्मदिन में डैम कैसे बना पाए, जब मेरे लड़के का जन्मदिन है तो उसमें डैम बनाए, जब हमारे स्वजनों की मृत्यु होती है, मेरे मम्मी और फादर, मेरे दादा दादी जो भी है, उसका नाम काम डैम क्यों ना बना पाए। ऐसे तरह से हम लोगों को जोड़ रहे हैं, समझा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को मैं बोलता हूँ कि अगर राष्ट्र का विकास करना है, सभी समस्या का विकास करना है ना, तो आप पानी में ध्यान दीजिए। सभी कंपनी के सीएसआर एक्टिविटी में अगर पानी पे लगाए जाए ना तो देश की 90 समस्या खत्म हो जाएगी। बाकी कोई भी सहाय ने वो लोगों को आरसू कर रहे। मैं छोटा सा प्रसंग देता हूँ। थोड़े दिन पहले अमेरिका का एक भाई हमारे संस्था पे आए, बोले मेरे को जल्दी है, मेरे पास वक्त नहीं है, आप एक मिनट में आपकी संस्था को समझा दो। मैंने बोला आप दो बड़े डोनर मेरे को ढूंढ के दीजिए जो 10-10 करोड़ रुपया लगाते हैं, मैं आपको अच्छे दो गांव दिखाऊंगा। एक गांव में आपको 10 करोड़ रुपया गांव की सुविधा के लिए लगाना, लोगों की सुविधा के लिए, कि वहां पे गेट बनाना बड़े बड़े, वहां पे बेंच लगानी है, वहां पे गार्डन एक बनाना

0: बाकी अगर श्मशान है उसको अच्छी डेवलप करनी है, लोगों को मैरिज के लिए एक वाड़ी बनानी है, वहां के जितने भी मंदिर है वो मंदिरों को जीर्णोद्धार करना है, नया बनाना है। और दूसरे गांव में 10 करोड़ मात्र के मात्र जड़ संचय में कि वहां चेक डैम बनाना, तालाब बनाना, बोर रिचार्ज, कुआ रिचार्ज, डैम बड़ा करना है, तो सिर्फ के सिर्फ जड़ संचय में लगाना है। 5 साल के बाद दोनों गांव की आप विजिट करने, क्या फर्क मिलेगा? जिस गांव आपके जड़ संचय के लिए आपने जो रुपया लगाए ना, उस गांव ने दूसरे गांव का 50% काम लोक भागीदारी से कर दिया होगा। और जिस गांव में आपने लोगों को सिर्फ सुविधा दी है, तो वहां के वही बेंच में बैठे बैठे वो हमारे राजकीय आगेवान को सिखाते रहेंगे कि इन लोगों को देश चलाना नहीं आता है। तो कहने का मेरा इरादा है कि पानी है तो खुशहाली है, तो पानी अगर मिल जाए ने, बाकी की सुविधा लोगों को आरसू करने की सुविधा है, तो बड़ी बड़ी कंपनी को मेरे हिसाब से पानी में ध्यान देना चाहिए, अपने अपने विस्तार में पानी लगाना चाहिए। मेरे वहां पे दो प्रसंग है छोटे। एक अमरेली डिस्ट्रिक्ट का एक किसान का फोन आया था कि दिलीप भाई, मैंने मेरी अगले साल दिकरी की शादी की थी, तो इस शादी में मैंने जो खर्चा तय किया था वो कर कसर से मैंने खर्च किया, तो इनमें से 2 से 2.5 लाख मेरा बचा, लेकिन मैंने रुपया तो दिकरी के नाम में इकट्ठा किया था। मैं सोच रहा था एक साल से कि इस रुपया के मैं क्या करूं, लेकिन आपको सुनने के बाद मेरे को एक विचार आ रहा है कि 2-2.5 लाख मेरे पास है, 2-2.5 लाख में और आपको ढूंढ के देता हूं। मैंने जिस गांव में दिकरी दिए ना, इस गांव में मेरे को 4-5 लाख रुपया का छोटे मोटा एक चेक डैम और तालाब बना दीजिए, मेरे को मेरी दिकरी को करियावर में वो गांव में चेक डैम देना है। अब विचार चला, मेरे जामनगर डिस्ट्रिक्ट में सोरठा गांव के एक भी एक मीटिंग चल रही थी। कहने का मेरा इरादा है, सभी लोगों में अगर ये जागृति आए ने तो और कामयाबी होगी। ऐसा दूसरा एक प्रसंग है, जामनगर डिस्ट्रिक्ट के कालावड़ तहसील का एक सोरठा गांव है, वहां पे चालू गांव की सभा में एक बुजुर्ग खड़े हुए मेरे साथ आके, वो मेरे को बोला कि आप सर 2 मिनट रुकिए, मेरे 2 लड़के इधर है, आप इसको खड़ा कीजिए। दोनों लड़के को खड़ा किया, तो वो बुजुर्ग ने क्या बोला, बुजुर्ग ने बोला कि खबरदार, मेरे मरने के बाद आपने कोई खर्चा किया है, अगर आपको मेरे पास कुछ करना है तो मेरे नाम का गांव का तालाब खोद डालना। तब मेरे को बहुत खुशियां मिली। ये अवेयरनेस है ना, वो जागृति का काम कर रही है। तो ऐसे छोटे मोटे अवेयरनेस से लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हम इस गांव को आगे बढ़े रहे।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्तुत्व दिया है जल संचय से जन भागीदारी, और मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने उल्लेख किया है कैच द रेन, तो जल संचय के इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में राजकोट स्थित गिर गंगा परिवार ट्रस्ट के स्थापक प्रमुख दिलीप भाई सखिया और साथ में ट्रस्टी भरत भाई टिलवा उद्योगपति, आप आकाशवाणी अहमदाबाद स्टूडियोज में आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।
2: कैच द रेन, बचपन में जब बारिश होती थी हम सब कागज की नाव बनाकर बहते पानी में छोड़ दिया करते थे और खूब खुश होते थे, लेकिन क्या कभी आज हमने ये सोचा कि जिस पानी को हम बहकर नदी नालों में जाते हुए देखते हैं, वही पानी अगर जमीन के अंदर चला जाए तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के बहुत काम आ सकता है। इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा शुरू किया गया एक बेहद खास अभियान कैच द रेन। कैच द रेन सिर्फ सरकार का कोई कागजी अभियान नहीं है, बल्कि ये हम सब की जिम्मेदारी और हमारे कल की सुरक्षा की चाबी है। छतों से टपकते पानी को सहेजना हो, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना हो, या अपने इलाके के सोखता गड्ढों की सफाई करना हो, हर एक छोटा कदम हमारे गिरते भूजल स्तर को वापस ऊपर उठा सकता है। तो हम सभी अपनी ओर से जल संरक्षण का भरपूर प्रयास करेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं नीलम मलकानिया कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे Hey there, do you agree with?
3: समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में

0: अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉ. सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में यह क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, फिर चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर यह दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया गया है। दक्षिणी ट्यूनीशिया में प्रवासियों को ले जा रही एक नौका पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य लापता हैं। एक व्यक्ति को बचा लिया गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 88 रन बना लिए हैं। मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है।

0: हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector. Mr. Modi said that India is highly competitive in terms of cost and have quality talent with a strong risk-taking capacity. The Prime Minister said this combination gives the country the potential to establish itself rapidly as a leading player in the global space sector. On National Space Day, Union Minister of State for Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, has recalled the historic success of Chandrayaan-3. In a social media post, Dr. Singh remembered the moment

Welcome back, listeners. You're listening to Akashvani FM Rainbow 101.9 and this is me, your RJ Lahiri. तो आज का टॉपिक फोनिंग्स के लिए और या हेलो रेनबो के लिए ये है कि एज किड्स वी यूज टू हेट ओल्ड सॉन्ग्स बट ग्रोइंग अप वी कनेक्ट टू देम मोर, इज़न्ट इट? सो डिड यू ऑल्सो फील सेम एज अ किड? And also, let me know which old song did you hate as a kid but love it so much. Don't forget to call us on 0402323-0030 and 0402323-4822.

Welcome back, listeners. You're listening to Akashvani FM Rainbow 101.9, and this is me, your RJ Lahiri. It's time for our favorite hour, that is Hello Rainbow. So why late? Grab your phones and call us on 0402323003, 0402324821, and 0402970475. तो आज का टॉपिक सुन के ही ना एक स्माइल भी आएगा और थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया भी. सो द टॉपिक इज एज किड्स वी यूज टू हेट ओल्ड सॉन्ग्स बट ग्रोइंग अप वी कनेक्ट टू दम मोर. सच बोला गाइस, बचपन में जब घर में पुराने गाने चलते थे क्या रिएक्शन होता था.

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप

0: अरे अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे हैं?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछ ना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सब ही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच
0: है? बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: द आकाशवाणी पॉडकास्ट। वेल, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। द आकाशवाणी पॉडकास्ट लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं, और आपका होस्ट, आपका दोस्त आरजे गौतम तो आपके साथ जुड़ गया है, लेकिन एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे साथ है जो जैसे ही आया ना स्टूडियो में, तो इनके बारे में बस यही कहना चाहूंगा कि दिल गार्डन गार्डन हो गया, पूरी ऑडियंस में भी उत्साह है। एंड इंडियन आइडल सीजन 16 के सेकंड रनर अप मनराज वीर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं पाजी आप?
1: आई एम वेरी गुड, आप कैसे हो?
0: बहुत बढ़िया, चंगा एकदम। आप आ गए ना, मतलब बारिश का मौसम है, सुहावना मौसम है, और बातचीत करने के लिए जब आप आ गए हो। कहते हैं कि सपना एक देखो ना, मुश्किलें हजार आती है, लेकिन वो मंजर कितना खूबसूरत होता है जब कामयाबी शोर मचाती है। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है,
1: बिल्कुल सही।
0: लेकिन वो बचपन के सपने जब आप साकार करने के लिए निकलते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं? शुरुआत दिल्ली से हुई, लॉ की पढ़ाई की, उसके बाद म्यूजिक कैसे आया लाइफ में?
1: शुरुआत मेरी एक्चुअली मेरी फैमिली में म्यूजिक वाला कोई नहीं था स्टार्टिंग में, सिवाय मेरे चाचा के। तो
0: अच्छा,
1: जैसे कि मैं हर जगह यही बोलता हूँ कि मेरे चाचा की वजह से मैं म्यूजिक लाइन में आया हूँ, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जब जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो लाइक वो भी जागरण होते हैं, माता की चौकी, इन सब में ना पहले ढोलक बजाते थे वो।
0: अच्छा
1: और तो वो ढोलक घर में पड़ी रहती थी, ठीक है, ढोलक तबला ये सारे इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी घर में होते थे। तो मतलब कहीं ना कहीं उनको देख के ये थोड़ी सी अंदर रहता था कि यार ये क्या चीज़ है, कैसे बजाते हैं, कैसे बजता है। और जागरण में जाता था तो बहुत सारे सिंगर्स आके
0: ये
1: गाते हैं
0: किस एज की
1: माता,
0: बात कर रहे हैं आप? वैसे तो अभी
1: ये
0: भी बहुत यंग है आप।
1: दिस इज ये मैं बात कर रहा हूँ, मैं 7-8 साल, 7-8 साल के आसपास की बात है।
0: क्या बात है,
1: मतलब उस टाइम पे ये था कि देखना सिंगर्स को गाते हुए, देखना माइक पकड़ के गा रहे हैं, कैसा माता की भेंटे गा रहे हैं, और भी मतलब इतना सुरीला गा रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, अच्छा, और इतना अच्छा कैसे लग रहा है सुनने में, इतने सारे म्यूजिशियंस एक साथ बजा रहे हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। तो वहीं से थोड़ा सा बस ये कीड़ा म्यूजिक का धीरे धीरे जागा। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया, स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते गए, जैसे स्कूल में हाउसेज होते हैं ना, जैसे

0: सैटरडे संडे को हाउसेज बनते
1: एक्टिविटी
0: हैं,
1: होती है वो, एक दिन
0: एक्टिविटीज
1: रखा
0: होती
1: जाता
0: है।
1: है।
0: हाँ, किसी का रेड हाउस होता है, किसी का येलो ग्रीन, तो ऐसे हाउसेज में कंपटीशन होते थे, तो वहीं पे सिंगिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, स्कूल मतलब स्कूल में होती है बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी, तो वहाँ पे कंपटीशन से पार्ट लेना। तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे अगर मैं प्राइजेस जीत रहा हूँ तो मतलब कुछ तो अच्छा है आवाज़ में, तो वहीं से बस थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आता गया और म्यूज़िक सीखता गया और अच्छे अच्छे गाने गाता गया। तो धीरे धीरे घर में ही पता लगा कि यार ये तो गाता है, इसकी तो आवाज़ में कुछ तो है। तो फिर मेरे चाचा ने मुझे वहाँ से थोड़ा थोड़ा जो बेसिक होते हैं, जो लाइसेंस होते हैं ना सिंगिंग के, वो देना उन्होंने मुझे स्टार्ट किया वहाँ से। तो वहाँ से फिर मेरा थोड़ा और इंटरेस्ट आता गया। फिर वहाँ से कॉलेज, मतलब जब जब मैंने 12th पास आउट की, उसके बाद मैं गया DU में, शिवाजी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहाँ पे मतलब उससे पहले मेरे पास दो तीन ऑप्शन और थे, जैसे NDA के एग्ज़ाम दिए मैंने, एनडी मतलब बहुत सारे, मतलब कि कभी मैं ऑफिसर बन जाऊँ, कभी गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाऊँ, कभी कभी कभी मेरा एडमिशन हो रहा था वहाँ पे चंडीगढ़ एस्ट्रोनॉटिकल्स कॉलेज में, बीच में सोच लिया मैं पायलट बन जाऊँगा, पता नहीं क्या क्या सोचा। फिर उसके बाद बेसिकली अंदर से समझ में आया कि नहीं यार मुझे म्यूज़िक ही पसंद है, और अगर मुझे कुछ करना है तो म्यूज़िक में ही करना है। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि नहीं यार पापा मैं जा रहा हूँ DU में। तो DU में क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत होती है, आपको पता ही है, जो मतलब काफ़ी सारे मतलब एक्टिंग सोसाइटी होती है, म्यूज़िक सोसाइटी होती है। तो एडमिशन लेते के नेक्स्ट, मतलब एडमिशन आज फॉर एग्जांपल मैंने एडमिशन लिया, कल ही मुझे पता लगा कल ऑडिशन चल रहे हैं रिवर्ब सोसाइटी के, जो हमारी म्यूज़िक सोसाइटी है कॉलेज में। तो मैं खुश, मैं कहा यार ये तो बेस्ट हो गया। वहाँ जाके ऑडिशन दिया, मतलब उन सब के अंदर के ऑडिशन होते हैं, वो ऑडिशन मैंने क्लियर कर लिया और मैं खुश, मैं कहा मेरा तो एडमिशन आज हो गया, मैं म्यूज़िक सोसाइटी में आ गया, मेरा एडमिशन हो गया। तो वहीं से फिर कॉलेज कंपटीशन स्टार्ट हुए। फिर वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनको भी बहुत नॉलेज होती है म्यूज़िक की, तो फिर वहाँ से उनसे भी सीखना मैंने चालू कर दिया। तो मतलब ऐसा कोई एक इंसान नहीं है जिससे मैंने कभी सीखा लाइफ में, बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं आपने कहाँ से सीखा है। तो मैं इनको यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, मेरे चाचा हो गए या जितने भी अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस हो गए, जो मेरे सीनियर्स हैं, जो गुरु, मतलब मैं जिनसे भी आज तक मतलब मैं मिला हूँ म्यूजिकली, उनसे मैंने थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके मतलब उनको पता भी नहीं हो, मतलब उनको आइडिया भी नहीं होगा कि मैंने उनसे सीख लिया, बट मुझे पता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे बात कर रहा हूँ,
1: जी
0: कुछ चीज़ें मुझे अगर आपकी अच्छी लगेंगी तो मैं आपसे ग्रैब कर लूँ, आपको पता भी नहीं लगेगा।
1: नहीं, देखो
0: तो
1: मैंने
0: बस वो
1: कोशिश
0: है।
1: की है कि मैं आज थोड़ा सच धज के आऊं, लेकिन स्टाइलिस्ट जो है, अगर बात करें या फिर स्टाइलिश किंग की बात करें, तो आपको ज्यादा टाइटल सूट करता है
0: नहीं,
1: कहीं ना कहीं। इंडियन आइडल में
0: अभी तो
1: मिला है आपको ये
0: नॉर्मल
1: खिताब, है
0: जी
1: ना,
0: जी
1: रोमांटिक किंग भी कहा जाता है। एंड हम प्रोडक्शन की भी बात करते हैं, हम कंपोजिशन की भी बात करते हैं, हम सिंगिंग की भी बात करते हैं, इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे लेकर आते हैं आप? और ये टर्न जो था, ये आई थिंक ये कोविड के टाइम में आया था।
0: ये नहीं, ऐसा नहीं कह सकते,
1: हाँ
0: मतलब हाँ होता है, क्योंकि देखो अंदर एक स्टार्टिंग से कीड़ा रहा है अंदर की, मुझे अपना म्यूजिक बनाना है, मेरे को इंडिपेंडेंटली म्यूजिक बनाना है, अपने गाने बनाने हैं, लाइक अपनी जो क्रिएशन है वो लोगों को सुनानी है। अब जो गाने ऑलरेडी जिन्होंने बनाए हैं वो तो बने ही हैं, वो तो हम गाते ही हैं, लोगों को मतलब ऑलरेडी पसंद है, बट जो एज ए म्यूजिक कंपोजर एक ना विजन होती है कि मैं चाहता हूँ कि यार इस टॉपिक पे ये गाना बनाऊँ क्योंकि लोगों ने सुना नहीं है। अभी मेरा मन कर रहा तो मैं लोगों को कुछ मोटिवेट करना चाहता हूँ अपने गाने के फॉर्म में, ये मोटिवेट करना है, या मुझे इस तरीके का प्यार फील हो रहा है, क्या यही लोगों को होता है, चलो यार इसके ऊपर भी गाना बना के देखते हैं। मतलब ये कि जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी है क्रिएशन है, वो मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। तो मतलब म्यूज़िक मेरे लिए खाली गाना ही नहीं है, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो लोग फील करते हैं, लाइक म्यूज़िक में हर इमोशन होता है, सैड होता है, रोमांटिक होता है, एनर्जी हो गई, डांस हो गया, एवरीथिंग। तो हर चीज़ फील होनी लोगों को ज़रूरी है, म्यूज़िक इज़ अ फीलिंग, मतलब कहते हैं ना कि म्यूज़िक हील करता है, तो वो हील तभी करेगा जब जब वो आपकी फील पकड़ेगा अंदर की, है ना। तो मेरा बस यही रहता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अगर मुझे कनेक्ट करना है तो मुझे अच्छे अच्छे और उनकी जो लाइफ में हुआ है वो सारे सिनेरियोज देख के मुझे डांस पे भी गाने बनाने हैं, मुझे सैड भी बनाने हैं, मतलब लोग फील कर पाए।
1: चलिए, आपने हीलिंग की बात कही है, एक बात कही जाती है कि मुश्किल रास्तों पर भी आसान यह सफर लगता है, माँ की दुआओं का असर लगता है। माता जी की
0: बिल्कुल
1: तबीयत अब कैसी है और उनका योगदान कितना रहा है? जब भी आपके लाइव शो में आती थी, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती थी।
0: मॉम का मेरा थोड़ा ऐसा ही है, वो बहुत इमोशनल है, उनको बहुत दिक्कत भी है, जैसे उनको सांस की दिक्कत है, उनके लंग की जो लंग्स एक होता है ना, मतलब नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी की लंग कैपेसिटी होती है वो अगर 100% है तो उनकी वो 35-40% है। तो और ऊपर से पोल्यूशन, मतलब ये सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है उन्हें, और कुछ

0: भी थोड़ा सा भी काम करेंगे तो सांस फूल जाती है। तो अब ऐसी सिचुएशन में उनके माइंड में ना बहुत कुछ चलता है। आप मतलब बिफोर आइडल उनके माइंड में ये चलता रहता था कि यार ये क्या सक्सेस होगा भी कि नहीं होगा लाइफ में, क्योंकि मेरी फैमिली में से मुझे आज तक किसी ने रोका नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या होता है कि लोग थोड़े थोड़े मतलब स्टेप बैक करते हैं कि नहीं यार तू ये काम मत कर, नहीं तू ऐसा ही कर, नहीं होगा इसमें कुछ तेरा। तो मतलब मुझे ऐसा कभी रिस्पॉन्स मिला नहीं मेरी फैमिली से कि यार बोले कि नहीं यार तू मतलब सब बहुत सपोर्टिव रहे हैं। और सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा सपोर्टिव इंसान मेरी लाइफ में रहा है वो है मेरी माँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक एक ना बैक एंड पे चीज़ चल रही होती है ना मेरे, जो जो मेरी बैक के पीछे जो मुझे सपोर्ट हर टाइम जो मुझे दे रहा होता है वो मेरी मम्मी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ मेरे पापा को डाउट है तो मेरे वो मेरे से पूछेंगे नहीं, वो पहले ही डाउट उनका मम्मी ने क्लियर कर दिया कि नहीं ये करेगा उसमें ऐसे ऐसे करना, हो गया खत्म।
1: वो साथ है हमेशा।
0: मतलब मुझे उस बारे में बात ही नहीं करनी। अगर मेरे दादा ने कुछ पूछा है कि यार मनराज के साथ ये, तो मेरे से पहले मम्मी आके बोल देंगी लो ये ऐसे ऐसे होगा, ये ऐसे ऐसे कर ले खत्म।
1: वैसे
0: मतलब
1: माँ और
0: एक
1: फैमिली का जब जिक्र आता है तो हर कोई जो है काफी इमोशनल हो जाता है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन जब माँ का जिक्र आए या माँ की तस्वीर सामने आए तो कोई गाना आपके जहन में आता है यार माँ को लेकर जो डेडिकेट करना चाहे? आई एम श्योर के स्टूडियो में जितने लोग हैं या शो भी जो लोग सुन रहे हैं वो भी सुनना चाहेंगे, कोई भी एक भाव।
0: ओके आते तो वैसे बहुत सारे हैं,
1: हाँ,
0: बट अभी कौन सा भाव सुना मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है।
1: जो भी मतलब प्यार से रोमांटिक किंग तो आपको कहा ही जाता है, लेकिन हाँ ये मतलब जो आपके बहुत करीब है।
0: अगर ऐसा अगर कुछ वो करना है रिलेट करना है तो एक गाना है मेरे पास, मेरा फेवरेट भी है।
1: जी
0: तो वैसे तो वो गाना मतलब अपने लवर के लिए गाते हैं, बट उस गाने का मीनिंग मेरे लिए आप ये कह सकते हो कि मेरी माँ है, तो मैं सुनाता हूँ।

0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, क्या कमाल की आवाज है आपकी। एंड
1: थैंक यू।
0: कमाल तो आप करके भी आए इंडियन आइडल में, लेकिन बैक ऑफ द स्टेज क्या क्या होता है, क्या मस्ती होती है, क्या मजाक होते हैं, एंड प्रेशर होता है?
1: बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। वो टीवी पे देखने में लगता नहीं है, मतलब लगता नहीं है लोगों को, बट बैक स्टेज की अगर मैं स्टोरी बताऊं तो बहुत प्रेशर होता है भाई। देखो, मतलब मुझे पता लगा है कि अभी 1 घंटे बाद मेरी परफॉर्मेंस है, तो वो एंग्जाइटी और वो जो नर्वसनेस ना, वो 1 घंटे पहले आनी स्टार्ट हो जाती है। उसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। क्या होता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस टाइमिंग होती है 4 से 5 मिनट, हमें 5 मिनट में अपना बेस्ट देना है वहाँ पे स्टेज पे। अब आपके पीछे इतने सारे लाइट्स वाले सब कुछ सेटअप हो रहा है, 1 घंटे तक साउंड चेक चल रहा है। अब साउंड चेक होने के बाद आपके पास 5 मिनट है, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। ठीक है, मैं तो चाहूंगा कि अच्छा ही हो, बुरा हो गया तो फिर जजेस के स्कोर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यही रहता था कि यार गलती ना हो जाए, यार मैम क्या मुझे लिरिक्स याद हैं, मैं मतलब रट के देखना। कभी कभार तो हाथ पे लिख लेते थे कुछ, एक आधा वर्ड होता था ना जो हमेशा अटकता था गाने में,
0: आजकल वो कैमरे में पता लग जाता पर है।
1: नहीं पता लगता। मतलब ये ना सिंगर ही समझ सकता है, जैसे गानों में चार चार अंतरे हम गा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे अगर कोई यहाँ बैठ के कोई गाना गा रहा हूँ, कुछ एक आधा वर्ड ऊपर नीचे भी होता है तो चलता है, अभी कोई जज नहीं कर रहा है बैठ के। लेकिन अभी वहां पे क्या होता है कि पहला अंतरा सही गा दिया, दूसरा सही गा दिया, तीसरा सही गा दिया, जब चौथे की बारी आती है तो भूल जाते हैं कि लिरिक्स है क्या। तो उसके लिए कुछ ना एक, मतलब कुछ एक मार्क लगा के मैंने एक दो बार किया ऐसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा कोई वर्ड मुझे याद नहीं रहता, या अंतरे का पहला वर्ड कभी कभार क्या होता है ना याद आता है तो पूरा अंतरा याद आ जाता है। तो जो जो अंतरा मुझे याद नहीं रहता था ना, उसका पहला वर्ड मैंने लिखा, कहा हाँ अभी ये अगला ये है, ठीक है, याद आ गया, वर्ड देखते पूरा अंतरा। तो ऐसा होता है सबके साथ, क्योंकि देख के तो नहीं गा सकते आपको ना, आपको टेलीप्रॉम्प्टर मिलेगा ना आपको कुछ मिलेगा, आपको तो
0: चलो,
1: गाना
0: हाथ पे
1: गाना
0: लिखा
1: है।
0: है कि आपने बात कही, आपका टैटू भी काफी अच्छा लग रहा है,
1: थैंक यू
0: ये
1: सो मच,
0: आपने
1: थैंक यू।
0: लेटेस्ट करवाया अभी?

0: ये हाँ, मैंने अभी टैटू लेटेस्ट करवाया, कल ही करवा के आया हूँ।
1: अच्छा क्या लिखा हुआ है इस पर?
0: इस पे मैंने लिखा है वन लव, दिस इज वन लव,
1: ओके,
0: और उसके
1: कुछ नीचे
0: नीचे
1: डेट ऑफ बर्थ भी है आई गेस कुछ।
0: या वन लव, और उसके नीचे मेरी मम्मी का सन ऑफ बर्थ है रोमन नंबर्स में।
1: ओ
0: एक मेरे टैटू यहाँ पे शोल्डर पे है जिसमें मेरे फादर का है सन ऑफ बर्थ, और ये इसमें मेरी मम्मी का।
1: क्या बात है, तो उनको
0: थैंक
1: दिखाया,
0: यू।
1: माता जी का
0: हाँ
1: क्या कहना था?
0: देखो, पहले तो उनको टैटू से बहुत प्रॉब्लम थी,
1: हर
0: ठीक है,
1: पेरेंट्स को होती है कहीं ना
0: हाँ
1: कहीं।
0: होती है। तो जब उन्हें पता लगा अच्छा मेरी सन ऑफ बर्थ लिखवाई है, फिर ठीक है।

0: फीलिंग थी, आपने कैसे, मतलब क्या भाव थे, नर्वसनेस उस दौरान थी एक लेजेंड के साथ परफॉर्म करना?
1: नर्वसनेस तो नहीं बोलूँगा मैं, बट उस टाइम मैं बहुत ब्लेस्ड था। एक्चुअली एक हमारा एपिसोड था रीयूनियन, जिसकी आप बात कर रहे हो,
0: जी
1: रीयूनियन एपिसोड था, उसमें आए थे वो। और क्या होता ना कि जैसे मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, सिख कम्युनिटी, एंड मतलब पंजाबियों के लिए, नॉट ओनली सिख, पूरे पंजाब के लिए, मतलब देश भर में और जितने, मतलब पूरी दुनिया भर में जितने पंजाबी हैं, सबके लिए सतिंदर सरताज बहुत बड़ा नाम है ना। क्योंकि उनकी जो गायकी है वो खाली गायकी नहीं है, उनकी उनकी उनकी गायकी में भी लेसन्स हैं। वो जो लिखते हैं, वो जो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उनकी गायकी में लेसन्स हैं। तो बहुत पहले से, लाइक जब मैं कॉलेज में था, आई थिंक 17-18 साल का था, तब से उनका जो मतलब गाने, उड़ारियाँ हो गया, सज्जन राधी, जिसके आप बापी, जो अभी आप गाना गा रहे थे, तो सबके गाने के लिरिक्स आप देखोगे ना, अगर आप सोचने समझने जाओगे कि इन्होंने बोला क्या है, मतलब गाने से ज़्यादा लिरिक्स आपके दिल में बैठ जाएंगे, फिर आप और प्यार करोगे उनसे। तो वही ब्लेसिंग थी, वही एक ऐसा बोल सकते हो कि हाथ था सर पे ऊपर वाले का, कि उनके साथ मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला। और बातों बातों में उन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: बैक ऑफ
1: जैसे
0: द स्टेज भी काफी बातें हुई होगी उनसे।
1: बैक ऑफ द स्टेज यही बातें होती हैं कि मतलब बैक ऑफ द स्टेज मोस्टली क्या होता है कि टीवी पे नहीं दिखाते कि जजेस हमें आके बता रहे हैं या आपको कुछ सिखा रहे हैं। तो बैक स्टेज में यही होता है कि मेरी परफॉर्मेंस फॉर एग्जांपल ख़त्म हुई, अगर मुझे कुछ पूछना है तो मैं जा सकता हूँ जजेस के पास भी, यार मैंने ये चीज़ ऐसे करी।
0: फीडबैक के लिए।
1: जैसे जैसे गाने के बीच में कोई भी जैसे इम्प्रॉम्प्टू पार्ट डाला, जैसे वो भी कह रहे थे कि तबले का आप डालते हो बीच में, अच्छा लगता है ये सब, तो ये
0: फ्यूजन
1: सब
0: और
1: तो
0: वेरिएशन
1: मुझे भी
0: काफी।
1: कहीं ना कहीं मतलब वो डर रहता था। मतलब जो हमारे मेंटर हैं आनंद सर, जो इंडियन आइडल जो सबकी तैयारी करवाते हैं बैक स्टेज, तो मतलब उनसे सबसे पहले तो उनसे पूछना कि सर इसमें कुछ ऐसा करते हैं, तो वो भी आइडियाज़ लगा के हम कुछ आपस में वो उसको बनाते थे। तो मेरी फिर ये सब करने के बाद टेंशन ये कि क्या ये जजिस को पसंद आएगा। देखो ऑडियंस का तो बाद में है, लेकिन पहले जो बैठे हैं उनको पसंद आना चाहिए। तो मतलब परफॉर्मेंस एक दो बार ख़त्म होने के बाद मैं जाता था कि मैं सर ये पार्ट कैसा लगा, सर ये मैम ये मतलब श्रेया मैम, विशाल सर, बादशाह बाजी, तो उनसे पूछते थे कि ये आपको पार्ट कैसा लगा। कि हाँ यार मज़ा आ गया। कभी कभार तो परफॉर्मेंस के दौरान ही खड़े होते कि भाई यार क्या कर दिया, मज़ा आ गया। बैक स्टेज यही सारी चीज़ें चलती है। और सतेंद्र पाजी के साथ भी सेम यही चीज़, उन्होंने मुझे उस एपिसोड में ब्रॉच, जो पगड़ी ब्रॉच वो डालते हैं,
0: जी,
1: वो भी उन्होंने गिफ्ट किया था मुझे।
0: वो हर परफॉर्मेंस में लेके आते हैं
1: हाँ
0: वो।
1: वो डालते ही हैं,
0: ओ
1: उनका जो भी गेटअप रहता है शोज का वो डालते हैं। तो मतलब उन्होंने मुझे गिफ्ट किया और बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें सिखाई इंडस्ट्री के बारे में। एक तो उनके बोलने का तरीका, उनका लहजा ऐसा है कि हर कोई पिघल जाएगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई। तो उनसे ये भी बहुत सीखने को मिला कि सबके साथ नरमी से पेश आओ,
0: डाउन टू अर्थ
1: डाउन
0: बिहेवियर
1: टू अर्थ
0: काफी
1: रहो।
0: उनका।
1: यस, तो ये सब चीज़ बैक स्टेज ये सब चलता है।
0: क्या बात है। कोई ऐसे लम्हे, कोई फनी किस्सा जो मतलब किसी के साथ आपने शेयर ना किया हो, यहां पर करना चाहे, चलते लाइव शो में हुआ हो या फिर जजेस के साथ?
1: फनी किस्सा ये है कि एक मैंने गाना गाया था ओ मेरी जान के का, आई थिंक वो एलिमिनेशन एपिसोड था, टॉप 10 का एलिमिनेशन एपिसोड था वो, उसमें मैंने गाना गाया था ओ मेरी जान। तो क्या हुआ कि मैं बहुत एक्साइटेड हो गया स्टेज पे, और वो ना स्टेज पे पीछे से जो आइस होती है ना, ड्राई आइस, जो आप देखते हो कि
0: राइट।
1: धुआं धुआं आता है, वो होती है ड्राई आइस, तो वो आ रही थी स्टेज पे पीछे से। तो मैं वहाँ पे कूद कूद के गाना गा रहा हूँ मस्त, बिल्कुल रॉक स्टार बन के, साथ में गिटार पे शांतनु भाई खड़े हैं, वो अपना गिटार बजा रहे हैं। तो क्या हो गया, अंतरा खत्म हुआ, अंतरे के बाद ना एक पोर्शन आता है जहाँ पे बहुत हाई कुछ गाना होता है, तो उसको गाने के लिए मैं एकदम ऐसे पीछे हुआ तो स्टेज पर गिर गया। वो टीवी पे
0: चलते
1: दिखा।
0: शो में।
1: हाँ,
0: अच्छा।
1: तो वो बड़ा फनी था। और फटाफट गिर के मैं उठ के दोबारा गाने लग गया, नाता समझे ना ये दिल मेरा, तो फिर सब देख रहे हैं कि हाँ यार। तो मतलब ये सब चीज़ें फनी होती रहती है बीच बीच, ये टीवी पे आया नहीं।
0: वेल, उतार चढ़ाव तो लाइफ में होते हैं, लेकिन मौसम कितना मतलब मिजाज चेंज करता है। दिल्ली की बात कर लो आप, दिल्ली से शुरुआत आपकी हुई है, एंड शुरुआती दौर में आप यूट्यूबर भी रहे हैं, आई गेस यूट्यूब से आपने शुरुआत की थी।
1: यूट्यूब नहीं, मैं मतलब वैसे यूट्यूबर नहीं हूँ, बट हमारा हम जैसे मारविक बैठा, देखो आप मतलब हम दोनों सेम ही क्लास में थे, और लोगों को पता है। अभी फॉर एग्जांपल आइडल में भी मैंने एक गाना किया था बरसात,
0: ओके
1: बरसात गाना आपने देखा होगा, जिस मतलब
0: जी
1: आइडल
0: जी
1: में पहली बार हुआ था कि किसने अपना ओरिजिनल गाना परफॉर्म किया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं
0: ऐसा बहुत
1: थैंकफुल,
0: कम होता है ऐसा।
1: ऐसा ऐसा बहुत कम है, ऐसा होता ही नहीं है कि आइडल में कोई भी कंटेस्टेंट अपना ओरिजिनल गाना परफॉर्म कर रहा है। तो वो मौका मुझे मिला, मैं बहुत ग्रेटफुल था उस टाइम पे। और तो फिर वो गाना मारविक ने लिखा था, मैंने गाया, तो हम दोनों स्टार्टिंग से ही काम कर रहे हैं साथ में। और तो गाने बनाते हैं हम, गाने बना के सेल करते हैं हमें ऑलरेडी हम

0: कॉलेज में मिले थे तो कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिया था हमने, तो वहीं से फिर हमने सोचा कि यार अपने गाने बना के यूट्यूब पर भी डालते हैं, तो हमारा चैनल भी है द ट्विस्टी ट्यून्स नाम से, तो वहीं पर हमारे गाने भी आते हैं। तो हम मतलब शुरुआत सब मतलब हर किसी म्यूजिशियन की शुरुआत ऐसे ही होती है, कहीं तो इंस्टा पे डालेगा, साउंड क्लाउड पे या यूट्यूब पे, तो कुछ हमने भी ऐसी करी शुरुआत अपनी।
1: कॉमेडी किंग भी आपसे मिले थे, द कपिल शर्मा,
0: हाँ
1: एंड उन्होंने एक बहुत अच्छी बात आपको कही
0: बहुत
1: थी
0: ही
1: कि
0: अच्छा एपिसोड
1: पाजी,
0: था वो।
1: हाँ कि पाजी इतनी सारी चीजें आप कैसे करते हो, कंपोजिशन भी खुद कर लेते हो, गायकी तो कर ही रहे हो, एंड प्रोडक्शन में भी हो, ये मल्टीटास्किंग कैसे हो पाती
0: मल्टीटास्किंग ऐसे हो पाते क्योंकि दिल बोलता है करने को। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई वो नहीं है कि कोई चार्ट मुझे फॉलो करना है, ये करना है, बस वो दिल से आता है। मतलब मेरे अंदर एक ये है, मतलब जो एक आग रहती है ना अंदर की, मुझे ये काम करना है तो करना है। अब मैंने सोचा है कि अगर मुझे म्यूजिक बनाना है तो वो मैं कुछ ना कुछ करता रहूंगा, अगर मैं उस चीज में नहीं हाथ बढ़ाऊंगा तो फिर मतलब उसका फायदा ही नहीं है वो, मैं उस चीज को कैसे पूरा करूंगा, कैसे गाने बनाऊंगा। तो गाने बनाना है, म्यूजिक प्रोडक्शन करना। अब गाने बनाने के लिए ये सारी चीजें आनी चाहिए कि म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग क्या होता है, म्यूजिक कॉम्पोजिशन क्या होती है, म्यूजिक अरेंजमेंट्स क्या होती है, गाने को किस तरीके से गाना है, कितने स्टाइल में गाना है। तो जब मुझे ये पता है कि गाना बनाना है तो फिर मेरे अंदर अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ गई कि गाने को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ करनी है, और अगर मुझे कोई चीज़ उनमें से नहीं आती तो वो मुझे सीखना है,
1: क्या
0: तो
1: बात
0: फिर
1: है।
0: वो ऑटोमेटिकली आ जाता अंदर से।
1: हाँ कपिल शर्मा एपिसोड के बारे में भी आप कुछ बता रहे थे। हाँ
0: वो मैं एपिसोड की बात कर रहा था, एपिसोड बहुत अच्छा था, वो बहुत ही एनर्जेटिक एपिसोड था। उनकी तो एनर्जी ऑलरेडी आप सबको पता है, पूरे इंडिया को पता है उनकी एनर्जी कैसी है। तो जब मतलब उससे जब वो आए, उससे हाफ डे शूटिंग का काफ़ी शांत, मैं बोलूँ तो बोरिंग चल रहा था, और जैसे ही वो आए जो हाफ एपिसोड में वो आए, तो मतलब एनर्जी लेवल ही चेंज हो गया, फिर हमारा गाने का एनर्जी लेवल भी चेंज हो गया। फिर अपने आप को प्रेजेंट करने, एक होता है ना पंजाबी जब आ जाता है तो फिर सबको पता ही एनर्जी का क्या होता है, वही वाली
1: लाइव में
0: बात
1: तो
0: है।
1: उन्होंने जो कहा वो सबने सुना, लेकिन
0: हाँ
1: लाइव के बगैर अगर हम बात करें तो उनसे बात हुई।
0: नहीं, उनसे मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई, मतलब ऑन
1: अच्छा
0: स्टेज ही बात होती है। जैसे उनके साथ मैंने छल्ला गाना गाया था, तो जब साउंड चेक हो रहा होता है तो हमारे पास आधा पौना घंटा होता है साउंड चेक करने के लिए, तो वही
1: ओके,
0: दोनों खड़े हुए थे स्टेज पे, हम लोग बात कर रहे थे बस उतना।
1: बहुत अच्छी बात है। एंड सबसे फेवरेट मेरा पता है कौन सा था, जब आप गा रहे थे आपने सिंगिंग शुरू की थी, हेमा मालिनी एकदम खड़ी हो गई थी, वो एकदम उनके लिए शॉकिंग था, और मतलब एक अलग ही गूज़बम्प ऑडियंस को भी आ गए थे, वो क्या था, वो शेयर करना चाहेंगे, वो कैसी फीलिंग थी?
0: बहुत नहीं, एक्चुअली क्या होता है कभी कभार तो मैं अपनी परफॉर्मेंसेस, मैं जब भी गा रहा होता हूँ ना, आप मेरी मोस्टली वीडियोस देखोगे मेरी आंख बंद रहती है, मेरा ध्यान सिर्फ गायकी पे होता है कि मेरे सुर ठीक लग जाएं, मैं लिरिक सही गा दूं, मेरा ध्यान ऐसे ही होता है। तो बाद में लोग कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप मुझे पॉइंट आउट कर रहे हो ना ऐसे ही, वो यार मैम तो खड़े हो गए थे, या मैम बीच में खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, श्रेय मैम खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं आधे गाने में का, अच्छा क्योंकि मेरी तो आंख बंद रहती है, मैं गाने पर ध्यान रहता है मेरा बस, बाद में फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा ऐसा हो गया था, तो मतलब अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि बस मेरा फोकस यही रहता है कि मैं अच्छे से गाऊं, और वो तो बाद में टेलीकास्ट में देखता हूँ, अच्छा ये रिएक्शन था क्या, ओ नाइस, मुझे पता होता तो मैं स्टेज पे थोड़ा ओवर रिएक्ट
1: ये तो होता है ना, मतलब
0: करता।
1: कॉम्प्लीमेंट हर किसी को पसंद होते हैं, लेकिन कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जिसने लाइफ एकदम बदल दी हो, जजेस ने आप पर्सनली आके आपसे बात की हो और आपको लगा ये वाली जो राय है ना ये मेरे साथ रहेगी हमेशा।
0: तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जजेस स्पेशली जब खड़े होते हैं तो वही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिल रही है। आई थिंक मतलब श्रेया मैम से, विशाल डडलानी सर से, बादशाह बाजी, ये तीनों खड़े हो गए, आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिल रही है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि जब आपके म्यूज़िक को जब कोई पहचान लेता है, तो लास्ट फिनाले एपिसोड में बादशाह बाजी ने बोला कि यार ये बंदा, जैसे हम लोग मतलब वो अपने आप को भी और जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, करण औजला, दिलजीत दोसांझ, इन सबको पॉइंट आउट मतलब बोल रहे थे कि जैसे हम लोगों ने बड़े बड़े अरेनाज फिल करे हैं, शोज होते हैं हमारे सोल्ड आउट, तो तुम भी करोगे, उन्होंने मुझे बोला। तो क्या होता है जब इतना बड़ा आर्टिस्ट जब आपको ये चीज़ बोल देता है ना, तो आपका भी कॉन्फिडेंस मतलब एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार शायद, मतलब जैसे इंडस्ट्री है, अगर इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े लोगों ने अपना लिया ना, तो इसका मतलब यू आर अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। अब अगर कोई आपको कंपेयर कर रहा है कि यार आज दिलजीत दोसांझ पाजी ने या करण औजला पाजी ने ये सब फिल किया है ना, तो तुम भी कर सकते हो। मतलब आज से 2-3 साल पहले क्या होता था कि वैलिडेशन चाहिए होती थी कि यार कोई भी हमें देखे, कोई बड़ा जो स्टार आया है उस मतलब उसकी नज़रों में आ जाए, है ना, मतलब यही सपना रहता था कि यार क्या इन्हें पता भी है हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, क्या बादशाह बाजी को पता होगा, क्या दिलजीत को पता है कि भाई मैं मतलब मनराज कौन है, हमें तो पता है दिलजीत दोसांझ कौन है, ठीक है,
1: बिल्कुल
0: पर क्या उन्हें पता है कि मैं कौन हूँ। अब जब ऐसा फील होता है ना कि नहीं पूरी इंडस्ट्री को पता है कि मनराजवीर कौन है, तो
1: राइट
0: एक वो सेटिस्फेक्शन और एक वो कॉन्फिडेंस ना वो अंदर

0: आ जाता है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली हैं मुझे, विशाल सर ने भी बोला कि यार यू आर अ रॉक स्टार, ठीक है, आपकी बहुत यूनिक आवाज़ है, ठीक है। श्रेया मैम ने बोला कि यार इंडियन आइडल में कि आप इस सीज़न के इंडियन आइडल की खोज हो। तो इतनी इतने बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट्स जब मिलते हैं ना, तो बस एक ये है कि अंदर और काम करने की इच्छा आ जाती है।
1: वो जब
0: वो कभी
1: कॉम्प्लीमेंट मिला
0: मरने
1: आपको बादशाह पाजी से, वो वाला गाना एक बार हो जाए, कम ऑन, हमारी ऑडियंस के लिए हो जाए, लिसनर्स के लिए हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली वो गाने से पहले मिला था, बट मैं गाना गा देता हूँ। एक्चुअली वो वही गाना था जो मैंने ऑडिशन में गाया, फिर तारा हूँ
1: ओ
0: दर बदर। तो क्या था कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग था इंडियन आइडल पे। लास्ट में क्या होता है कि जो टॉप थ्री थे हम सबको अपने अपने जर्नी के पहले पहले सॉन्ग परफॉर्म करने थे, तो मैंने भी ये परफॉर्म किया था। तो उन्होंने इससे पहले ये बात बोली थी, और तो मैं ये गाना गाता हूँ अभी।

0: क्या बात है,
1: थैंक यू
0: निशान
1: सो
0: तो आप
1: मच
0: छोड़
1: मच
0: ही रहे
1: क्या
0: हैं हर किसी के
1: थैंक
0: दिल
1: यू।
0: में. आप तो सबके फेवरेट हैं, लेकिन आपका फेवरेट कौन है? आपका फेवरेट सिंगर कौन है? क्या कोई इंटरनेशनल सिंगर जिसने बहुत इंस्पायर किया हो आपको लाइफ में?
1: इंटरनेशनल पहले तो मैं इंडियन इंडियन की बात करता हूँ।
0: जी
1: इंडियन में जो सबसे पहली मेरी जो इंस्पिरेशन है वो तो वही है, दिलजीत दोसांझ। सबसे पहली इंस्पिरेशन कि मतलब एक होता है ना कि देखो मैं भी सीखूं, मतलब सीख छोड़ो, मैं भी पंजाबी हूँ, वो भी पंजाबी हैं और पूरे पंजाब को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, सर पे पगड़ी है, मेरी भी सर पे पगड़ी है, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलेट कर पाता हूँ कि यार, और जो वो भी जिस टाइप का म्यूज़िक कर रहे हैं सेम टाइप का म्यूज़िक मैं ही कर रहा हूँ। तो मतलब एक होता है कि यार हाँ, अगर ये इंसान यहाँ से वहाँ पहुँच सकता है तो सेम चीज़ हम भी कर सकते हैं। तो मतलब सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे लिए अभी तक वही है। और अगर आप इंटरनेशनली बात करो तो दो वेस्टर्न आर्टिस्ट है जो मुझे बहुत पसंद है, एक तो ब्रूनो
0: ओके
1: मार्स और एक है वीकेंड। इन दोनों का
0: ये
1: म्यूजिक
0: तो
1: मैं
0: एकदम
1: बहुत
0: दोनों ही
1: सुनता हूँ।
0: वाइब अलग होगी ना,
1: बिल्कुल
0: मतलब
1: बिल्कुल, ब्रूनो,
0: फ्यूजन और पार्टीज वाली वाइब आपको ज्यादा पसंद है.
1: हाँ यस यस
0: दिलजीत पाजी की आपने बात की है, गबरू तो बैरे ने भी मीठा बोलदा, नीतू तो फिर जट दा प्यार बली. एक गाना, एक
1: क्या
0: दो कुछ हो जाए, उनके
1: बात
0: लिए भी कुछ हो जाए ना.
1: उनके लिए
0: हाँ
1: डायमंडा दा नार तोड़दा जिन्ना तेरा पार गोरिए, गबरू ता वैरी ना भी मिठा बोलदा नी तू ता फिर जट दा प्यार गोरिए, गल विच पाया 40 लाख बोलदा डॉलर च 80 क हजार गोरिए, गबरू ता वैरी ना भी मिठा बोलदा नी तू ता फिर जट दा प्यार गोरिए।
0: क्या बात है, क्या बात है, एकदम पार्टी वाली
1: नहीं
0: वाइब जो है बन गई है स्टूडियो में भी, बहुत ही कमाल. वैसे कहते हैं कि मतलब अगर आप पंजाबियों से बात कर रहे हैं ना खासकर, तो फिर खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल कदे किसी तरह दुखायो
1: सही
0: ना.
1: बात है,
0: तो खाने
1: एग्जैक्टली
0: पीने के शौकीन है, मतलब आपको दिल्ली का फूड पसंद है?
1: दिल्ली का बहुत
0: हाँ,
1: ज़्यादा पसंद है। मैं
0: परहेज नहीं
1: एक
0: करते हम लोग
1: नहीं,
0: गले के लिए.
1: मैं बिल्कुल परहेज नहीं करता। हालांकि बोलते हैं लोग परहेज करो बट मैं बिल्कुल नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि यार एक बहुत अच्छी फिलॉसफी है, अच्छा खाओगे तो अच्छा गाओगे बस। और ये फिलॉसफी मैंने सीखी है मेरे मेंटर, इंडियन आइडल के जो मेंटर है आनंद सर, उनसे।
0: वैसे कहते हैं ना, आवाज
1: अच्छा
0: की दुनिया
1: खा,
0: में अगर आप हैं तो उतना चाहिए.
1: हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा लेते हैं, मतलब जो चीज़ अच्छी लग रही है, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम भी नहीं खाते। कुछ सिंगर से बोलते हैं आइसक्रीम नहीं खाएंगे, मैं खा लेता हूँ। मुझे
0: अच्छा,
1: हाँ, मुझे कुछ इतना फ़र्क नहीं
0: परफॉर्मेंस
1: पड़ता।
0: से पहले या एक रात पहले
1: नहीं नहीं परफॉर्मेंस से पहले तो ऑब्वियसली नहीं, नहीं यार, मतलब आधे घंटे
0: सेलिब्रेशन के लिए?
1: परफॉर्मेंस से आधे घंटे पहले से थोड़ा सा परहेज करो। मतलब ये है कि नॉर्मली आइसक्रीम भी खा लेता हूँ मैं, मतलब ऐसा ज़्यादा बहुत तेल वाला खाना नहीं खाना, लेकिन बहुत तेल वाला जो बनाता है खाना तो फिर तो वो तो सब मतलब सबके लिए ही बेकार है, वो आपके लिए भी बेकार है, मेरे लिए तो है ही, गले के लिए। तो हाँ, चिकन रोल हो गया, नॉन वेज तो कुछ भी दे दो, वेज भी दे दो,
0: आने दो,
1: सब
0: है
1: कुछ
0: ना.
1: आने दो।
0: वो किसी ने पूछा ना पंजाबियों से कि सवेरे की करोगे, सवेरे रोटी खावांगे, शाम नो रोटी खावांगे, पाजी रात नो, रात नो पाजी सोवांगे, सारा दिन रोटी थोड़ी ना खाई जानी. तो खाने पीने के शौकीन तो है ही. लेकिन एक बात और कर लेते हैं हम. आपने बोला कि पंजाबी म्यूजिक की हमने बात की है, आपको लग रहा है आने वाले समय में वर्ल्ड वाइड पंजाबी म्यूजिक जो है वो कहर बरपा रहा?
1: आने आने वाले समय, वो तो अभी भी कर रहा है, देखो
0: राइट. हाँ.
1: अभी भी कर रहा है, लेकिन आने वाले समय

0: मुझे लगता है कि बहुत मतलब नॉट ओनली पंजाबी, जो इंडी जो जो इंडिया का पॉप म्यूजिक है, मतलब देखो पंजाबी तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड पहुंच चुका है,
1: राइट
0: बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है। और तो एक चीज़ तो श्योर है कि आने वाले टाइम में इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही बहुत टॉप पे होने वाला है। पहले होता था ना कि चलो आज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, आज जैसे बॉलीवुड में कोई गाना गाना होता है तो कोई देखता नहीं है कि यार कोई मुझे वो मतलब ये कोई एक्स वाई जेड जो भी डायरेक्टर है मुझे चांस दे दे, या मुझे ये चांस दे दे वो चांस दे दे, आज कोई देखता नहीं है। आज तो ये होता है कि सीधा अपने गाने बनाओ, अगर आप ले रहे हो आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना हमारे पास चैनल है हम रिलीज कर देते हैं।
1: आप क्या एंजॉय करते हैं? प्लेबैक
0: मैं ये
1: सिंगिंग के भी ऑफर बहुत मिल गए होंगे आपको, या आपको
0: ऑफर्स,
1: लगता है
0: हाँ
1: लाइव शोज ये ज्यादा चार्मिंग होते हैं?
0: नहीं, देखो सिंगर के लिए लाइव शोज भी इम्पोर्टेंट है, और सिंगर के लिए अपने गाने बनाना और अपने गाने रिलीज करना, अपना जो आर्ट फॉर्म प्रेजेंट करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है बेसिकली। तो शोज भी इम्पोर्टेंट है और अपने गाने बनाना वो भी इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको प्लेबैक करनी है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरा सीन ये है कि अगर प्लेबैक मैं करूं, अगर कोई सामने से आके मुझे बोल रहा है कि यार मनराज ये करना है, मैं श्योर सर बिल्कुल करेंगे, और मैं कभी भी इस चीज़ के पीछे कभी नहीं भागूंगा कि लाइक मुझे प्लेबैक में मेरे को गाना चाहिए। मेरे सिर्फ दो ही डायरेक्टर बहुत फेवरेट हैं, मैंने बोला है पहले भी, एक है प्रीतम सर और एक है AR रहमान सर।
1: वाह,
0: तो अगर मैं दिल से फॉर एग्जांपल मुझे होगा ना कि यार मुझे प्लेबैक करना है इनके साथ, मतलब अगर थोड़ा सा वो आएगा ना कि यार प्लीज दे दो दे दो, तो वो इन दोनों के साथ ही आ सकता है, अदरवाइज नहीं। बिकॉज मेरा ये है कि अपने गाने मुझे करने हैं, कोई चांस देगा तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलेगा तो ऑप्शंस मतलब
1: लाइव
0: क्या है कि
1: शोज।
0: मेरे म्यूजिक को रिलीज करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो मेरा आर्ट है वो मैं गाने बनाऊंगा, क्योंकि म्यूजिक प्रोडक्शन में मैं ही करता हूँ, ठीक है, म्यूजिक कंपोजिशन कर लेता हूँ, हमारी अपनी जो है कंपनी है, तो सही है ना, क्या दिक्कत है, किसी की
1: बिल्कुल,
0: चांस की
1: जो
0: भीड़
1: आए
0: थोड़ी है।
1: जो हो जाए वही बढ़िया। दिलजीत
0: एग्जैक्ट
1: पाजी के हम
0: बिल्कुल
1: बात कर रहे थे, अब वो मूवीज में भी आ गए हैं। आपको अगर मूवी का ऑफर आया तो यू विल गो फॉर इट?
0: मूवी का ऑफर, मूवी का नहीं पता, नहीं मूवी में मेरा इतना
1: ओके
0: इंटरेस्ट नहीं है, हालांकि मूवी के लिए गाने देने हैं तो उसमें मेरा इंटरेस्ट है, मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
1: चलिए, दो बड़े नाम आपने लिए, प्रीतम एंड श्री AR रहमान, उनका कोई फेवरेट गाना हो जाए।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया,
1: बहुत
0: बहुत
1: सारे
0: ही
1: गाने हैं प्रीतम
0: खूबसूरत।
1: सर के यार, मतलब बता नहीं सकता मैं, सारे ही फेवरेट है मेरे तो।
0: ये ऑल टाइम है ना, और मौसम भी कुछ ऐसे ही हो रखा है।
1: हाँ
0: दिल्ली का वेदर कभी भी आपके बॉस या गर्लफ्रेंड के मूड की
1: हाँ
0: तरह बदल सकता है, लेकिन करवट
1: सही बात है।
0: जरूरली है। मौसम इतना शानदार है, इस मौसम को देखते हुए कोई गाना, बरसात के मौसम को देखते हुए, सावन को देखते हुए
1: अच्छा
0: कोई गाना।
1: बरसात को देखते हुए, देखो मेरा अपना ओरिजिनल गाना है तो मैं दूसरा क्यों कहूँ, है ना? ठीक है
0: इसे कहते प्रमोशन।
1: या प्रमोशन का मौका नहीं छोड़ना चाहिए।

0: को लग रहा था कि मतलब मैं इंडिविजुअल आर्टिस्ट बनूं, लेकिन उसके बाद इंडियन आइडल, इंडियन आइडल ने आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आया? इंडियन आइडल क्या, किस स्तर पर आपको लेकर गया, और उसके बाद क्या चेंजेस आपने देखे लाइफ में?
1: इंडियन आइडल से देखो बहुत ही बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज आया लाइफ में, मतलब लाइफ में नहीं, मेरे म्यूज़िक जो मैं करियर की बात करूँ उसमें, क्योंकि क्या होता है ना कि आगे बढ़ने के लिए एक किक की ज़रूरत होती है, एक जो पुश मिलता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है कि एटलीस्ट आप उस स्पेस में आ जाओ कि आप काम कर सको आगे, नॉट कि आपको फेम मिल जाए या पैसा कमा लो, नहीं। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इंडस्ट्री बहुत बढ़िया, बहुत कंपटीशन भी है इसमें, इंडस्ट्री में, ठीक है, म्यूजिक लाइन में बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और सब बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ से उठ के एक इंडस्ट्री के अंदर आना और इतना फेम मिल जाना, इंडस्ट्री के लोगों तक पहुँचना, वो जो काम है ना, वो काम इंडियन आइडल ने किया है मेरे लिए। बिकॉज आइडल से पहले लाइक हम यही देखते थे कि मतलब किसी को इंस्टा पे DM करना कि यार एक गाना रिलीज़ करना है, ये लेबल का कांटेक्ट चाहिए, फिर मतलब नंबर निकाल निकाल के कॉल करते थे कि ये लेबल चाहिए, ये चाहिए। अब क्या हो गया कि अब वो काम बहुत इजी है मेरे लिए, क्यों, क्योंकि अब आप हाई भी भेजोगे ना तो सामने से अच्छा रिप्लाई आ जाएगा कि हाँ सर क्या चाहिए आपको, बताओ, अवेलेबल। तो मतलब ये जो चेंज है ना, ये जो चेंज आया है, तो ये इंडियन आइडल की वजह से ही है,
0: क्या बात है।
1: क्योंकि आर्टिस्ट के लिए ना ये चीज़ जो फ्री फ्लोइंग जो चीज़ होती है ना, क्योंकि मेरे पास आइडिया है, अब मुझे जहाँ रिलीज़ करना है, कैसे निकालना है, वो सारी चीज़ें एक मैं वो अकेला काम नहीं कर सकता। एक गाने को चलाने के लिए बहुत सारे होते हैं, जैसे सिंगर तो हो गया, लिरिक्स राइटर हो गया, म्यूजिक कंपोजर हो गया, फिर कंपनी हो गई, फिर उसकी प्रमोशनल कंपनीज हो गई, कहाँ प्रमोट हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बहुत बड़ा टीम वर्क है एक। तो वो टीम वर्क साथ में बंदे अपने साथ जोड़ना, ठीक है, तो इतने अच्छे लेवल पे आके अच्छा सर्कल बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तो ये जो काम किया है मेरे लिए, ये इंडियन आइडल ने किया है। हालांकि अभी कहानी, मेरा मानना ये है कि अब यहाँ से स्टार्ट है। आइडल ने तो पुश दे दिया कि करो, मतलब आपको मैदान में छोड़ दिया है ना, आइडल ने आपको लाके मैदान में छोड़ दिया, अब तुम जितना कर सकते हो करो, ये है। अब मैं कितना कर सकता हूँ, मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है, मैं कितना म्यूजिक बना के, मतलब सब मेरे ऊपर है। अब यहाँ से आप यहाँ से कितने बड़े बनते हो, अपने आप को संभालना है।
0: बहुत जरूरी है,
1: यस,
0: तभी
1: तो
0: एकदम चिल मोड ऑन
1: अब
0: है।
1: नहीं, क्या कह रहे हो, आराम आराम
0: हाँ,
1: तो बिल्कुल नहीं करना
0: क्या दिनचर्या रहती है अभी?
1: अभी के लिए। थोड़ा ये है कि हम ना एक साल से, जैसे क्या है कि एक साल से हम हमारा रोज का रूटीन था, सुबह उठना है, पूरा दिन गाना है, पूरा दिन रिहर्सल्स हो रही हैं, फिर शूट पे जा रहे हो, मंडे टेक्निकल, ट्यूसडे को शूट हो रहा है, 2 दिन का शूट हो रहा है लगातार। शूट होने के बाद ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, चलो जी अगले शूट की तैयारी करनी है, तो एक साल से ये चल रहा था, गा गा के बॉडी भी मतलब हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, गला भी पूरा एग्जॉस्टेड है अभी भी। और एक मतलब उस स्पेस से निकल के यहाँ पे आके, फॉर एग्जांपल अपने होम टाउन आके, घर आके, मतलब जब आप बैठे होते हो ना, तो फिर सोचने का मौका मिलता है कि अब मुझे एज एन आर्टिस्ट क्या करना है। क्योंकि अभी एक साल तक बस वही था कि फिल्मों के गाने गा रहे हैं हम, ओल्ड सॉन्ग्स गा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जा करके सोचने का मौका मिल रहा है कि आगे क्या करना है, कैसे गाने बनाने हैं, तो ये थोड़ा माइंड भी
0: क्या
1: रिलैक्स्ड
0: चल
1: है,
0: रहा है माइंड में?
1: थोड़ा
0: व्हाट्स
1: वोकल।
0: नेक्स्ट?
1: हाँ, नेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट मैं अभी EP प्लान कर रहा हूँ।
0: ओके।
1: हाँ, EP में 5 गाने होंगे एंड वो मैं रिलीज़ करूँगा सितंबर में। उसमें देखो कि आई एम ट्राइंग कि अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ, जितने भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं इंडस्ट्री में, सबके साथ कोलैबोरेट हो, मतलब उस EP में नहीं, EP के आगे भी एल्बम करनी है, बट अभी सितंबर में एक मेरा प्लान है कि EP रिलीज़ करूँ मैं, 4 से 5 गाने की। मतलब बेसिकली आपको बताया ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ओरिजिनल म्यूजिक लोग सुने, ठीक है, तो उसके लिए मुझे ही काम करना है। और जितना जल्दी मैं सोच रहा हूँ कि आइडल से अभी भी निकला हूँ तो लोग थोड़ा जानते हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि फिर मैं नहीं अगर एक्टिव रहूँगा तो फिर धीरे धीरे फेड हो जाता है आर्टिस्ट, तो वो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यही है कि बहुत सारे गाने निकालने हैं। सेप्टेम्बर में EP करूंगा, फिर उसके बाद 4-5 महीने बाद फिर एल्बम कर दूंगा, फिर मतलब बीच बीच में सिंगल्स आते रहेंगे, शोज भी होते रहेंगे
0: लाइव
1: और
0: शोज,
1: लाइव शोज होते रहेंगे।
0: आई एम श्योर अभी ऑफर आ रहे होंगे काफी सारे।
1: हाँ जी, ऑफर तो आ रहे हैं, अभी रिसेंटली मैं टूर पे भी जा रहा हूँ बाहर अक्टूबर में।
0: ओ, आउट ऑफ इंडिया?
1: यस, आउट ऑफ इंडिया अक्टूबर में, उस पर USA, कनाडा, वेस्ट इंडीज, इन सब जगह पे टूर है, ये 1 महीने का टूर है। मतलब ऐसे ही बहुत सारे हैं, फिर कुछ प्राइवेट इवेंट्स भी हैं, कॉलेज फेस्ट भी है, चलता रहेगा ये सब। तो आर्टिस्ट की लाइफ में यही तो है, गाने बनाने, शो करने हैं।
0: कहते हैं ना, हम सब तो रंगमंच की कठपुतली हैं, हर किसी को अपना
1: हाँ,
0: किरदार निभाना
1: लोगों
0: है।
1: को एंटरटेन करने का मौका नहीं छोड़ना है बस, जैसे वो चाहे वो इवेंट हो, चाहे वो फेस्ट हो।

0: क्या बात है, क्या बात हो जाए, बात तो बन ही
1: तो
0: गई
1: इसमें
0: है।
1: कवि कह रहे हैं कि तू और मैं साथ चलें जब जाना बरसात हो जाए, और भीगे साथ अगर तो
0: लगता है
1: क्या
0: कवि
1: ही
0: ने
1: फिर
0: मान,
1: बात हो
0: हाँ क्या बात
1: जाए।
0: है, कवि ने सुन ली है हमारे मन की बात भी। वेल, मन की बात अगर हम करें, आपके दिल में बहुत कुछ होगा आई एम श्योर। आपने जब शुरुआत की थी तो आप

0: चाहे गाने बनाने के थ्रू हो, बस लोगों को एंटरटेन करना है, क्योंकि लोग आपको इसीलिए प्यार करते हैं।
1: आजकल वैसे देखे ना तो यंगस्टर्स काफी जल्दबाजी में रहते हैं, खासकर जितने भी एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, हर कोई सिंगिंग करना तो चाहता है, लेकिन वो एफर्ट, वो कितना कुछ समय लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितने आपको तैयारियां करनी पड़ती है उसके लिए, ये बहुत कम हो गया है लोगों में। यंगस्टर्स से कुछ कहेंगे इस बारे में?
0: मैं यही बोलूंगा, देखो पहले तो मैं बोलने से पहले अपनी एक स्टोरी बताता हूँ, शायद वो कुछ लोगों को मोटिवेट कर जाए काम करने के लिए उनके। वो ये है कि ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार ऑडिशन दिया आइडल का और मैं पहुंच गया, नहीं, मैंने इससे पहले भी 2-3 बार, मैंने इससे पहले 3 बार तो मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, उसके पहले भी मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिया है जिसमें वीडियोज भेजते हैं। तो ये कि कभी भी रुको मत, अगर आप फेल हो रहे हो तो आप देखो कि आप क्यों, आप अगर आज ऑडिशन में रिजेक्ट हो गए तो आप क्यों रिजेक्ट हुए हो, किस बेसिस पे आप रिजेक्ट हुए हो। अगर कुछ आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है तो आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया, आप अपने ऊपर काम करो कि हो सकता है ये कमी हो, शायद मैं इसको मुझे सुधारना चाहिए। अगर मेरे अभी सुर कच्चे हैं तो मैं 1 साल और रियाज करूंगा, सुर पक्के कर लूंगा, दोबारा ऑडिशन में आऊंगा। बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, तो मैं जितनी बार भी रिजेक्ट हुआ हूँ मुझे उतनी बार अलग अलग चीज़ें समझ में आई हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे सुर पक्के करने हैं तो हाँ मेरा रियाज चालू, और रियाज मतलब अगर मैं 2 घंटे रियाज करता हूँ तो 4 घंटे का चालू, ठीक है। अगर मुझे गाने नहीं याद या मेरी प्रेजेंटेशन वीक है तो उसके ऊपर काम करना, क्योंकि ये सब जब सारी चीज़ें आप करते रहते हो उसके बाद ही आप अपने अंदर मास्टरी लेके आओगे ना। तो जितनी बार आप फेल हो रहे हो आप उससे डरो मत, और कभी भी ट्राई करने से मत डरो। और बस मेरी यही है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं जो भी म्यूज़िक कर रहे हैं उनको मेरा यही उन उनको मेरी यही सलाह है कि म्यूज़िक को ना, मतलब अगर आपका पैशन है पहले आपको म्यूज़िक को ना रिस्पेक्ट करना है। म्यूज़िक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, अगर मैं क्लासिकल म्यूज़िक बोलूँ, वेस्टर्न म्यूज़िक, मतलब नॉर्मली म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ, इसमें सब कुछ है, वेस्टर्न भी, क्लासिकल भी, रॉक भी, एवरी जॉनर ऑफ म्यूजिक, सैड हो, रोमांटिक हो, म्यूजिक की रिस्पेक्ट करो पहले। और साधना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आपने एक गाना सुना और आपने ऑडिशन में जाके परफॉर्म कर दिया फिर बोलो अरे यार मैं तो अच्छा गा रहा था, इन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। बट क्यों, क्या, क्योंकि जो आपको जज करने बैठे हैं ना वो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, वो आपको बोलेंगे नहीं कि यार तूने ये चीज़ गलत कर दी, नहीं। और वो इसीलिए नहीं बोलते, वो यही चाहते हैं कि इसको खुद समझ में आए कि ये क्या गलती कर रहा है, क्योंकि सारी ज़िंदगी कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं चलाएगा ना, आपको वो खुद समझना है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो इसके लिए अपने ऊपर बार बार, एक होता है ना ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग भी अगर इंसान सही जगह करे ना तो वो काम, मतलब वो फिर अच्छी होती है।
1: वो तो हम सब करते हैं, लेकिन जब आप
0: हाँ
1: ओवर थिंक करते थे आपके दिमाग में कौन सा गाना चलता था? जब मनराज निराश हो जाते थे तो
0: मैं ओवर थिंक
1: सुनना चाहेंगे
0: हमेशा
1: हम? हाँ
0: मैं ओवर थिंक हमेशा इसी में करता था कि यार मुझे अब क्या करना है, क्या मैं ये कॉम्पोजिशन ऐसे कैसे गाऊं, इसमें कौन सी फील से गाऊं, मतलब मैं ये सोच रहा था, मतलब लोग ओवर थिंक करते होंगे, हाय इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, अरे वो नाराज हो गया या ये वो हो गया, मैं ये सब सोचते, मगर नहीं, मैं गाने में मुझे ये परफॉर्म करना है, मैं इसको ऐसे करूँ या वैसे करूँ, बस ये चलता रहता था। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है आपके लिए, ये चीज़ करो। और गाना
1: वो गाना ऐसा रहता है ना हमारी लाइफ में जो हम गुनगुनाते हैं लूप में, और हमें
0: लूप
1: लगता है
0: में
1: कि हाँ मतलब कि अब हार गए हैं, थक गए हैं, लेकिन फिर भी एक दिन तो आएगा जब जीत जाएंगे, समथिंग लाइक दिस।
0: हाँ मैं एक बताता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेंज है मेरे लिए, मैं कभी ऐसा कोई मेरा मोटिवेशनल सॉन्ग नहीं है किसको कि अगर मैं लो फील कर रहा हूँ या कुछ फील कर रहा हूँ तो मैं ये वाला गाना गाऊँ पर्टिकुलर, नहीं। मैं जब भी लो फील कर रहा होता हूँ ना तो मैं सिर्फ म्यूज़िक ही सुनता हूँ, म्यूज़िक मतलब कि मैं गाने चला के साथ में गाने गाता रहता हूँ, 1-1.5 घंटा मैं खुल के गाने गाऊंगा। तो क्या होता है फिर वो जो 1-1.5 घंटे के अंदर ना वो लो वाले एंगल से बाहर आ जाता हूँ मैं,
1: अच्छा, आपकी लिस्ट में प्रायोरिटी पे कौन सा गाना रहता है सबसे ऊपर, टॉप पे?
0: सबसे ऊपर टॉप पे। हाँ टॉप पे सबसे पहले जो मैं गाना वो मैं सुनता हूँ, मतलब वो काफ़ी मेरे से जुड़ा भी हुआ है, और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस गाने की। एक तो मैं वो गाना है कि बनू दुनिया दा बाय गुरदास मान साहब एंड दिलजीत दोसांझ
1: हो जाए
0: साहब।
1: कुछ लाइनें हो जाए।
0: तो कुछ भी होता ना, फॉर एग्जांपल शो भी कर रहा हूँ मैं तो शो की भी स्टार्टिंग में यार फोक गाना तो इससे बेटर कोई गाना है ही नहीं, और इतना इतना अच्छा इस गाने में बोला गया कि यार की बनो दुनिया दा सच्चे पातशाह वाहेगुरु जाने, मतलब कि एक बेसिक सिनेरियो होता है ना कि यार किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, सिर्फ उसको पता है।

0: पे छोड़ो, अच्छा काम करते रहो, सबकी रिस्पेक्ट करो, जस्ट वन लव एवरीवन,
1: वन लव, और हम
0: एक
1: भी
0: प्यार है, प्यार
1: ढेर
0: करो,
1: सारा प्यार आपसे
0: सबों पर
1: करते
0: छोड़
1: हैं,
0: दो।
1: लेकिन
0: हाँ
1: लाइनें हो जाए
0: लाइनें
1: कुछ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: क्या बात है, जो तेरे नसीब का है वो तेरे कोल ही आएगा, ओनू हर रोज पौंड दी फरमाइश ना कर।
1: क्या बात है।
0: ऑल इंडिया रेडियो पे पहले भी आया या फर्स्ट टाइम परफॉर्म
1: नहीं,
0: कर रहे हैं यहाँ पर?
1: दिस इज माय फर्स्ट टाइम।
0: ओके, कैसा लग
1: यस,
0: रहा है, कैसा फील
1: बहुत
0: हो रहा
1: अच्छा
0: है?
1: लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप
0: हाँ
1: लोगों ने इनवाइट किया। एंड मतलब ये भी आर्टिस्ट के सपनों में होता है कि यार मैं पॉडकास्ट में जाके बैठूं। हाँ, मस्त होता है। अच्छा लग रहा है बहुत। मतलब क्या होता है कि इतने सारे लोग प्यार करते हैं और इतना, मतलब नो वर्ड्स, दिस इज
0: लोग
1: बियॉन्ड वर्ड्स।
0: आपको आई एम श्योर के मतलब अनफिल्टर देखना चाहते हैं ना, कि मनराज को हमने स्टेज पे तो देखा है,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन स्टेज के पीछे मनराज क्या है, मनराज क्या क्या पसंद करता है। खाने में तो आपने बता दिया, सिंगिंग में भी आपने बता दिया, कि
1: मेरे
0: ना
1: को,
0: हाँ
1: मैं बताऊं तो मुझे मजा आता है ज्यादा, सबसे ज्यादा फन करने में भाई। बस अपने में रहो, मजे करो। मतलब क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल जैसे शो चल रहा है, शो चल रहा है और कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, आपको ऐसे ही बैठना है, ये कैमरा लगा हुआ है, ऐसे पीठ सीधी करके बैठो ऐसे, मतलब फिर थोड़ा सा ऐसे हो जाओ अंदर से डायरेक्टर है, भाई यार ऐसे फिर सीधे बैठो। तो मतलब जब ये होता ना, कट हो गया फिर, हाँ फिर अपनी मस्ती में बैठे हुए। तो वो वाली चीज है, मतलब अपने में रहना बिल्कुल पसंद है। बैक स्टेज वही करने में मजा आता है। खाओ, सबको प्यार बांटो, खाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट है म्यूजिक।
0: वो पार्टी वाली वाइब भी होती है कभी कभी,
1: हाँ, वो
0: दिल्ली से वो
1: गाने,
0: लड़का और पार्टी ना करे ऐसा हो नहीं सकता
1: देखो पार्टी हम कर नहीं
0: मतलब
1: पाए क्योंकि हमें अलाउड नहीं थी।
0: नहीं
1: बस पार्टी करना किसको नहीं पसंद। बट
0: मतलब पार्टी कहने का मतलब तात्पर्य मेरा ये है, थोड़ा सा नाच गाना हो गया।
1: मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम जहाँ पे स्टे कर रहे थे सारे कंटेस्टेंट्स,
0: हाँ
1: तो रूम में क्या करते थे ना हम, रोज रात को जैसे सुबह प्रैक्टिस, सुबह से लेके 10 बजे से लेके रात तक प्रैक्टिस चली, प्रैक्टिस खत्म, प्रैक्टिस होते के बाद ही हम सारे अपने आप को रिफ्रेश करने एक रूम में इकट्ठे होते थे, और वहीं गाने वाने चला के ऊनो खेल रहे हैं, ठीक है, डाइट कोक पी रहे हैं, मंगा रहे हैं मस्त, अपना मतलब खाना पीना चल रहा है उधर, सब मस्ती कर रहे हैं, गाने बजा के डांस कर रहे हैं, जिसको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है वो डांस कर रहा है, कोई नींद से उठ के आ गया मस्त, कह नहीं यार मेरा सर दर्द हो रहा है। मतलब ये है कि
0: चिल मोड आ
1: सारी
0: गया।
1: रिहर्सल के बाद सब जब एक साथ बैठते थे ना तो चिल मोड हो जाता था, तो मतलब वो सारे पूरे दिन की थकान निकल जाती थी।
0: कितना टाइम पीरियड रहता है, मतलब एक शो से पहले कितना समय आपको मिलता है प्रिपेयर करने के लिए?
1: एक शो से पहले, जैसे जिस दिन शूट होता है उसके एक दिन पहले टेक्निकल होता है, तो टेक्निकल पे पूरा दिन हमारा शूट होता है। टेक्निकल शूट हो गया 24 घंटे, मतलब नॉट 24 घंटे, जैसे सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुआ, रात को 11 बजे तक टेक्निकल शूट चल रहा है, फिर उसके अगले दिन दोबारा 9 बजे स्टार्ट हुआ, 11 बजे शूट चल रहा है, और मंडे ट्यूसडे शूट होता है, सैटरडे संडे वो टीवी पे टेलीकास्ट होता है। तो जैसे ही हमारी एक शूटिंग खत्म हुई, एक शूटिंग के बाद नेक्स्ट जो हमने गाना होता है, वो शूटिंग खत्म होने के बाद ही हमें गाने मिल जाते हैं कि आपको अगले वीक ये गाने गाने हैं और कल से तुम्हारी दोबारा बैंड रिहर्सल। मतलब शूट अगर रात को 12 बजे ख़त्म हुआ तो हमें 11-12 घंटे का सब में रेस्ट ले लिया, और आई थिंक इनफ होता है इतना रेस्ट, 11-12 घंटे का रेस्ट लेके सो के आराम से, उसके बाद फिर अगले वीकेंड पे हमने क्या क्या करना है उसकी मीटिंग चालू, फिर सेम प्रोसीजर वही लूप में चलता रहता है। थीम्स चेंज होती रहती हैं, नेक्स्ट वीक ये आर्टिस्ट आ रहे हैं तो इनके गाने हम गाएंगे, नेक्स्ट वीक हम प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा जैसे आशा भोसले जी को हमने करना है, सेलिब्रेट करना है तो वो हम गाएंगे, फिर ललिता, फिर उसके बाद लता मंगेशकर जी का वो आगे से, मतलब कि

0: शूट खत्म होते कि 1 घंटे बाद ही हमें नई लिस्ट मिल जाती थी कि ये अपने अगले वीक गाना है।
1: मस्ती चलती जा रही है बस।
0: हाँ
1: और जब मस्त मौला हो जाते हैं आपके दिमाग में कौन सा ऐसा गाना आता है? इसलिए मैंने वो भाई पूछा था आपसे।
0: मस्त मस्त मौला होके तो
1: मतलब
0: यार
1: एकदम कि अब कोई फिक्र ही नहीं
0: मैंने
1: है।
0: बोला मेरे को तो दोनों ही सिचुएशन में मेरे मैं गाने ही गाता हूँ।
1: हाँ, कौन सा है वो
0: और
1: गाना?
0: ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है कि मैं एक यही मतलब पर्टिकुलर एक यही सॉन्ग गाता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कुछ भी। मतलब ये होता है कि उस टाइम के अकॉर्डिंगली क्या मैं सबसे ज्यादा गाना सुन रहा होता हूँ वही गा देता हूँ।
1: हाँ तो एक हो जाए ना कुछ लाइन। एनी पार्टी सॉन्ग।
0: गाना तो गाना पड़ेगा है।
1: हाँ
0: पान पुदीना देखा नक्का नगीना देखा चिकनी चमेली देगी चिकना कमीना देखा चांद ने चिटर होके चीट किया तो सारे तारे बोलेगी।

0: तमीज दिल माने ना।
1: क्या बात है, हम भी नहीं मान रहे हैं बैक टू बैक। चलिए, इंडियन आइडल में आपने ढेर सारी परफॉर्मेंसेस दी, आपका फेवरेट कौन सा था? सबसे फेवरेट, जो आज भी सबसे टॉप पे रखेंगे आप, कि इससे बेस्ट नहीं हो सकता।
0: मतलब बेस्ट मैं तो यही बोलूंगा कि मैंने जो अपना गाया है बिल्कुल 100% देख के गाया है। बट कुछ गाने, मतलब नॉट एक, कुछ गाने ऐसे हैं जो बहुत मेरे फेवरेट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा सबसे पहला ऑडिशन, तेरी यादों में खोया रहता हूँ, वो हो गया। उसके बाद गाना कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, तो वो। और एक एपिसोड में दिलेर मेहंदी पाजी भी आए थे, उन्होंने गाया था, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जा।
1: ये तो
0: मतलब तो क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, जब थीम चल रही होती है ना, उसके बीच में जब ऐसे गाने गाने को मिलते हैं तो फिर उसकी एनर्जी अलग ही होती है। मैंने आपको बताया थीम चल रही थी 60s 70s 90s, सेलिब्रेटिंग आशा भोसले जी, सेलिब्रेटिंग लता मंगेशकर जी, सेलिब्रेटिंग किशोर कुमार जी, सेलिब्रेटिंग रफ़ी साहब। तो उस जोन से निकल के जब ये अपने जोन में आने का मौका मिलता है ना, तो फिर वो अलग एनर्जी। इसलिए ये सब मेरे फेवरेट हैं। हो जाएगी बल्ले बल्ले, बदतमीज दिल, और जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, तो ये सब जब गाने का मौका मिलता है तो फिर वो सी मेरे सारे फेवरेट हैं।
1: ठीक है, टाइम फॉर द रैपिड फायर। सारे सवालों के सही जवाब आपने दिए हैं, और क्या कहूँ, कॉन्वर्जेशन बहुत कमाल का रहा है। चलिए, एक शब्द में खुद को डिस्क्राइब कीजिए, वन वर्ड,
0: फियरलेस,
1: फियरलेस।
0: ऐसा।
1: नेक्स्ट इज लता मंगेशकर या आशा भोसले?
0: अल्पिक आशा भोसले जी।
1: ओके, अरिजीत सिंह या सोनू निगम? जल्दी
0: अच्छा,
1: जल्दी, रैपिड फायर है सर
0: अरे यार, अरिजीत
1: ये।
0: सिंह।
1: ओके चलिए, वेरी गुड। स्टेज शो या फिर स्टूडियो रिकॉर्डिंग?
0: स्टूडियो रिकॉर्डिंग,
1: सबसे पसंदीदा राग कौन सा आपका?
0: राग राग राग राग राग, दरबारी,
1: ओके, पसंदीदा खाना?
0: नॉनवेज।
1: ओके, एक ऐसा गीत, एक ऐसा गाना जो आप कभी भी गा सकते हैं, कभी भी गुनगुना सकते हैं, 24/7, सोते सोते भी उठा दे तो आप कहेंगे ये गा सकता हूं मैं।
0: कीबोर्ड दुनिया था।
1: ओके, एक लाइन के साथ, इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हम।
0: ओ की बनू दुनिया दा, सच्चे पातशाह वाह गुरु जाने, की बनू दुनिया दा है, अल्लाह बिस्मिल्ला तेरी जुगनी, हाय तारे आवे तेरी जुगनी, साई बोदा वाले आवे जुगनी, अल्लाह बिस्मिल्ला तेरी जुगनी
1: क्या
0: हो।
1: बात है, अगर आपकी लाइफ पे कोई फिल्म बनाई जाए तो उसका टाइटल क्या होगा?
0: मेरी लाइफ पे अगर कोई फिल्म बनाई जाए तो उसका टाइटल होगा
1: दमन राज, मन पे राज करने वाला है, कुछ और, एनीथिंग, जो भी माइंड में आ रहा
0: हार्ट थ्रॉब,
1: हो।
0: हार्ट थ्रॉब।
1: ओके, अगर आपको आज अपने बचपन वाले वर्जन से मिलने का मौका मिले मनराज, तो आप उससे क्या कहना चाहेंगे, कि हमने कर लिया या कुछ और बाकी अभी?
0: मैं उससे यही बोलूंगा कि थैंक यू सो मच ये सब सपने देखने के लिए, बिकॉज नहीं देखता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता।
1: क्या बात है, एक मैसेज हमारे सारे लिसनर्स के लिए, जो आकाशवाणी ऑडियंस है उनके लिए कुछ?
0: मेरा मैसेज ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ, और लोग इतना प्यार दे रहे हैं, तो आप सबके प्यार की वजह से ही हुआ है ये सब। हार्ट थ्रॉब, ड्रीम बॉय, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे जितने भी एल्बम्स आएंगे, जितने भी EPs आएंगे और जितने भी शोज होंगे, मैं

0: कोई कसर नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को एंटरटेन करने में, और आप लोग भी अपना प्यार देने में कोई कसर मत छोड़ना। थैंक यू सो मच।
1: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। इस कार्यक्रम का विजुअल वर्जन आप देख सकते हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: ವಾಣಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ
1: ಸಾಗರ್ ಕೀ ಗಹರಾಯಿಯೋ ಸೇ ಪರ್ವತೋ ಕೆ ಶಿಖರ್ ತಕ್ ಸರಹದ್ ಕಿ ಹದ್ ಸೇ ದುಶ್ಮನೋ ಕೆ ಖಾತ್ಮೆ ತಕ್ ಯೇ ಹೈ ಭಾರತ್ ಕೆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಕೆ ಅದಮ್ಯ ಸಾಹಸ್ ಕೋ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಸಲಾಮ್ ಇನ್ಹೀ ಕಿ ವಿಜಯ ಗಾಥಾ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಆಯೆ ಹೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂದೇಶ್ ಟು ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಮೇ ಹರ್ ಗುರುವಾರ ಶಾಮ್ 4-5 ರೈನ್ಬೋ ಪರ್.
2: राहुल अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
3: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा.
2: इम्पॉसिबल
3: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है. मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है.
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है.
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक.
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
8: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना. 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती.

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट, जिसमें इंडियन आइडल सीज़न 16 सेकेंड रनर अप मनराज वीर सिंह से की गई बातचीत। ये आकाशवाणी हैदराबाद है, एफएम रेमो 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपेश है उर्दू प्रोग्राम नैरंग।

0: गोया इज्जत हमारी दीनी व दुनियावी जिंदगी में सबसे बड़ा मसला है और हमारे तमाम आमाल का मरकज सिर्फ और सिर्फ उसका नुक्ते नज़र मरकज कहिए या जिंदगी का दायरा जो मुनहसिर है हमारी अच्छाइयों और बुराइयों पर, वो सिर्फ इज्जत पर ही है। इज्जत वही अच्छी है जो जिल्लतों और गुनाहों की ज्यादा तादाद खर्च किए बगैर हासिल हो जाती है। सबसे अच्छी इज्जत वो है जिसके एवज किसी किस्म का गुनाह सरजद ना हो। याद रहे कि इज्जत वही अच्छी है जो किसी किस्म का गुनाह ना हो, किसी पर जुल्म ना हो, किसी का हक मारा ना गया हो और वो इज्जत हासिल हो जाए। दौलत के दरवाजे से जो इज्जत आती है इसमें बहुत जुल्म करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत खुदगर्जी वो बेमुरवती का शिकार होना पड़ता है और ऐसी शदीद जिस्मानी व रूहानी तकालीफ के बाद वो इज्जत मैसर होती है जिनका कुछ हद व हिसाब नहीं है। यहाँ दो तरह की इज्जत बताई जा रही है, एक जुल्म व ज्यादती के जरिए हासिल की जाने वाली इज्जत और एक ऐसी इज्जत जो रहम करम हुकूक अदा करना, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाना, किसी पर जुल्म ना ढाना, ऐसी बिना ख़राब काम किए जो इज्जत मैसर हो जाती है किसी की मदद करके, किसी के तकलीफ़ों को दूर करके, किसी की पढ़ाई लिखाई या किसी की बीमारी को दूर करने के लिए और उनके हक़ को देने के लिए, उनकी मजबूरियों को समझकर उनकी मजबूरियों को दूर करने के लिए एक फ़र्द जब कोशिश बल्कि ला हासिल कोशिश करता है और जब वो इज्जत पा जाता है तो फिर वैसी इज्जत को बहुत ही बेहतरीन इज्जत मानी जाती है। और जो जुल्म व ज़्यादती के ज़रिए हासिल करता है इज्जत, कहता है यहाँ पर माहरीन कि ऐसी इज्जत बहुत मुश्किल से हासिल होती है क्योंकि ऐसी इज्जत हासिल करने के लिए खुद उस फ़र्द को जो इज़्ज़त हासिल करना चाहता है बहुत सारी मेहनत जस्तजू और कोशिश करनी पड़ती है कि किस तरह वो अपने आप को खुदगर्ज़ बनाए, किस तरह बेमुरवत बनाए और कैसी किसी किस किस किस्म की रूहानी व जिस्मानी तकलीफ़ों के ज़रिए इज़्ज़त हासिल करें। तो अब हम पर मुनहसिर है कि हम कौन सी इज़्ज़त हासिल करना चाहते हैं और किस इज्जत को हासिल करने के लिए मेहनत करेंगे।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हर्फ तामिंदा, पेश कर रही थी वाजिदा बेगम।
2: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा, हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियाँ खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। जिधर देखो उधर महंगे महंगे गाड़ियाँ भागते हुए दिख रही। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे हैं मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियाँ नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियाँ चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतज़ार करते रहते। अगर बग़ैर हेलमेट के और बग़ैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियाँ चलाएँगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत ज़रूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियां चलाओ।

दोस्तों, मौसम में बरसात जारी है। बरसात का मौसम हमारे लिए राहत और उम्मीद लेकर आता है। जहां लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, वहीं किसानों के लिए ये उम्मीद की किरण बनकर आता है। आइए इसी पर सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म मिलन से।

हिंदुस्तान में दोस्तों मानसून सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि एक एहसास है। चाय की गर्म कप से लेकर नमकीन की खुशबू और दिल को लुभाते गीत तक, अपने आप में ये एहसास है। हाय सुने गीत जिसको लिया है हमने फिल्म दिल तो पागल है से।

फिल्म दिल तो पागल है से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों, बारिश हो, छतरी का जिक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं। छतरी का इस्तेमाल हम सब करते हैं जब लगातार बारिश हो। वैसे छतरी धूप से भी बचाती है और आज भी ये हर किसी का लाजमी ट्रैवल एक्सेसरी है मौसम में, बरसात में। लीजिए इसी पर सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म कोई मिल गया से।

फिल्म कोई मिल गया से गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों कुछ गीत ऐसे होते हैं जो मौसम में फिल्माए जाते हैं। अगर हम 70 या 80 के दहाई की बात करें तो उस वक्त टेक्नोलॉजी ने ज़्यादा तरक्की नहीं की थी। ऐसे में बारिश में फिल्माए जाने वाले गीत आज भी मकबूल पॉपुलर है। ऐसा ही एक गीत जो बारिश में फिल्माया गया, आइए सुने, जो आज भी लोग सुनते हैं, फिल्म मंजिल से है।

वैसे दोस्तों, बारिश का पहला कतरा और बचपन की यादें, ये वो एक्साइटमेंट है जिसका हर कोई खुशामदीद करता है। बच्चे और कुछ लोग भीगने को एंजॉय भी करते हैं और खूब मज़े लेते हैं। आज इसकी एक शक्ल अम्यूजमेंट पार्क में रेन डांस की सूरत में नज़र आती है। आइए सुनते हैं कैसा है कि जिसको लिया है हमने फिल्म ताल से।

फिल्म ताल से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों, बॉलीवुड की फिल्मों में बारिश में फिल्माए गए गीत बेशतर पॉपुलर होते हैं, जिसमें सुरीले गीत के साथ बारिश का मंजर फिल्माया जाता है। आइए सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसको लिया है हमने फिल्म आशिकी 2 से।

वैसे दोस्तों, अगर हम शहर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबादी लोग बारिश के मौसम को एंजॉय करते हैं, जिसमें मौसमी फल और अच्छे खाने पसंद करते हैं। बारिश का होना शहर के लिए बड़ी राहत का सबब बनता है, जहाँ एक नया तलबा के लिए एकेडमिक ईयर शुरू होता है, वहीं साथ में मौसम में तब्दीली आ जाती है। आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म फना से।

फिल्म फना से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों, बरसात सिर्फ खुशी का नाम नहीं, कभी कभी ये दिल का गुबार यानी गम और बोझ को हल्का भी करता है और कुछ लम्हों के लिए दौड़ती हुई ज़िंदगी को थामने का मौका फराहम करता है। आइए इसी पर सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म गैंगस्टर से।

बरसात का इशारा होता है। वैसे हमारे मुल्क की एक रियासत का नाम बादल पर ही है, जैसे मेघालय कहते हैं, यानी बादलों का घर, जिसकी खूबसूरती बहुत ही हसीन है। आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म जैकपॉट से।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गीत सुरीले गाते जा में कुछ सुरीले गीत। प्रोग्राम नरंग के आखिर में आइए सुने पयामे शब, पेश कर रहे हैं सैदी।

ये वक्त किसकी रौनक पर काग डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। इंसान जब इख्तदार, दौलत, शोहरत या अपनी कामयाबी के नशे में मुब्तला होता है तो कभी कभी इसे अपनी ताकत हमेशा कायम रहने का गुमान होने लगता है। वो दूसरों को हकीर समझने लगता है और अपनी बात को आखिरी सच तसव्वुर करने लगता है। मगर वक्त सबसे बड़ा मुनसिफ है। जो लोग कभी अपनी ताकत और रौनक पर नाज करते थे, वक्त ने उनके गुरूर को काक में मिला दिया। जिनकी आवाज कभी हुक्म समझी जाती थी, वही वक्त गुजरने के बाद तारीख का एक खामोश बाब बन गया। इसीलिए इंसान को कामयाबी मिले तो आजिजी इख्तियार करनी चाहिए, इख्तियार मिले तो इंसाफ करना चाहिए, और शोहरत मिले तो अपने कदम जमीन पर रखने चाहिए, क्योंकि हालात बदलने में वक्त नहीं लगता। किसी को कमजोर समझकर उसकी तहकीर ना करें और अपनी ताकत को हमेशा का सरमाया न समझें। आज अगर आपके पास इख्तियार है तो कल कोई और उस मुकाम पर हो सकता है। याद

0: رکھیے، وقت کسی کے غرور کا لحاظ نہیں کرتا۔ جو انسان وقت کی حقیقت سمجھ لیتا ہے، وہ کامیابی میں بھی عاجز اور ناکامی میں بھی باوقار رہتا ہے۔
1: اسی پیام شب کے ساتھ دوستو، آج کا نئے رنگ پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس امید کے ساتھ کل شب 9:30 پر ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی بز میں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، آداب۔ یہ آکاش وانی حیدرآباد ایف ایم ریمبو 101.9 میگا ہرٹس پر۔ کچھ دیر میں ہندی اور انگریزی میں سماچار ہم آکاش وانی دلی کیندر سے ریلے کریں گے۔
2: نمسکار، آکاش وانی سماچار کے ساتھ میں آشوتوش۔ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
2: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को $45 अरब की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking calls from our listeners on mutual fund-related queries. But do remember that we do not address fund-specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Your anchors for today's show, Subodh Mishra and myself, Sarabjeet Kaur.
1: Dhanyawad Sarabjeet aur namaskar shrotaon, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। बस याद रखें कि हम किसी खास म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444-2371-0481 और 2371-7106। श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज ओवर 23,000 करोड़ रुपीज इनटू इंडियन इक्विटीज इन अगस्त सो फार। In bullion market, gold and silver prices rise for third straight week and situation in West Asia remains tense.
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त में अब तक भारतीय शेयर बाजार में 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। सर्राफा बाजार में लगातार तीसरे हफ्ते भी सोने और चांदी में चमक कायम और पश्चिम एशिया में तनाव जारी।

0: And before we go just any further in the program, may we once again remind our dear listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक श्रोता जुड़ गए हैं, पहले उनके पास ही चलते हैं. सरबजीत
0: बिल्कुल,
1: यूपी से विवेक हमारे साथ हैं. विवेक स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
2: हाँ, मार्केट मिनटर टीम और एक्सपर्ट को नमस्कार.
1: नमस्कार
2: सर, मैं म्यूचुअल फंड में एक SIP के द्वारा इक्विटी क्लास में 8 से 9 ईयर से इन्वेस्टेड हूँ. मेरे पास अभी एक लमसम अमाउंट है जिसे मैं निवेश करना चाहता हूँ इक्विटी क्लास में. मैं इसे SPV के माध्यम से, मेरे दो प्रश्न है. SPV के माध्यम से मैं इसे 12 महीनों में स्प्रेड कर लगाना चाहता हूँ, क्या ये सही है समय अवधि या इसको चेंज करना होगा. मेरा दूसरा प्रश्न है कि मैं एक तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, मतलब इक्विटी मिड कैप और स्मॉल कैप, इनमें मुझे रेशो क्या रखना चाहिए सर. जैसे मेरा पोर्टफोलियो है उसमें मुझे कितना परसेंट रखना चाहिए, और जैसे मैं अग्रेसिव इन्वेस्टर के रूप में चाहता हूँ तो मुझे मैं

0: उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप को शामिल करना चाहता हूँ और एक वैल्यू फंड भी रखना चाहता हूँ, तो कृपया इसका जो रेशो है वो मुझे गाइड करें।
1: विवेक जी, जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि एसटीपी के माध्यम से वो लमसम आप इन्वेस्ट करें, तो ये बिल्कुल एक अच्छी अप्रोच रहती है। ये काम सबसे ज़्यादा तब आती है जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा ज़्यादा देर पड़ा रहता है और डर रहता है कि कोई कुछ यूज़ आ जाएगा इसका और आप उसे वहाँ पर ख़त्म कर देंगे। तो एसटीपी के माध्यम से फ़ायदा ये रहता है कि वो लमसम आपने ऑलरेडी

0: रखना चाहिए ताकि उतार चढ़ाव कम रहे, तो आपका बेस अमाउंट पे उतना फर्क ना पड़े जो आप डेट फंड लेंगे, और जहां से आप उसमें से जिस इक्विटी फंड में जाएंगे ये सेम एएमसी के रहने चाहिए। और हर इन्वेस्टमेंट जो यहां से कट रही होगी उस पे एक टैक्स इम्पैक्ट होगा, जो कि तब नहीं होता है जब हम अपने बैंक अकाउंट से करते हैं। तो आप इसके बेसिस पर ये डिसीजन ले सकते हैं। जो आपका दूसरा सवाल है कि कोर पोर्टफोलियो और जो एक हम सप्लीमेंट्री पोर्टफोलियो कहते हैं, जहाँ पे हम मिड स्मॉल को ज़्यादा एलोकेट कर पाते हैं, बट कोर को थोड़ा रिलेटिवली स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स में रखना चाह रहे होते हैं, तो जैसे आपने कहा वैल्यू, फ्लेक्सी, मल्टी, ये सारी कैटेगरीज आप कोर पोर्टफोलियो के लिए बिल्ड कर सकते हैं। और मिड एंड स्मॉल कैप आप अपने सप्लीमेंट्री के लिए कर सकते हैं, जिसमें जैसे आपने बोला आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप 8-9 साल से कर रहे हैं और आप आगे भी करना चाहते हैं, तो आप 30% का एक रफ एलोकेशन अपने मिड और स्मॉल कैप एक्सपोजर के लिए रख सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि जब आप फ्लेक्सी, वैल्यू या मल्टी कैप कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो फंड के चुनाव पर डिपेंड करता है कि वो फंड मिड और स्मॉल कैप में कितना एक्सपोजर लेता है। तो जब आप अपना मिड और स्मॉल कैप देख रहे हो, उसको सिर्फ उन मिड स्मॉल कैप फंड्स में ना देखिए, एक होलिस्टिक पिक्चर देखिए अपने पोर्टफोलियो में कि मल्टी कैप, वैल्यू या फ्लेक्सी में से कितना मिड और स्मॉल कैप आ रहा है, और रिलेटिवली इसको बैलेंस आप 30% के अराउंड का रख सकते हैं।
1: जी, विवेक जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था और स्नेहा आपने जो जवाब दिया है ये लगता है म्यूचुअल फंड के हर निवेशक के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि अक्सर ये लोग पूछते रहते हैं इसके अलावा भी कि जैसे हम गोल्ड में या सिल्वर में कितना परसेंट रखें और हमारे पोर्टफोलियो का कितना परसेंट इसमें होना चाहिए। ये सवाल और इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं और इसके जवाब भी स्टैंडर्ड हैं, लेकिन शायद हमें कार्यक्रम में अक्सर इनको रिपीट करने की ज़रूरत होती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही कोई एसेट क्लास बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, बहुत बुरा करती है, ये सवाल एकदम से टॉप ऑफ द माइंड हो जाते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट रहता है कि इन पे बार बार मतलब चर्चा हो, लोगों को भी अच्छा लगता है। तो जहाँ तक गोल्ड और सिल्वर के एलोकेशन की बात रहती है, ये एक तरीके का हेज रखते हैं कि जब इक्विटी मार्केट थोड़ी अनसर्टेन है, ये आपको एक तरीके का इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। पर वही रहता है, जो चीज़ बहुत बढ़ रही होती है या मतलब उसका डायरेक्शन थोड़ी एक अलग लेवल पे होती है, उसको चेज ना करके ये जो एक प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब इनमें कोई साइंटिफिक रूल नहीं है, ये आपको एक होलिस्टिक पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करता है। तो 5 से 10% की एलोकेशन आप इन टाइप के एसेट क्लासेस में रख सकते हैं।
2: सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एलोकेशन ऑफ एसेट्स एट सच ग्रेट डिटेल एंड यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एसटीपी इन्वेस्टमेंट मोड एंड I understand that it creates a psychological barrier where you don't spend the money which is easily available in your bank account and then park it for a designated time and then utilize it more fruitfully. So, in the backdrop of this, why are investors increasingly choosing mutual funds over keeping all their savings in traditional avenues?
0: Right. So, I guess that has something to do with how the mutual fund awareness has, let's say, anybody or Everywhere you just mention the word mutual fund sahi hai and everybody let's say watching cricket will also be able to understand because of the kind of Correct. advertisements and awareness that is being created about a very important product. Plus India as a market has always been tilted towards so much tilted towards traditional asset classes that we have we had stopped appreciating other asset classes beyond fixed income. So that is where mutual funds come in.
2: Sneha, we'll come back with that discussion. Meanwhile, we'll connect with our next caller from Delhi. Pradeep ji, swagat hai. Sawal puche.
3: Namaskar, Market Mantra team.
2: Ji, namaskar.
3: Madam, mere paas hai na ek flexi cap, ek mid cap, ek small cap. Tino mein meri SIP chal rahi hai. So kya mujhe ek multi asset fund add karna chahiye? Aur dusra mera question lump sum ke bare mein hi hai, kyunki abhi mid cap aur small cap मतलब काफी ऊपर चल रहा है, लाइफ टाइम हाई जो भी है। तो अगर मुझे सपोज करो 50,000 रुपए का लमसम करना है इस मंथ में, तो मुझे फ्लेक्सी कैप में डालना चाहिए, मिड कैप में डालना चाहिए, स्मॉल कैप में डालना चाहिए?
0: जी प्रदीप जी, जो आपका पहला सवाल था कि आप फ्लेक्सी, मिड और स्मॉल में ऑलरेडी कर रहे हैं इन कैटेगरीज में, और आप मल्टी एसेट में जाएं या ना जाएं, तो मल्टी एसेट एक डिफरेंट तरीके की बॉल गेम हो जाती है इन कैटेगरीज से, जिनके नाम में ही पता चल जाता है ये कहाँ यूजुअली कहाँ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब मल्टी एसेट जैसा इसका नाम है, ये डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है। इसका मैंडेट बस इतना रहता है कि एक टाइम पर मिनिमम 10% इनको 3 एसेट क्लासेस में रखना चाहिए। जनरली ये देखा गया है ये फंड्स इक्विटी, डेट और गोल्ड में ज़्यादा एक्सपोजर रखते हैं, और इसमें डायनामिकली चेंज करते रहते हैं। तो मल्टी एसेट अगर आप चाहते हैं कि ये एक्सपोजर आपके पास आए, एक ऐसा पोर्टफोलियो आपके पास रहे जो डायनामिकली

0: चेंज करता रहे, तो आप बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है, जब आप फंड सिलेक्शन पे जाएं तो आपको ये देखना पड़ता है कि हर फंड किस तरीके की इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी हम किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वी नो वॉट काइंड ऑफ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ वी आर गेटिंग इंटू। तो यहाँ पर थोड़ी प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ वेयर द फंड इज इन्वेस्टिंग थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए बेटर रहता है कि पूरे अच्छे से हम रिसर्च करें। बट हैविंग सेड दैट, मल्टी एसेट आपके पोर्टफोलियो में ना होकर अगर आप अलग से डेट और अलग से गोल्ड भी लेते हैं तो भी आप कुछ मिस आउट नहीं कर रहे हैं एज सच। और आपका जो दूसरा सवाल था कि लमसम कहाँ किया जाए, तो मेरा मानना यह है कि लमसम से कोई आपको एक मैसिव फायदा अगर हो रहा होगा कहीं पे एज ऑफ टूडे, आपको नहीं पता है उससे एक मैसिव नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आप एक बड़ा अमाउंट एक ही साथ किसी एक ऐसी एसेट क्लास में डाल रहे हैं जहां पे जब चीज़ें हिलती हैं तो काफ़ी बुरा हिल जाती हैं और जब बढ़ती हैं तो काफ़ी बुरा बढ़ जाती हैं। तो एक वो जो एक कॉइन फ्लिप वाली प्रोबेबिलिटी रहती है ना, उसमें मैं थोड़ा झिझकती हूँ करने से। तो लमसम पे मेरा मतलब क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाती हूँ तो मेरी अप्रोच ऐसी रहती है कि इक्विटी में मैं लमसम ना करूँ। अगर आप मार्केट टाइमिंग करके फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं और आपको भरोसा है अपने आप पे, अपनी स्ट्रैटेजी पे, तो आप इसको थोड़े एक जो एक फ़न एलोकेशन होती है ना आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे, वो इम्पैक्ट ना करते हुए एक ऐसा अमाउंट लेना, ना ही वो आपके एक्सपेंसेस को इम्पैक्ट कर रही है ना ही आपके पूरे बाकी के कोर को इम्पैक्ट कर रही है, और फिर ही आप ये डिसीजन लेना
1: जी। और देखते हैं अब कि FPIs का क्या हाल रहा है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, FPI ने अगस्त में अब तक भारतीय शेयरों में खरीदारी जारी रखी है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार FPI ने इस महीने अब तक भारत के शेयर बाज़ार में 23,544 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कुल निवेश में 14,118 करोड़ रुपए स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीदारी के माध्यम से आए, जबकि 9,426 करोड़ रुपए प्राथमिक बाजार के माध्यम से निवेश किए गए। जुलाई में तेज़ हुई खरीदारी की गति अगस्त में भी जारी रही, जिससे मजबूत जिसे हमें हमारे मजबूत बुनियादी आंकड़ों और तिमाही आमदनी का समर्थन मिला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में ज़्यादा बढ़े हुए मूल्यांकन को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण वैश्विक तरलता भी उभरते बाजारों की ओर वापस आ रही है। इस बीच ऋण बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के रुख में मिला जुला रुझान देखने को मिला है। अगस्त में अब तक FPI ने जनरल लिमिट रूट के माध्यम से ऋण प्रतिभूतियों से 995 करोड़ रुपए निकाले हैं, जबकि VRR से 83 करोड़ रुपए की निकासी दर्ज की गई। इसके उलट FAR से 852 करोड़ रुपए का निवेश हासिल हुआ है।
2: एंड विनोद जॉइंस अस फ्रॉम दिल्ली, सवाल पूछे।
3: पूरी मार्केट ममता टीम को मेरी तरफ से नमस्कार।
2: जी नमस्कार।
3: मैं मैडम से ये जानना चाहूंगा कि मैं 2016-17 से अभी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ, तो उसमें तरह तरह की मेरे पास स्कीम है, और लेकिन थोड़ा सा कुछ दिन से परिवार के दबाव में महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं इधर उधर की एग्जाम्पल सेट करके मुझे बताते हैं कि आप कुछ म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेच के रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करो। बट मैं इस फैसले को लेकर झिझक रहा हूँ, मुझे मैम थोड़ा गाइड करेंगे कि यह कैसा फैसला रह रहे, क्या ये सही है कि इक्विटी से कुछ यूनिट्स बेच के रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना, प्लीज बताएं।
0: जी विनोद जी, जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि हम इंडिया में जनरली एक फिक्स्ड इनकम मार्केट बन जाती है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की जब हम बात कर रहे थे, तो रियल एस्टेट भी एक ऐसी मार्केट रही है जिसमें जो हमारे पेरेंट्स या उनसे पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वाले टाइम का ज़माना था, उसमें रियल एस्टेट को एक बड़ा अलग तरीके से देखा जाता था, इसीलिए शायद से आपके फैमिली आपको वो कह रही है। अब इंडिया में जो रियल एस्टेट की एक सिचुएशन रहती है, उसमें एक तरीका ये देखा गया है कि आपको पता नहीं होता है कि आप जहाँ पे अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन के बाद कुछ मटेरियलाइज होगा या नहीं होगा। एज एन एसेट क्लास जो लिक्विडिटी की एक प्रॉब्लम रहती है उसके बारे में कुछ हो नहीं पाता है, या फिर काफ़ी हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी रहती है। तो मेरा मानना ये रहता है कि जब इक्विटी और रियल एस्टेट को कंपेयर करा जाए इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं आप चाहते हैं वो पैसा जब आपको चाहिए आप यूटिलाइज कर पाएं, क्योंकि नहीं तो हम इन्वेस्ट क्यों ही कर रहे हैं अपना पैसे बचा कर। तो लिक्विडिटी मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो म्यूचुअल फंड्स आपको बेटर देते हैं। देन रियल एस्टेट. बाकी अगर आप रियल एस्टेट का एक्सपोजर

0: चाहते हैं तो अभी का टाइम एक ऐसा आया है जब रीट्स जो लिस्टेड रियल एस्टेट रहता है उनके एक्सपोजर पे आपको फंड्स आने वाले हैं. वैसा एक फंड अभी अभी लॉन्च हुआ है, उसका थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड होने देते हैं और हम तब देख सकते हैं कि अगर वो जो प्रॉमिस दे रहा है, क्योंकि वो एक इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर का ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है. तो एक चीज़ को ट्रैक करके आपको रिटर्न मिल जाता है जो एक रीट्स एज ए मार्केट का होता है. तो मेरे हिसाब से वो एक ज़्यादा बेनिफिशियल एरिया रह सकता है और आपको एट द सेम टाइम रियल एस्टेट का एक्सपोजर दे सकता है एक डिफरेंट तरीके से और एक लिक्विड तरीके से. तो जब इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है आप इसको देख सकते हैं.
1: जी, चेन्नई से काशीनाथ जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
2: हेलो,
1: जी काशीनाथ जी, सवाल पूछें।
2: यस, मैं काशीनाथ फ्रॉम चेन्नई. मेरा सवाल ये है कि आपने पहले जो सब फंड का नाम ले लेते थे, जैसे कि पहले, अभी कुछ नाम नहीं लेते. मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ. जैसे कि आप पहले बोल देते थे, जैसे कि धीरेन्द्र सार ये सब बोलते थे, लेकिन अभी वो सिस्टम बंद कर.
1: स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
2: हेलो,
1: जी काशीनाथ जी, सवाल पूछें।
2: यस, मैं काशीनाथ फ्रॉम चेन्नई. मेरा सवाल ये है कि आपने पहले जो सब फंड का नाम ले लेते थे, जैसे कि पहले, अभी कुछ नाम नहीं लेते. मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ. जैसे कि आप पहले बोल देते थे, जैसे कि धीरेन्द्र सार ये सब बोलते थे, लेकिन अभी वो सिस्टम बंद कर.

0: अकाउंट काफी ज्यादा बनता है, तो क्या मुझे कैपिटल गेन के बारे में ना सोच के क्या मुझे अभी दूसरा फंड में उसी कैटेगरी में स्विच करना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ उसी कैटेगरी में?
1: वरुण जी, अज्यूमिंग कि हम यहाँ पर इक्विटी फंड्स की बात कर रहे हैं, तो पहली बात कि एक डेढ़ साल बहुत ही कम टाइम हो जाता है इक्विटी फंड्स की परफॉर्मेंस पे एक डिसीजन लेने के लिए। मैं मानती हूँ निराशाजनक जब आपको अपना पैसा दिख रहा होता है तो डाउट हमेशा आता है, बट आप देखें तो मतलब ये साल तो स्पेशली सेंसेक्स ने भी कुछ रिटर्न नहीं दिया है, और जो सिचुएशन आप अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सेम कैटेगरी में दूसरा फंड अच्छा कर रहा है, ऐसे करते करते आपको पता नहीं है कि कब ऐसा हो जाएगा जब आप एक कलेक्टर ऑफ फंड्स बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा हर पल हर समय आपको लगेगा कि आप जिस फंड में इन्वेस्टेड है उससे बेहतर फंड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये एक हाइंडसाइट की बात हो जाती है। अब अगर आज हम चर्चा करते हैं कि कौन सा फंड अच्छा है कौन सा फंड बुरा है, तो उसका एक जवाब ये रहता है कि वक्त बताएगा, और जब आपने इन्वेस्ट करा है तब उसके अकॉर्डिंग ही जज करना चाहिए। तो बिल्कुल, जब भी हम ऐसे स्विचिंग कर रहे होते हैं हमें गेन्स और लोड्स का ध्यान रखना चाहिए, बट मेरे हिसाब से जो आप समय बता रहे हैं जितने होराइजन के लिए आप अभी इन्वेस्टेड रहे हैं, गिवन दैट ये वाला टाइम एज एन इंडियन मार्केट का भी काफ़ी फ्लैट टू फॉलिंग रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी आप अपना ये डिसीजन पे एक्ट ना करके थोड़ा समय और दीजिए, कम से कम लेट्स से 3 ईयर्स उस फंड को दीजिए परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि अभी उसने एक ही मार्केट साइकिल देखी है जब से आपने इन्वेस्ट करा है, जबकि अगर आप उसके रोलिंग रिटर्न्स जो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताता है कि डिफरेंट साइकिल्स में उसने कैसा प्रदर्शन करा है, उसको ध्यान में रखते हुए आई वुड से कि आप अपना ये डिसीजन अभी होल्ड करिए।
2: स्नेहा, लेकिन जब ऐसी बात करते हैं कि एक ही कैटेगरी के एक फंड में अच्छा प्रदर्शन है और दूसरे में उतना अच्छा नहीं है, मैं बुरा नहीं कहना चाहता, मान लीजिए अगर कितने के फर्क को हम माने कि हमें स्विच करने का फैसला लेना चाहिए, 0.2% का, 0.5% का, 1% का?
1: मेरा जो नज़रिया रहता है इसको देखने का वो इतना सा रहता है कि जब आपने इन्वेस्ट करा था किसी फंड में और जो एक दूसरा फंड है, पहले तो ये देखना चाहिए कि क्या वो दोनों सेम स्ट्रेटजीज भी हैं, क्योंकि एक कैटेगरी में, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, लेट्स से मल्टी कैप कैटेगरी में भी, जहाँ पे सेबी कहता है कि आप इतना इतना इतना पोर्शन लार्ज मिड स्मॉल में डाल सकते हैं, वहां पे भी जो पोर्शन एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वहां पे सब एक्टिव फंड मैनेजर्स डिफरेंट अप्रोचेस रखते हैं, तो सिर्फ नंबर देखकर तो कभी डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कितने नंबर पे हम स्विच कर लें, क्योंकि सबके लोड सबके एक्सपेंसेस अलग अलग रहेंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेस, क्योंकि डिपेंड करता है आपने कब इन्वेस्ट करा है, किसी ने एक ही साल में करा है तो उनका शॉर्ट टर्म गेन लग जाएगा, शॉर्ट टर्म टैक्स लग जाएगा, तो वो जो जितना डिफरेंशियल के लिए वो उधर जा रहे हैं उन्हें यहाँ पर देना पड़ रहा है, जिसने थोड़े लंबे समय के लिए किया हुआ है, तो ये सारे डिसीजंस काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं एक आम निवेशक के लिए, इसलिए बेटर ये रहता है कि आप एक टाइम दीजिए उस फंड को। बाकी अगर आपको बहुत घबराहट हो रही है उस फंड से, तो फिर तो आपको ये देखना चाहिए कि आप सही एसेट क्लास में है भी या नहीं।
2: चलते हैं अगले कॉलर के पास, नोएडा से रविंदर हमारे साथ हैं। रविंदर, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
3: Yeah, good evening, madam. I have one question regarding the electronic gold receipts. How to trade in the Zerodha or Go platform, whether it is tradable or any other way to trade?
1: So as far as my knowledge goes on the electronic gold receipts, they are very much available on the NSE platform. As in, they were introduced by NSE and they allow investors to buy and hold and sell physical gold digitally through a DMAT account. When compared to ETFs, I still feel that ETFs would be a better option since they let you stay away from physical gold, which also gets its, certain traits like storage costs and the anxiety that your physical gold is somewhere else and not near you. Is everything gets protected when you invest in a gold ETF where the money is really not in terms of that physical gold, because in your hand it's just the units, while it's otherwise when it goes to EGRs. So EGRs may suit those who are wanting direct gold ownership, and while ETFs are ideal for investors seeking more liquid passive price exposure. But all said and done, if you want to trade in EGRs, then you can do so directly on NSE platform.
2: अपने सोने की बात की तो चलिए हम श्रोताओं को बता दें कि इस हफ्ते सोने का हाल क्या रहा। कमज़ोर अमेरिकी डॉलर और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में तत्काल वृद्धि की आशंकाओं में कमी के चलते सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह बढ़त जारी रही। अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा लंबी अवधि के बॉन्ड बायबैक को दोगुना करने के फैसले से

0: लंबी अवधि के बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है जिससे कीमती धातुओं की मांग में और वृद्धि हुई। एमसीएक्स पर अक्टूबर अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में सप्ताह के दौरान 5.1% की वृद्धि हुई और ये 162,438 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सितंबर अनुबंध के लिए चांदी के वायदा भाव में 4.5% की वृद्धि हुई और ये 2,46,597 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। कॉमेक्स में अक्टूबर अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में सप्ताह के दौरान 5.5% की वृद्धि हुई और ये $4,645.10 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ। सितंबर अनुबंध के लिए चांदी के वायदा भाव में सप्ताह भर में 6.8% की वृद्धि हुई और ये $69.53 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ।
1: ऑल राइट, नाउ लेट्स कनेक्ट विद रवि नारायण फ्रॉम बिलाई। जी सवाल पूछे।
2: तो मेरा सवाल है कि मैं एक SIP में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मेरे पोर्टफोलियो में जो है एक ही अच्छे भारत के लीड बैंक के पोर्टफोलियोज हैं सारे, और इक्विटी है और फोकस इक्विटी और मल्टी कैप वगैरह है, और करीब करीब 100% का इजाफा है, मैंने मेरे इन्वेस्टमेंट का 100% का इजाफा है। तो क्या मुझे मुझे अभी फंड की कोई जरूरत नहीं है, तो शुड आई कीप ऑन कंटिन्यूइंग और मुझे इसका कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? मुझे फंड की कोई आवश्यकता नहीं है, कैन आई रिमेन इन द फंड्स?
3: Right. So, sir, if even if you're sitting at 100% gain and the situation of your life is that you don't need that money right away, then you might as well continue your investments in the selected funds, because selling them and booking profits would only mean that, you know, that money will eventually land in your bank account, and then the risk of consumption, like I was discussing earlier, kicks in. So it's a happy situation, and I believe since you're a long-term investor, you can continue investing in those funds.
0: एक बात इन्होंने और कही थी कि ये एक ही फंड हाउस के फंड्स हैं।
3: यहाँ पे जरूर मैं आपको बोलना चाहूंगी, व्हेन इट कम्स टू डाइवर्सिफिकेशन, द डाइवर्सिफिकेशन एज अ प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड ऑफर्स यू, बट एट एन इन्वेस्टर लेवल डाइवर्सिफिकेशन किक्स इन व्हेन यू आर स्प्रेडिंग योर मनी अक्रॉस डिफरेंट फंड्स, लाइक यू सेड फोकस्ड मल्टी कैप। इट ऑल्सो is important that you are investing in more than one AMC, because generally AMCs tend to follow a holistic or a one-stop investment philosophy at a fund house level, and then according to SEBI mandates, run the portfolio constructions as per SEBI mandates. If the market is not favoring that particular philosophy at one point in time, then definitely you can be in a situation where the AMC level risk kicks in. So definitely you should look to spread beyond that particular AMC.
1: All right, moving on to the next big story of the day. Tensions between Washington and Tehran escalated further after U.S. President Donald Trump again shared an image that depicts the strategically vital Strait of Hormuz as new U.S. territory. The latest post follows Trump's earlier sharing of the identical graphic on 18th of this month, after he previously floated the prospect of claiming jurisdiction over the waterway. Iran had reiterated that the crucial maritime corridor will remain closed unless the United States alters its stance. Rejecting Washington's territorial assertions, Iran's Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rezaei launched a sharp critic against the U.S. President's statements. He said the gap between America's inability to reopen the Strait of Hormuz and its claim to own it is greater than the 7,000-mile distance between Washington and the Strait itself. The rhetoric comes as the United States prepares to roll out additional economic measures targeting Tehran.
0: जी, और ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रज़ाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमेरिका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की भागीदारी से ईरान उन्हें दुश्मन मान लेगा। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग को दिए गए एक साक्षात्कार में रज़ाई ने कहा कि ईरान तनाव बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पड़ोसी देश अमेरिका के आर्थिक दबाव का समर्थन करते हैं तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर क्षेत्रीय देश अमेरिका के अभियान में शामिल होते हैं तो ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल निर्यात रोक सकता है।
1: एंड लेट्स आस्क जितेंद्र जी फ्रॉम जयपुर व्हाट हिज क्वेश्चन इज।
4: हाँ, समय कम है तो शॉर्ट में पूछ लेता हूँ। जैसे मल्टी कैप फंड है, दो फंड

0: मैं दो फंडाउस के बीच में उनको कंपेयर करना रहा तो उसको स्टडी करने के लिए क्या क्या पैरामीटर रख देते।
1: जितेंद्र जी, किसी भी कभी भी जब आप एक कैटेगरी में दो फंड्स का चुनाव कर रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज देखनी चाहिए कि वो फंड अपने बेंचमार्क्स को कितने अच्छे से बीट कर पा रहा है हर मार्केट साइकिल में, जो कि रोलिंग रिटर्न से हम पता कर सकते हैं, जो आजकल हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहता है। ये आपको बताता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव में उस फंड ने कैसा प्रदर्शन करा है। बाकी मल्टी कैप में इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप देखें कि वो जो बचा हुआ 25% रहता है जहाँ पे एक फंड मैनेजर अपनी अपना डिसीजन ले सकता है, तो वो क्या डिसीजन लेता आया है और आप कितना उस डिसीजन से ओके हैं। अगर आप लार्ज कैप टिल्टेड पोर्टफोलियो चाहते हैं तो आप ऐसे फंड मैनेजर को देखिए, जनरली ये डायनामिक रहते हैं, बट एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आप देखें अगर, तो आपको ये चुनाव करने में मदद कर सकता है। दूसरा एक रहेगा कि आप ये देखें कि वो एक्सपेंस रेशियो में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, ये कुछ चीजों को देखकर आप चुनाव कर सकते हैं।
2: All right, now let's take a peep into how the markets are expected to show up next week after a stronger than expected earnings season. Domestic investors are heading into a week packed with key market triggers, including macroeconomic data, global events, US bond yield trends, foreign institutional investor flows, commodity prices and currency movements. Market participants will closely monitor the industrial production data and the latest forex reserve figures. Meanwhile, the primary market is set for another busy week with 5 new main board IPOs opening for subscription and 7 main board IPOs scheduled to make their stock market debut.
3: और आज वक्त इतना ही है, कुछ श्रोताओं से हम क्षमा चाहेंगे जिनके कॉल्स हम आज शामिल नहीं कर पाए। स्नेहा, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
2: Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Foreign portfolio investors infuse over 23,000 crore rupees into Indian equities in August so far. In bullion market, gold and silver prices rise for third straight week and situation in West Asia remains tense. And with that, we end today's Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में सुनहरे दौर के उस बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है, जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, जिसे बार बार आप गुनगुनाना चाहते हैं। कभी कभी कोई नगमा सिर्फ गीत नहीं होता बल्कि मोहब्बत की एक खूबसूरत दास्तान बन जाता है। आज का एहसास ही हमारा पुराना कोई ना कोई नाता जरूर जोड़ता है। फिल्म चोरी चोरी का ये सदाबहार नगमा भी कुछ ऐसा ही है। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल

में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फिरोज। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। तो आइए थोड़ी सी बात कर ले फिल्म चोरी चोरी की। साल था 1956 का, जब लता मंगेशकर जी और मन्ना डे जी की दिलकश आवाजों ने इस गीत में इश्क की नजाकत और मिलन की बेकरारी को बेहद खूबसूरती से पिरोया। गीतकार हसरत जयपुरी के अल्फाज और संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन की मधुर धुन ने एक ऐसा गीत रचा जो हम सबके दिल में बस गया। तो जरा आंखें बंद कीजिए, बीते जमाने की उस हसीन शाम को महसूस कीजिए और दिल से कहिए, मोहब्बत भले पुरानी हो जाए मगर उसके नगमे कभी पुराने नहीं होते, बिल्कुल इस नगमे की तरह।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल गीत मेरे मन मीत में, जिसमें हम सुनहरे दौर के उन बेहद खूबसूरत गीतों के साथ हाजिर है। आज की महफिल में जिक्र अब उस गीत का जिसकी शरारत भरी धुन और नटखट अंदाज आज भी दिल को झूमने पर मजबूर कर देता है। साल था 1954 का और एक फिल्म आई थी आर पार। इस गीत को अपनी पुरकशिश और बुलंद आवाज से सजाया है शमशाद बेगम ने। गीत के बोल लिखे मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी ने, जबकि संगीत की कमान संभाली थी मशहूर और मारूफ संगीतकार ओपी नैयर ने। जरा सोचिए 70 साल से भी पुराना यह नगमा आज भी इतना ताजा क्यों लगता है? शायद इसलिए कि इसमें मोहब्बत की शोखी है, अल्फाज में शरारत है और धुन में ऐसा जादू है जो सीधे दिल पर दस्तक देता है। तो दोस्तों, आज की इस खूबसूरत महफिल में यादों के पर्दे उठाइए और आनंद लीजिए उस दौर का, जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे, महसूस किए जाते थे।

कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर। शमशाद बेगम की बेहद खूबसूरत आवाज आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में। आज की महफिल में बात अब उस नगमे की जिसने बेफिक्री, तन्हाई और आजाद मिजाज जिंदगी को एक ऐसी आवाज दी जिसे सुनकर हर दिल मुस्कुरा उठता है। साल था 1951 का और एक फिल्म आई थी आवारा, और आवारा फिल्म की जब बात चली है तो उसका बेहद खूबसूरत नगमा आपको याद तो आ ही गया होगा। इस गीत को अपनी दर्द भरी मगर बेहद दिलकश आवाज थी मुकेश साहब ने। गीतकार शैलेंद्र ने अपने सादे मगर गहरे अल्फाज में एक ऐसे इंसान की कैफियत बयां की जो दुनिया की बंदिशों से दूर अपनी राह पर चलना चाहता है। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने इस एहसास को ऐसी पुरकशिश धुन दी कि गीत हमेशा के लिए अमर हो गया। कभी कभी जिंदगी हमें मंजिल से ज्यादा सफर का मजा सिखाती है, और सफर बेहद खूबसूरत लगता है, और शायद यही इस नगमे का पैगाम भी है। अपनी राह चुनिए, मुस्कुराइए और फिक्र को पीछे छोड़िए और इस बेहद खूबसूरत नगमे में खो जाइए।

मुकेश साहब और लता जी की गाए फिल्म अनाड़ी के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज़ को अब दीजिए इजाज़त गीत मेरे मनमीत से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद मंजू रहेंगी आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी हमारी मुलाकात। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा

0: अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। सिक्किम के नाथुला दर्रे के रास्ते से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा कल संपन्न हो गई। इसके माध्यम से 464 तीर्थयात्रियों ने 10 जत्थों में यात्रा की। यह यात्रा 20 जून को आरंभ हुई थी और अंतिम जत्थे के गंगटोक आने के साथ ही संपन्न हो गई। तीर्थयात्रियों ने चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा की। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल की महिला टीम ने कल कोटा किनाबालू में एएफसी महिला चैंपियंस लीग 2026-27 के ग्रुप ए के आखिरी शुरुआती दौर के मैच में मलेशिया के सबाह फुटबॉल क्लब को 2-0 से हरा दिया। इस शानदार जीत के साथ ईस्ट बंगाल ने लगातार दूसरे साल टूर्नामेंट के मुख्य ग्रुप चरण में प्रवेश कर लिया है। अब ईस्ट बंगाल की पुरुष और महिला दोनों टीमें एक ही सीजन में एएफसी ग्रुप स्टेज में हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
3: अपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें। दुनिया अब भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है।
2: Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day yesterday, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. Defence Minister Rajnath Singh has stressed the need for self-reliance in building warships, offshore vessels and related maritime sectors, describing it as vital to the country's security. Mr. Singh was addressing the gathering after laying the foundation stone for 5 expansion projects of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers, GRSE, and Yantra India Limited, worth approximately 34,000 crore rupees in Kolkata. The Defence Minister asserted that India is capable of becoming a global shipbuilding hub and called for high-quality maintenance services and timely delivery of defence products to achieve

0: this goal. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified, and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache, and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. The National Skill Development Corporation, NSDC, and Cultus Education have announced the launch of a nationwide cloud and artificial intelligence skilling initiative in collaboration with Amazon Web Services, AWS. The program aims to provide foundational AI and cloud literacy to 150,000 learners through AWS digital training content and to offer intensive job-ready training to 10,000 participants through the AWS Restart program, focusing on youth in Tier 2 and Tier 3 cities. The BRICS Sports Ministers meeting concluded at Visakhapatnam in Andhra Pradesh with unanimous adoption of the Sports Joint Declaration. The declaration affirms the commitment of the member countries to strengthen cooperation in sports through dialogue, mutual respect and inclusiveness. The meeting was held under India's BRICS chairship 2026. In Madhya Pradesh, 9 people trapped in the strong current of the Gadheri River in Sagar district were safely rescued by a joint team of police, SDRF and Home Guards. Heavy rain on August 22 caused the river to rise near the Apchand caves. The rescue team trekked nearly 4 kilometers through dense forest and difficult terrain before SDRF personnel entered the river and rescued all 9. They were given medical checkups and found safe before being reunited with their families. The Kailash Mansarovar Yatra through Sikkim's Nathula route concluded with 464 pilgrims completing the pilgrimage in 10 batches. The Yatra, which began on 20th June, concluded with the return of the final batch of pilgrims to Gangtok. The pilgrims visited Mount Kailash and Lake Mansarovar in the Tibet Autonomous Region of China. In football, East Bengal FC entered the main draw of the AFC Women's Champions League 2026-27 by beating Malaysia's Sabah FC 2-0 in their final Group A preliminary stage match in Kota Kinabalu. In men's cricket, India were 300 for 5 in their first innings against host Sri Lanka at stumps on day one of the second and final test in Colombo. Dhruv Jurail and Saransh Jain were at the crease at the draw of stumps last evening. And that is the end of this news bulletin.
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 111
3: नमस्कार पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं साथियों मन की बात के विस्तार के रूप में आज हम इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं दो भेंट वार्ताएं जो ऐसे विषयों पर आधारित हैं जो हमारे लिए आपके लिए हम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं अमृत सरोवर और कैच द रेन लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं इन विषयों के बारे में मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्गार
4: मेरे प्यारे देशवासियों मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है जहां बारिश गिरे जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है इसके तहत बारिश के पानी के संचयन ग्राउंड वाटर रिचार्ज पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है कहीं पुराने तालाबों से घात निकाली जा रही है कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं साथियों मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1,500 तालाब बनाए गए हैं नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी

0: खरीदने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है।
1: रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। ये दोहे की केवल एक पंक्ति नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भाग्य तय करने वाला सच है। पानी जो हमारी प्यास बुझाता है, फसलों में जान डालता है और जीवन का आधार बनता है। लेकिन ये भी सच है कि अगर यही पानी, यही जल धीरे धीरे हमारी जमीन से गायब होने लगे तो सब तबाह होना शुरू हो जाएगा। इसी जल संकट को दूर करने और हमारी आने वाली पीढ़ियों के कल को सुरक्षित करने के लिए शुरू हुआ एक अनूठा अभियान, मिशन अमृत सरोवर। अमृत सरोवर केवल पानी का तालाब या पोखर नहीं है, बल्कि ये हमारी ग्रामीण संस्कृति, सामुदायिक एकता और जल संरक्षण की एक नई क्रांति है। देश के हर जिले में 75 ऐसे तालाबों का पुनरुद्धार और निर्माण किया जा रहा है जो भूजल स्तर को बढ़ाने के साथ साथ हमारे गांवों को एक नया जीवन दे रहे हैं। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में लीजिए आपको सुनवा रहे हैं ऐसी ही एक प्रेरित करने वाली भेंट वार्ता। ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी जबलपुर के सौजन्य से प्राप्त हुई है।
2: श्रोताओं, बहुत बहुत नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत परमार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण, कैच द रेन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के महत्व को बताते हुए देश भर में हो रहे उल्लेखनीय कार्यों का जिक्र करते हुए नरसिंहपुर जिले में अमृत सरोवरों के संवर्धन और पुनर्जीवन की सराहना की। प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय मंच से जिले के कार्यों का उल्लेख किया जाना निश्चित रूप से नरसिंहपुर जिले के लिए गौरव और सम्मान का विषय है। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमने हमारे विशेषज्ञ अतिथियों को आज आमंत्रित किया है। श्रीमती रजनी सिंह, कलेक्टर जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर श्री गजेंद्र सिंह नागेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
2: रजनी मैम, अमृत सरोवर का जब जिक्र होता है तो एक छवि हमारे मानस पटल पर बनती है, साफ स्वच्छ पानी से लबालब भरे हुए तालाबों की, सरोवरों की। और जब स्वयं प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम में इसका उल्लेख कर रहे हों तो हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि अमृत सरोवरों के संवर्धन, जल संरक्षण, जल स्रोतों के संवर्धन के लिए आपने किस प्रकार कार्य किया, किस प्रकार इसकी योजना तैयार की गई और कैसे इस पूरे अभियान को अंजाम दिया गया।
4: पिछले कई वर्षों से लगातार भारत सरकार के द्वारा और मंत्री शासन द्वारा जल संरक्षण को लेके कई प्रयास किए जा रहे हैं

0: मेंटेन रहे, ये सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इस वर्ष हम लोगों ने जब जल संचय जन भागीदारी का काम और कैच द रेन कैंपेन जो भारत सरकार ने शुरू किया उसके अंतर्गत जो हमने कुछ काम लिए उसमें अमृत सरोवरों को मुख्य रूप से लिया गया, क्योंकि अमृत सरोवर के जो साइज होते हैं वो उस क्षेत्र में एक बड़ा जल भराव का सेंटर होता है और उस क्षेत्र में जल का हम कहें संग्रहण का एक अच्छा माध्यम बनता है। वो हम लोगों ने प्लानिंग की कि पहले हमने चिन्हित किए कि कितने हमारे पास अमृत सरोवर बने हुए हैं और हमारे जो कुछ अपूर्ण थे उनको पूर्ण करना, हम उनको पूर्ण कर पाएं, और जो निर्मित हो गए हैं उनमें गाद निकासी करके उनकी जल भराव क्षमता को मेंटेन करें। तो हम लोग लगभग जनवरी फरवरी में इसकी कार्ययोजना बनाई और इसके साथ ही जैसे मैंने कहा कि जल संचय जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत हमने जो हमारे खेत तालाब जो भी एक तरह के सरोवर होते हैं जो छोटी साइज के रहते हैं, तो खेत तालाब लगभग हमने 1100 खेत तालाबों की योजना बनाई जिन्हें हमें पूर्ण करना था। और इन दोनों ही जो हम अगर तालाबों की बात करें तो दोनों ही कार्यों में लगातार प्रयास करके हम लोगों ने जून तक सभी एक तो कार्य पूर्ण किए जो अधूरे थे और जिसकी क्षमता कम हो गई थी उनको उनकी जल भराव क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य ध्येय वाक्य होता है कि कैच द रेन वेयर इट इज जो है उसको लेके हमने प्रयास किया कि हम उसको चरितार्थ कर पाएं और अधिक से अधिक वर्षा जल को संचय कर पाएं अपने जिले में।
1: जी गजेंद्र सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे अभियान में, इस पूरे जल संरक्षण और अमृत सरोवर के अभियान में सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी बाधा क्या रही मैदानी स्तर पर नरसिंहपुर जिले में कार्य करते हुए, जब आपने जल संरक्षण का कार्य और अमृत सरोवरों का संवर्धन का कार्य शुरू किया, सर आपसे जानना चाहेंगे।
2: देखिए, जहाँ तक जल संरक्षण के कार्यों में समाज के रुख का प्रश्न है, थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं धारणा है कि कोई काम अगर सरकार नीत है तो वो काम सरकार के नुमाइंदे ही करेंगे, एक ऐसी धारणा है। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट जो हम समझते हैं कि जल के विषय में तो अनिवार्य आवश्यकता है, हम बिना समाज के, बिना स्थानीय संसाधनों के, मानव प्रबंधन के, महिलाओं के, युवा साथियों के नहीं किया जा सकता। तो जब हमने इन जल इकाइयों के निर्माण या कि उनकी पूर्णता का विषय रखा तो सहज रूप से जो एक पहला रहता है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कि वो परखते हैं, थोड़ा देखते हैं कि आप किस स्तर की बात कर रहे हैं, वो उसमें औपचारिकता है या वास्तविक रूप से आप उसमें अपना इनपुट दे रहे हैं, तो लोग धीरे धीरे शामिल हुए। और पहले उनकी जो जिज्ञासा थी वो कुछ प्रश्नों के रूप में थी, लेकिन वो बाद में कहीं ना कहीं समागम के रूप में और साहचर्य के रूप में आती चली गई। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि गोटेगांव जनपद में मेख में एक तालाब था, लगभग 1959 में वो वहाँ के कुछ परिवारों ने दान दिया था जल संरक्षण इकाई के लिए, बाद में वो फिर अतिक्रमण होकर और उसमें खेतियाँ होती रही। लेकिन इसी अभियान में जब उसको लिया गया और गांव ने ही सहयोग करके उस पूरे 21 एकड़ को एक जल इकाई के रूप में, सरोवर के रूप में विकसित किया। और ये जल संरक्षण के जो कार्य हैं, न केवल ये केवल भौतिक उपागम है या कि जल ही रोक रहे हैं, लेकिन समाज को भी कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बात है।
1: एक प्रशासक के तौर पे क्या चुनौतियां रही आपके लिए?
2: एक तो नरसिंहपुर के लिए अगर हम बात करें, नर्मदा जी का कछारी क्षेत्र है, परंपरागत रूप से इसमें जल का स्तर रहा है, भूमिगत जल का स्तर काफी अच्छा रहा, लेकिन इधर धान, गेहूं और आपके गन्ने की फसल जो कि थोड़ा सा ज्यादा पानी की खपत करते हैं, उनके लगातार उपयोग से और बोरिंग की अधिकता के कारण जिले में जल का स्तर बहुत तेजी से डिप्लीट किया है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ खेती में कई कई दफे एक एक किसान के पास 6-6, 8-8 बोर हैं, वो असफल हुए, और लगभग 3-4 क्रॉप का जिला है। तो वो जब रबी से लेके जब सिंचाई गर्मी के पूरे सीजन होती है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भूगर्भीय जल का स्तर कैसे गिरेगा। तो लोगों को इस बात के लिए तैयार करना कि उनकी उपजाऊ भूमि में ही हम जल इकाइयां का निर्माण करें और उसके अपने हिस्से की जमीनों को वो कुछ मामला में जल संरक्षण के लिए छोड़ें, ये समझाना एक महत्वपूर्ण बात है। फिर मतलब ऐसे भी उदाहरण देखे गए कि फॉर्म पॉन्ड बने हुए हैं और उसमें वो पानी न रोकते हुए उसमें वो दूसरी खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनके कुछ धारणाओं को थोड़ा सा परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। फिर स्थानीय समुदाय को जोड़ना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। पंचायत के हमारे जो इकाई हैं, सरपंच सचिव हैं, जो कि निश्चित रूप से उनका भी मानस वही होता है जो गांव का होता है लगभग, तो उससे फिर अपना अभिष्ट निकालना, उससे वो सहयोग प्राप्त कर लेना, स्वीकृत कार्यों को पूरा कराना, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो जैसे कि माननीय मैडम ने कहा कि 1500 से अधिक हमारे ऐसे काम जो मनरेगा के रहे हैं उनको भी इसी अवधि में हमने पूरा कराया है और लोगों का सहयोग लिया है। और फिर बाद में तो बात ये हुई कि लोगों ने खुद आगे बढ़ के सहयोग दिया, विभिन्न इकाइयों ने, और वो हमारे चाहे इंडस्ट्रीज के लोग हैं उन्होंने भी मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाया।
1: यानी कि एक समन्वित प्रयास रहा है पूरे जिले का, तब ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। गजेंद्र जी, जल संरक्षण, संवर्धन और अमृत सरोवर के इस पूरे अभियान के बाद स्थानीय लोगों को, किसानों को इस पूरे अभियान

0: से किस प्रकार लाभ पहुंचा है, क्या बदलाव देखने को मिला है?
1: देखिए, निश्चित रूप से मतलब खासकर अगर खेती के कार्यों के लिए देखें तो जल की तो आवश्यकता है, बाकी निस्तारी प्रयोजन के लिए भी और प्रत्येक चरण में जल की उपलब्धता तो बहुत आवश्यक है। जब हमने अमृत सरोवर और फार्म पॉइंट को निर्मित किया तो सामुदायिक स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों ने सिंचाई के लिए उनका एक विकल्प के रूप में उपयोग किया और वो जो उनकी क्रॉप निकल के आई वो उनके लिए निश्चित रूप से एक गिफ्ट थी, तो वो एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि हमको ये भी देख के काफी अच्छा लगा कि लोगों ने उसको भी कुछ अलग तरीके से देखा, जैसे फार्म पॉन्ड में उन्होंने जल की उपलब्धता के साथ मछली पालन किया, कुछ लोग पल्स के लिए भी जा रहे हैं या इस तरीके से, और ये भी मतलब इस तरीके का क्वांटम की अंडरग्राउंड वाटर की तुलना में जो सरफेस वाटर है वो कैसे फसल को ज्यादा बेनिफिट करता है। तो ये अब अल्टीमेटली धीरे धीरे बात इस तरीके से भी जा रही है कि वो लोग जो शुरू में थोड़ा सा रिलेक्टेंट रहते थे, अब वो उनका और भी रहता है कि हम कैसे बेहतर करें। जैसे हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि खेतों में इस तरीके के रिचार्ज पिट बने जहां पे कि खेतों का पानी जब बाहर चला जाता था उसकी तुलना में वो अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे, इस तरीके के सिस्टम बनाने की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और जो असफल बोर हैं उनमें भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग रिचार्ज पिट बनाएं सो दैट कि पानी अगर वो बोर नहीं दे रहे हैं तो हम उनके माध्यम से पानी भूगर्भीय सतहों में प्रवेश करा सकें।
2: इसमें बस मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि क्या मतलब प्रभाव रहा, तो इसमें हम लोग जब इस अभियान के लिए गांव-गांव जा रहे थे तो कुछ किसानों ने स्वयं अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि उनके जो एक खेत में 6-8 बोरवेल करा चुके हैं किसी में पानी नहीं निकल रहा है, उसके बाद उनने खेत तालाब 3-4 बनाए और 1-2 सालों के अंदर उनके सभी जो पुराने बोर थे उसमें पानी का लेवल आ गया। तो ये अपने आप में एक बड़ी लर्निंग है किसानों के लिए कि आप अनलिमिटेड एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं मतलब जो आपका भूगर्भीय जल है उसको, और फाइनली हमको सरफेस वाटर पर निर्भर होना ही पड़ेगा। तो अगर उस पर हम निर्भर रहे सिंचाई के लिए मुख्य रूप से अपने पास, तो हम एक तो भूगर्भीय जल को बचा सकते हैं और दूसरा उसको मतलब उसको रिजुविनेट भी कर सकते हैं, उस सोर्स को वो भी हम कर सकते हैं। तो ये उनके खुद के अनुभव है जो हम लोगों ने उसको प्रयास किया कि उन किसानों को जो अपनी विभिन्न सभाएं हैं सम्मेलन कर रहे हैं जहां भी हम वर्कशॉप कर रहे हैं वहां उनको ही बोले कि अपने अनुभव शेयर करें जिससे अन्य लोग उससे थोड़ा सा प्रेरित हों और अपने यहाँ उसका उपयोग करें।
0: निश्चित रूप से आपके प्रयासों से स्थानीय लोगों को काफी फायदा हुआ है और जल संरक्षण के प्रति लोग ज्यादा जागरूक और संवेदनशील हुए हैं। श्रोताओं, जल संरक्षण पर बहुत ही अच्छी चर्चा हमारी चल रही है और अब बारी है गजेंद्र सर आपकी पसंद के एक गीत की।
1: जीवन में आपको हर जगह संघर्ष की स्थितियां रहती हैं। मेरी जंग फिल्म का एक गाना है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
3: जी जी जी,
1: श्रोताओं को अगर सुना सकें तो बहुत अच्छा।
0: बिल्कुल, आइए सुनते हैं ये गीत। गजेंद्र सर, आपने अमृत सरोवर, जल संरक्षण और पुराने जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन का जो पूरा अभियान स्तर पर कार्य किया, हम जानना चाहेंगे कि क्या शुरुआत में जिस लक्ष्य को आप लेकर के चल रहे थे वो पूर्ण हो गए और भविष्य में इस अभियान को लेकर के आपकी क्या योजनाएं हैं?
1: देखिए, जो नेशनल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उसकी एक रिपोर्ट है, एक तो इंडिया वाइड हमने अंडरग्राउंड वाटर का बहुत व्यापक दोहन किया है। नरसिंहपुर भी उन जिलों में एक है जो अब रेड जोन में है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर को बोर के माध्यम से एग्जॉस्ट करने की वजह से बहुत हम उस वाटर टेबल में कहीं ना कहीं नीचे गए हैं। तो एक आम के बारे में ऐसा दावा नहीं किया जा सकता कि कैसे और कब खत्म होगा, लेकिन ये जरूर है कि एक शुरुआत इसको मानी जा सकती है। और ये अगर सरकारी और सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से, स्थानीय सहभागिता के माध्यम से, जो बेसिकली बायर्स हैं सोसाइटी के, उनके साथ अगर हम कर रहे हैं तो शायद उम्मीद की जा सकती है कि ये सस्टेनेबल हो सकेगा। लेकिन आवश्यकता हमारे निस्तारी प्रयोजनों के साथ साथ अगर खेती की भी है, एक बात होती है कि खेती को हम ज्यादा उपादेय और लाभ के रूप में हम ले जाएंगे, क्योंकि कृषकों के लिए वो एक चुनौती हमारी है, हम कृषक बाहुल्य जिले भी हैं, तो हमें पानी की निरंतरता भी चाहिए और उसकी सततता भी चाहिए। तो हमारे लिए ये काम निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसको मानते हैं कि शुरुआत ही हमने की है। एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूंगा कि नरसिंहपुर जिले को माँ नर्मदा की गिफ्ट मिली हुई है, लगभग 146 किलोमीटर का तट है दोनों क्षेत्रों में मिला के उत्तर दक्षिण में, तो बड़ा क्षेत्र नर्मदा जी के जल से सिंचित होता है और लगभग 24-25 ऐसी नदियां हैं जो कि उसको कहीं ना कहीं से अपनी सहायकता प्रदान करती हैं जलों के रूप में, जो खासकर विंध्य और सतपुड़ा से जो नदियां छोटी छोटी निकलती हैं वो अपना जल भी उनको वापस देती हैं। लेकिन हम अगर हर जगह पे, हर खेत में, हर गाँव के लिए अगर कार्य योजना नहीं बनाएंगे तो वो एक मुश्किल होगी। एक हम लोग अपने जिले में नर्मदा समृद्धि परियोजना के माध्यम से हमने विभिन्न प्रकार की गतिविधियां ली हैं, जिसके अंतर्गत जैसे मैडम ने बताया कि करीब 900 एकड़ से ज्यादा जमीन हमने उसको जो ट्रेडिशनल धान्य फसलें हैं उससे हटके हम उसको वानिकी और उद्यानिकी के लिए ले जा रहे हैं, और ऐसी जमीनें हमने विधिवत फैंस

0: करके सुरक्षित करें। कम्युनिटी को विशेष रूप से स्वसहायता समूहों को उसको अनुबंध के माध्यम से कुछ जमीनें देके एक निश्चित अवधि के लिए ये प्लानिंग है कि हम उनको दें और ये तय कर सकें कि नर्मदा जी के संरक्षण के लिए भी जल की उपलब्धता सतत बनाए रखने के लिए भी क्या आवश्यक है। तो क्या हम सॉइल इरोजन रोक रहे हैं, क्या हम रासायनिक खेती के स्थान पर प्राकृतिक खेती को बढ़ा पा रहे हैं और वो एक सस्टेनेबल मॉडल के रूप में आ रही है, क्या हम बी कीपिंग जैसे भी चीज कर रहे हैं जो ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम को नेचुरलाइज कर पा रहे हैं। तो नर्मदा समृद्धि समितियां हर ऐसे 91 गांव में बनी जहां से नर्मदा जी प्रवाहित होती हैं और अपेक्षा समिति के माध्यम से स्थानीय पंचायत के लोग और स्थानीय समुदाय को जोड़ने से है कि हम ये तय करें कि क्या नहीं करना है। मसलन जैसे कि जो नॉन डिग्रेडेबल गार्बेज है वो बहुत बड़ी चुनौती है, अजैविक कचरा, खासकर अगर देहातों की बात करें क्योंकि शहर में की तुलना में वहां कहीं प्रसंस्करण नहीं है, बहुत ज्यादा कलेक्शन का भी एक वातावरण निर्माण की आवश्यकता है। तो वो जितना भी अजैविक कचरा, वो चाहे पनी प्लास्टिक के रूप में डिस्पोजल के रूप में होता है, वो नदियों के माध्यम से प्रदूषण का कारण बनता है। तो हम उनके भी रोकथाम की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक पत्तलों की बात कर रहे हैं, बर्तन बैंक की बात कर रहे हैं। तो एक तो ये बात, और क्या करें हम हरी चादर बिछाएं, रैपिडेंट जोन को हम ज्यादा मजबूत करें, वानिकी और उद्यानिकी पौधे और उसी के माध्यम से आजीविका सृजन की भी गतिविधि हो। ऐसा नहीं हो कि हम जब इकोसिस्टम बैलेंस कर रहे हैं तो किसी की आजीविका बाधित हो, वो भी उपार्जन हो, महत्वपूर्ण बात है। ऐसे ही एक जिले में सिंगरी नदी है जो नरसिंहपुर की लाइफ लाइन है, उसके भी पुनर्जीवन का काम किया जा रहा है और उसमें न केवल जन सहयोग, जैसे कि मैडम ने बताया कि उसमें लगभग 2 माह तक जिले के विभिन्न विभागों की जेसीबी और 200 जैसी बड़ी मशीनें लगभग नदी को उसके कोर्स करेक्शन के लिए मदद करती रही, बेंच बनाने का काम किया। फिर बाद में उसमें माननीय मंत्री जी ने उसमें हमको लगभग कुछ प्रोजेक्ट सेंक्शन किया है करीब 4 करोड़ रुपए का, जिसमें कि हम शहर से पहले के 4 गांवों में नदी पुनर्जीवन के काम के साथ साथ रिवर फ्रंट भी डेवलप कर रहे हैं और समाज को एक अच्छी गतिविधि के रूप में उसको देने का काम कर रहे हैं।
1: जी, अगर देखा जाए तो एक पूरे पारिस्थितिकी को, एक पूरे इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। रजनी मैम, प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में अमृत सरोवरों और जल संरक्षण को लेकर के नरसिंहपुर जिले की सराहना की गई, तो आप नरसिंहपुर जिले की कलेक्टर हैं, 2013 बैच की युवा आईएएस अधिकारी हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप?
2: देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब जिले का नाम मन की बात में लिया गया तो हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। जिले के लिए एक राष्ट्र स्तर पर जिले का नाम आना निश्चित रूप से, और आपके काम को इतना बड़ा एक रिकग्निशन मिलना अपने आप में हम सब के लिए बहुत उत्साह और गर्व का विषय रहा है। और इससे हमको और प्रेरणा मिली है, जो आपने अभी लक्ष्य की बात भी की थी कि जो हम अभी हमने काम किया है वो बस एक प्रारंभ है, जैसे सीओ साहब ने बताया, तो हमें बहुत प्रेरणा मिली है कि हम अपने इस काम को और आगे बढ़ाएं। और बरसात के बाद, जैसा अभी पहले भी जिक्र में आया कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी भूमियां हैं जहां हम लोग ने खाली कराई है हमने, तो वहां पे हम लोग अभी तो हमने छोटे संरचनाएं बनाई हैं। हमारा प्लान है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उनका एक मुख्य विषय रहता है अमृत सरोवर को लेके, तो हम लोग इन क्षेत्रों में भूमियों में बड़े बड़े सरोवरों का निर्माण कराएं। और विशेष रूप से अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बड़े तालाब होते हैं, तो बहुत एक तो आप जो हम कहते हैं कि एक आपका जल स्तर है उसको बढ़ाने में मदद मिलती है, और बेसिक जो आपका सरफेस वाटर है अगर वो हमने रोक लिया तो वो उस क्षेत्र की जो रूटीन की आवश्यकताएं हैं, चाहे जानवरों के लिए पेयजल की बात करें या सिंचाई की बात करें या फिशरीज की बात करें, तो जो कृषि को लाभ का धंधा बनाने वाला, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही प्रिय प्रोजेक्ट है, तो उसमें भी सहयोग मिलता है। तो हम लोग प्लान यही है कि हम जो ग्रामीण एक अर्थव्यवस्था है उसको किस तरह से सभी चीजें समन्वित करके उसको बढ़ाने का प्रयास कर पाए। निश्चित रूप से हम लोग अपना जो हमारा अभी बारिश के बाद का समय होगा उसके लिए हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं कि हम कैसे इन सभी भूमियों पे कुछ बड़े तालाब और निर्मित कर पाएं। और प्लांटेशन बेसिकली एक सेकेंड लेवल है जल संरक्षण का, जब आप संरचनाएं बनाते हैं उसके अलावा प्लांटेशन करते हैं, तो हम लोग लगभग 500 एकड़ भूमि पे फेंसिंग करके उसके प्लांटेशन की मतलब कुछ जगह 200 एकड़ पे लगभग कर लिया है और बाकी आगे प्लान है। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रोत्साहन से जिले को एक नई ऊर्जा मिली है और काम करने की, हमारी पूरी टीम बहुत उत्साहित हुई है और विभिन्न माध्यमों से हमको जो बधाइयां मिली हैं मन की बात में नाम आने से, तो हम अब एक नई ऊर्जा से इसमें काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम जितना अभी हमने काम किया उससे और अधिक प्रगति लाएं। और जिले में निश्चित रूप से जो पानी की जो समस्या है जो अभी फील नहीं हो रही है लोगों को, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जल संरचनाएं या नदियां जैसा सीओ साहब ने बताया वो है, तो अभी हमारी वो चिंता का विषय नहीं है, लेकिन कुछ वर्षों बाद 10 वर्षों बाद तो चिंता का विषय बनेगा,
1: बन सकता है।
2: तो हमारी योजना यह है कि जब वो विषय बने उसके पहले ही हम इतना कुछ काम कर लें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को समस्या का सामना न करना पड़े, उनके पास एक बेहतर जल की व्यवस्थाएं हो। और इसके लिए लगातार हम लोग जन समुदाय को भी हमें प्रशासनिक भी बहुत सहयोग मिल रहा है, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी हैं उनका लगातार मार्गदर्शन सहयोग मिलता रहता है, क्योंकि आरडी की मैक्सिमम स्कीम आरडी

0: की होती हैं, तो स्थानीय स्तर पर निश्चित रूप से बहुत हमको सहयोग मिल रहा है सभी, मैं कहूँ इस तरह समाज के, चाहे वो राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, समाज हो, संस्थाएं हो, सबका सहयोग मिल रहा है। और हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमें एक उपलब्धि मिली है हमारा नाम जिले का लेके, उसको हम और आगे बढ़ाएं, यही हम प्रयास कर रहे हैं।
1: निश्चित रूप से नरसिंहपुर जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर आना आपके साथ साथ पूरे जिले के लिए एक प्रेरणादायी उपलब्धि है। क्या संदेश आप देना चाहेंगे जल संरक्षण के लिए, सरोवरों के संवर्धन के लिए, जल स्रोतों के संवर्धन और संरक्षण के लिए, और व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कैसे लोग इसमें अपना योगदान दे सकते हैं?
0: देखिए, अगर हम अपने मतलब देश की बात करें या प्रदेश की बात करें, तो आज की स्थिति में हम सब लगातार देख रहे हैं कि जल की कमी हर जगह महसूस हो रही है। और जितना हम उपयोग कर रहे हैं, जितना पर कैपिटा आवश्यकता है और कितना हम उपयोग कर रहे हैं, एक तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। मतलब बहुत ज़्यादा पर व्यक्ति उपयोग किया जा रहा है जल, क्योंकि अवेलेबिलिटी अच्छी है इसलिए। और दूसरा, जो आज से हम कहें 10 वर्ष या 15 वर्ष पहले जो स्थिति थी आपके वाटर लेवल की, ग्राउंड वाटर लेवल की, वो बहुत डिप्लीट हो गई, हर जगह डिप्लीट हुई है। तो इवन जो आपके बहुत नदियों के कछार वाले क्षेत्र हैं, जो बहुत अच्छी जल उपलब्ध, मतलब वहां पर भी जल के संकट की स्थिति आ गई है। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जल संरक्षण में सरकार जरूर एक, क्योंकि प्रशासन का ये, सरकार का ये काम होता है कि जो चीज़ें वो प्लानिंग करे और उनको एग्जीक्यूट कराए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो समस्याएं जनता को झेलनी है उसमें उसके जिम्मेदारी सरकार पे होती है। लेकिन जल संरक्षण ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां आज की स्थिति में पानी नहीं है और पानी को लेके कितने सारे विषय हो रहे हैं। तो एज अ पर्सन, हम हमें अपने व्यक्तिगत घर की बात करें, अपने ऑफिस की बात करें, या हमारे खेत हैं, किसान हैं, हमको अपना प्रयास करना चाहिए कि हम जो एक इस अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नारा भी दिया गया है कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, उस भावना से काम करें। और अपना जो भी परिसर है, जितना बड़ा भी घर है, जितना बड़ा हमारा क्षेत्र है, उसमें अगर हमने जल संरक्षण का प्रयास कर लिया, तो एटलीस्ट हम एक एक छोटे छोटे प्रयास से, हम जानते हैं बूंद बूंद सागर भरता है, बड़ी अच्छी कहावत है। तो हम सबको अपना व्यक्तिगत प्रयास करना चाहिए, और जो बड़े लेवल के प्रयास है वो तो शासन के माध्यम से हो ही रहे हैं, वो किए जा रहे हैं, लेकिन कम से कम हर व्यक्ति अगर इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो निश्चित रूप से इसका असर दिखेगा। और हमने भी यही प्रयास किया है, जो हम लोगों ने अभियान चलाया है उसमें हमने यही प्रयास किया है कि जैसे हमने लगभग 4,000 SHG की महिलाओं के माध्यम से सोकपिट और बोरी बंधान के काम कराए, जिसमें कोई राशि खर्च नहीं हुई। तो बेसिकली इस पूरे अभियान का, या तो पंचायतों के माध्यम से या तो इसमें और समुदाय के माध्यम से, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोग इस अभियान से जुड़े, लोगों को व्यक्तिगत रूप से महसूस हो कि ये हमारा काम है, ये किसी सरकार का या किसी का काम नहीं है, ये हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है, हमारे पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा है, इसलिए हमें ये काम करना चाहिए। तो प्रयास ये है कि हर एक ऐसा रूफ जिसमें पानी धारण करने की क्षमता हो, उसका पानी जमीन में जाए, हर एक खेत जिसमें पानी भरता है, हमने किसानों से चर्चा की है कि अपने खेत में छोटी जगह जहां भरता हो वहां वो ऐसा कुछ सोकपिट जैसा बनाए जिससे पानी कम से कम भरे नहीं और उनके लिए उपयोगी हो। तो इसके लिए बड़ा एक, हम कहें, जन आंदोलन जैसा विषय है जो सबको इसकी माता समझनी पड़ेगी। लेकिन प्रयास ऐसे धीरे धीरे शुरू होते हैं और आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रयास हुए हैं जो आगे जाके बहुत उसके बड़े इम्पैक्ट हुए हैं। तो हमारा बस यही जिले में प्रयास है कि हम ऐसे ही, मतलब लोगों को जब भी हम किसी जगह जहां भी लोग होते हैं, जहां जन समुदाय होता है, चौपाल में चर्चा करते हैं कि भाई इसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो लोगों के दिमाग में इस को लाना कि ये एक एसेंशियल आवश्यकता है, ये बहुत जरूरी है, और वही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और समुदाय, व्यक्ति, सरकार, सब मिलके जब काम करेंगे, तब हम, मैं चाहे जिले की बात करूं, प्रदेश की या देश की, तब हम जो ये जल की आवश्यकता है, जल की जो स्कार्सिटी है, उससे लड़ पाएंगे और उसको अपने भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए सुनिश्चित कर पाएंगे उपलब्धता। यही हमारा लगातार प्रयास है और उसी भावना को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं।
1: गजेंद्र सर, आपने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है, उसके बाद जल संरक्षण हो, अमृत सरोवर हो, कैच द रेन या ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, आपने इस क्षेत्र में लगातार मैदानी स्तर पर परिणामदायी कार्य किए हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को लेकर के? कौन से ऐसे व्यक्तिगत प्रयास किए जा सकते हैं? और जैसा कि आप जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे सामूहिक रूप से किस प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए।
2: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विजन है या जो उनकी अपेक्षा है हम सभी लोगों से, वो अगर जल संरक्षण के लिए है तो वो वास्तव में आवश्यक है। और आप देखें तो वर्ल्ड वाइड वाटर स्कार्सिटी की स्थिति है और क्लाइमेट चेंज भी इससे जुड़ा हुआ विषय है, खासकर स्वच्छ जल और आपके निस्तारी प्रयोजन के लिए होने वाले जल की उपलब्धता बहुत कम है। भारत यूनिसेफ के एक रैंकिंग में भारत में उपलब्ध जल का केवल 18% वाटर जो है वो उपयोगी है आपके लिए, जो कि अदरवाइज वो पॉल्यूटेड है या कुछ अलग तरीके का कारण से है। तो ये विषय ऐसा है जो

0: हर तरीके से लोगों के प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। और अगर मैं नरसिंहपुर की बात करूं तो हमारे पास 3 लाख हेक्टेयर के आसपास भूमियां हैं, 2,40,000 परिवार हैं। तो जो मैडम के भी हमारे कॉल हैं, वो हम अपेक्षा ये करेंगे कि प्रत्येक किसान इसमें शामिल हो और अपने खेत में वो लो रिच जहाँ है हम वहाँ पर रिचार्ज पिट बनाएं, असफल बोरों को फिर से जीवंत करें, क्योंकि एक धारणा है जल के लिए कि स्रोतों से पानी लो और स्रोतों को पानी दो। तो जो स्रोत हमें देते देते सूख गए हैं उनको अगर हम वापस भर सकें तो हम नहीं तो अगली पीढ़ी उसको उपयोग कर पाएगी। तो आज की जो एक चुनौती है, मैं मानता हूँ कि क्लाइमेट चेंज भी उसका एक घटक है, तो हम उस पर जाके काम करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समाज का प्रत्येक वर्ग हर स्थिति में जो जहाँ जैसा हो वो रियल टाइम आज उसमें कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो एक ये धारणा के साथ नरसिंहपुर आगे बढ़ रहा है।
1: जी बिल्कुल। श्रोताओं, अमृत सरोवर जल संरक्षण, कैच द रेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इन विषयों का उल्लेख करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जुलाई माह के मन की बात कार्यक्रम में नरसिंहपुर जिले का जिक्र किया था। इन्हीं विषयों पर हमने चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था हमारे अतिथि विशेषज्ञों को, श्रीमती रजनी सिंह, कलेक्टर जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, और श्री गजेंद्र सिंह नागेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। हमें बता दें कि नरसिंहपुर जिले में अमृत सरोवरों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और जल संरक्षण के कार्य आप दोनों के ही नेतृत्व में, आप दोनों के ही मार्गदर्शन में प्रभावी रूप से संचालित किए गए हैं। विभिन्न विभागों, जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय नागरिकों के समन्वित प्रयास से अमृत सरोवरों का पुनर्जीवन सुनिश्चित हुआ है, जिससे जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, भूजल संवर्धन को भी नई दिशा मिली है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय देकर हमसे विस्तार में चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: नमस्कार।
3: नरसिंहपुर के अमृत सरोवर, ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी जबलपुर के सौजन्य से प्राप्त हुई। अब पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में लीजिए, आपको सुनवा रहे हैं ऐसी ही एक प्रेरित करने वाली भेंट वार्ता, कैच द रेन। अतिथि हैं श्री भरत भाई तिलवा, ट्रस्टी गिर गंगा परिवार ट्रस्ट, श्री दिलीप भाई सेकिया, संस्थापक ट्रस्टी और अध्यक्ष गिर गंगा परिवार ट्रस्ट। भेंट करता है हितेश कुमार मावाणी, कार्यक्रम प्रमुख, आकाशवाणी अहमदाबाद।
4: दिलीप भाई और भरत भाई, आपका आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में हार्दिक अभिवादन है, स्वागत है।
5: नमस्कार।
4: सबसे प्रथम हम दिलीप भाई से जानेंगे कि आपको ये जल संचय कामगिरी है उसकी प्रेरणा कब मिली और इसके लिए किन परिस्थितियां जवाबदार है?
5: बेसिकली मैं किसान का बंदा हूँ, अभी भी मैं और मेरे फादर खेती बाड़ी कर रहे हैं, मेरे पास भी पशुपालन का काम है, 200 गिर की गायों है। तो मैंने चीज देखा कि जिस साल बारिश होती है ना, इस साल मेरे को गाय को चारा मुफ्त मिलता था, और जिस साल बारिश नहीं होती है इस साल मेरे को वो परचेस करना महंगा पड़ता था। किसान के साथ साथ मैं वहां के भारतीय किसान संघ का अध्यक्ष बना, तो इस समय में मैंने बहुत गांव का प्रवास किया किसानों को मिले। उस समय मेरे को सबसे बड़ी अगर किसान की ओर विस्तार की समस्या अगर कोई दिखाई देने, वो दिखाई दी पानी। मैंने नजदीक से जुआ कि मेरी सौराष्ट्र की धरती के किसानों को अगर पूरा पानी मिल जाए ना, तो हमारे देश की 140 करोड़ जनता का पेट भरने जैसा अनाज पैदा करने की ताकत वहाँ की जमीनों में भी है और वहाँ के किसानों में भी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती थी पानी। इस जगह पे एक समय 20-30-40 फीट पे पानी था, वो पानी धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे बहुत गहराई पे 100-200-500 हजार, कहीं कहीं जगह पे तो 2000 फीट पे गहराई पे चला गया। वहाँ के किसानों की जो भी आमदनी होती है ना, वो आमदनी का 25% पानी ढूंढने में जा रही है। तो उस विषय की एक प्रेरणा मिली कि इस समस्या का रोल बहुत समझा। तो हमने देखा तो बारिश तो हो ही रही है फिर भी पानी नहीं है, तो हमने थोड़ी भौगोलिक रचना का अभ्यास किया, क्योंकि वो सौराष्ट्र की धरती है, यहाँ पे 1200 किलोमीटर का दरिया किनारा है, वहाँ की धरती पथराड़ और डूंगराल है, बारिश गिरती है, लेकिन वहाँ जरूरत है इतना रोकने का, छोटे मोटे चेक डैम और तालाब न होना हिसाबे 80-90% पानी समुद्र में चला जाए। तो इस विषय की गंभीरता हमको समझ में आई और उसके बाद हमने इस विषय पे काम शुरू करा, लोगों को जोड़कर ये पानी हम कैसे बचा पाए।
4: दिलीप भाई, आप ये भी बात कीजिए कि सौराष्ट्र रीजन में जो 1984-85-86 में जब 3 साल लगातार बारिश नहीं हुई थी, तो उस दौरान कैसी परिस्थिति थी?
5: एक समय था, वो हम बात किया जाए कि यहाँ से 40-50 साल के पुराने की बात है, इस समय में क्या हालत थी।

0: वैसे कोई साधन भी नहीं थे, तो जमीन में से पानी भी निकाल नहीं रहे थे हम लोग। और इस समय गुजरात के अंदर 3 साल का 85, 86 और 87, इन 3 साल में ऊपर से बारिश नहीं गिरी। फिर भी एक बात तो सही है कि वहां पे लोग सहन कर गए। उसका एक विजन था कि ऊपर से बारिश नहीं गिरी थी, जमीन के अंदर पानी कहीं ना कहीं पड़ा था। लेकिन उस समय में राजकोट को इतने दुष्काल के समय में देखो कि वहां पे उस समय भी बस्ती भी कम थी, फिर भी ट्रेन से पानी वहां पे आया था। और इसके बाद लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आई और यहाँ के सीएम ने भी वहां पे मेहनत की। और वो समय था कि बहुत सारे छोटे मोटे चेक डैम बने थे, और वो चेक डैम बनने के बाद वो वहां के विस्तार में, किसानों में और विस्तारों में थोड़ी सी मजबूत आई हुई, लोगों 2 पैसा कमाने लगे, थोड़ा सा विकास हुआ और राष्ट्र को वहां पे फायदा भी हुआ। मैंने जब देखा कि सबसे बड़ी समस्या पानी है तो उसको कैसे जोड़ा जाए, तो मैंने 3 साल तो मेहनत की गवर्नमेंट में रजूआत करने के लिए। तो काम इतना बड़ा था, ये प्रोसेस गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से कहीं ना कहीं काम कर रही है, लेकिन ये प्रोसेस इतनी बड़ी थी। तो मैंने बोला कि अगर कोई भी कामयाबी चाहे ना, तो इसमें लोक आंदोलन होना चाहिए, लोक जागृति होनी चाहिए। तो हमारा एक एनजीओ था, गिर गंगा परिवार, जो हमने गायों के लिए तैयार किया था, और ये हमने पानी के विषय में काम शुरू कर दिया। धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे लोगों को जोड़ जोड़ के हमने एक काम शुरू किया। पहली शुरुआत हमने की थी कि एक चेक डैम को रिपेयर किया। 2022 में हमने एक काम की शुरुआत की थी।
1: तो भरत भाई, आपको ये जल संचय कामगिरी में कैसे आपकी रुचि उत्पन्न हुई?
2: पहली बार गिरगंगा परिवार का मेरे को आमंत्रण दिया गया प्रेसिडेंट हिसाब से। मैंने पहली बार दिलीप भाई को सुना, उसकी जो बात में जो लगाव और प्रेम था पानी बचाने का, उसी संदेश से मेरे को प्रेरणा मिली कि गिरगंगा परिवार जो काम कर रहा है इसमें उसका पर्सनल ज्ञातिवाद वगैरह कोई स्वार्थ, जन समुदाय का सबका भाग वाला इसे काम कर रहे हैं, तो मेरे को उसके साथ जुड़ने की प्रेरणा हो गई। तब से मैं गिरगंगा परिवार के साथ में उसका सारथी तरीके से जुड़ा रहता हूँ।
1: भरत भाई, आप स्वयं अपनी जो फैक्ट्री है वहां पर भी आप ये हर महीने आपका ये प्रैक्टिस रहता है, और साथ ही में आप अपने जो इंडस्ट्रीज है, दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको भी आपने प्रेरित किया है। तो इसी तरह से हर महीने कितना कंट्रीब्यूशन होता है, और जो गिर गंगा परिवार ट्रस्ट के आप डोनेशन करते हो?
2: अभी ये 2 महीने पहले की प्रक्रिया है, अभी शुरुआत हुई उसकी। कभी कभी जब भूख लगती है तो खाने के कोई ना कोई संशोधन कर ली, इसी भी एक इनमें से एक शोध बनाई इनमें से। ये प्रेरणा का पेड़ फर्स्ट सब्जेक्ट है। अभी मेरी कंपनी में इसकी कॉलेज की तरफ बहुत स्टूडेंट लोग आए थे, कंपनी के हर जगह पर एक एक बॉक्स रखा है। आगे का रिजल्ट के बाद आएगा, मालूम नहीं रिजल्ट सही आएगा ऐसा पक्की बात है, लेकिन कितना आएगा वो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आएगा पक्का।
1: आपने बहुत अच्छी बात बताई भरत भाई। आइए हम फिर से दिलीप भाई से प्रश्न करते हैं कि कैच द रेन जल संचय कामगिरी के अंतर्गत आप कौन कौन सा कार्य कर रहे हैं?
0: हमारे देश भारत की सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो वो किसानों का काम है। अभी तक हमारा देश की पहचान भी विश्व के अंदर खेती प्रधान देश से हो रही है, और सबसे बड़ा पानी का यूज होता है वो तो किसान एग्रीकल्चर में हो रहा है। तो इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी प्रवृत्ति चल रही है, तो इस देश का जब बड़ा प्रधान कोई सूत्र देता है जल संचय जन भागीदारी, इस सूत्र को सार्थक करना है। तो इसके हिसाब से हमारी संस्था ने तय कर दिया कि पानी की एक भी बूंद हमको समुद्र में नहीं जानी है। तो इसको किस तरीके से किया जाए, बहुत अभ्यास किया जाए। हमारा जो भी अभ्यास है वो अभ्यास से हमको जो सीखना मिला, तो इसमें 2-3 चीज हमको जाना। पहली चीज होती है कि वहां की भौगोलिक रचना को देखना पड़ता है। हमारी गुजरात की अगर बात किया जाए तो गुजरात में 2 चीज है। हमारे अहमदाबाद के ऊपर मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात में हम जब जाए ना, तो वहां पे माटी और रेताड़ का प्रदेश है, वो जमीन ऐसी है। लेकिन हम सौराष्ट्र की अगर चला जाए तो वहां पे पथराड़ और डूंगराल है। तो पानी स्टोरेज की बात है, तो सौराष्ट्र की धरती में सबसे बड़ा पानी का स्टोरेज का कोई उपाय है तो छोटे मोटे चेक डैम और तालाब, इस विषय में अगर भार दिया जाए तो अच्छी बात होती है। लेकिन ये रूलर की बात हुई, क्योंकि मैंने बोला ना कि 80% पानी तो एग्रीकल्चर में जा रहा है, लेकिन अभी सिटी भी बड़े हो रहे हैं, लोग गांव छोड़ के सिटी में क्यों आ रहे हैं, उसका भी अगर विजन दिखा जाए तो वो पानी आएगा। तो हमने लोगों को बताया कि सिटी के अंदर पानी कैसे रोका जाए, तो दरेक लोगों की एक जिम्मेदारी होती है, उसका साल का जो भी पीने का पानी है ना, वो स्टोरेज का, बारिश का पानी का टंकी हर घर पे होना चाहिए, जमीन के अंदर बारिश का पानी स्टोरेज किया जाए, पहला तरीका। दूसरी बात, अभी तक हमको जब भी पानी की जरूरत पड़ती है तो हम जमीन से पानी निकाल रहे हैं, तो अब हम ऐसा बोर करें कि हम बोर करके जमीन को पानी रिचार्ज किया जाए। उसके बाद अगर बोर नहीं ले रही है पानी तो ही हम बाहर पानी निकालने देंगे। लेकिन गांव के लिए सबसे अगर बड़ी चीज है तो कुआं रिचार्ज, हम कुआं रिचार्ज करवा रहे हैं। जितने भी बोर है किसानों ने किया जो फेल हो गए हैं, जिसमें पानी नहीं है वो बोर रिचार्ज करना है, सभी किसान के खेत में

0: छोटी मोटी खेत तलावड़ी बनाना है। मैं बोलता हूँ गांव के आगेवानों को, 25 इंच बारिश, 25 इंच बारिश अगर गिरती है और इस बारिश गिरने के बाद हमारे गांव की बॉर्डर के बाहर अगर बारिश का पानी निकला तो वहां के गांव के आगे वालों की दीर्घ दृष्टि में कहीं ना कहीं कुछ क्वेरी है, उसको सुधारनी चाहिए। इस विषय में लोगों को समझाकर बस एक ही काम है, डैम बनाना, चेम ऊंडा करना, गहराई करना और खेत तलावड़ी बनानी, कुआ रिचार्ज करना और बोर रिचार्ज करके हम ये संस्था काम कर रही है। हम जब गांव में विलेज में मीटिंग करते हैं ना, लोगों को जुड़ते हैं, तो उस समय एक प्रसंग मेरे को याद, मैं सबको बताता हूँ, अगर हमने एक डंपर माटी अगर तालाब से निकाल कर अगर हमने बाहर डाल दी तो वो लॉन्ग टाइम के लिए 10,000 लीटर पानी की जगह होगी। एक बार खर्चा करना है। मैं बोलता हूँ अगर पानी में कोई 1,00,000 रुपया लगाता है ना तो राष्ट्र को 1 करोड़ का फायदा होता है।
1: कैसे?
0: क्योंकि एक बार डैम खोदने का खर्चा होता है, बाद में 100 साल चलेगा तो क्या होगा, बार बार एक बार पानी आया तो पानी की कीमत अमूल्य है। पानी की कोई कीमत, अगर पानी की कीमत समझना है ने तो हम रण में जाए देखते हैं, तरस बताते हैं पानी की क्या कीमत होती है। किसान बताता है कि जब उसका पाक सूखता है पानी की क्या कीमत होती है। अगर पानी की कीमत हमको समझनी है ने तो हमको ये विस्तार से हम समझाएगा तो क्या होता है कि एक बार खर्चा करने से बार बार लाभ मिलता है, वो पानी और चेक डैम का तरीका होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं लोगों को कि एक बार पानी में रुपया लगाने से क्या हुआ, जिस गांव में हमने काम किया ने उस गांव में खुशहाली आने देख, मैंने देखा। हमारे यहाँ के 2-3 गांव का मैं उदाहरण देता हूं। हमारे जामनगर डिस्ट्रिक्ट में कालावड़ तहसील के पास एक वरणा गांव है, इस गांव के पानी 700-800 फीट की गहराई पे पानी था। वहां पे लोगों ने हमने जोड़ा, 2-3 मीटिंग की उसका, थोड़े लोग जामनगर रहते थोड़े राजकोट गांव में, सभी जगह पे मीटिंग की और गांव लोगों ने चेरी की एकता करके वहां डैम करना शुरू किया। इस गांव में गर्मी के दिन में तो गांव को बोर करने का मशीन आता है हर साल और किसानों का 1 करोड़ रुपया लेके जाती थी। और वहां पे अगर बोर को शुरू करने के 1-2 किसानों के बोर में अगर पानी ज्यादा हो गया तो उस साल 2-3 करोड़ लेके जा रही थी। लेकिन जब किसानों के एकटा करके वो चेक डैम तालाब बनाने का शुरू किया, लास्ट 3 साल में उस गांव में बोरवेल आनी बंद हो गए तो वो किसानों का रुपया बढ़ा बचा। बाद में जो पानी 800 फीट पे था वो पानी 30-40-50 फीट पे आ गया और पूरे अगले गर्मी में वो गांव में ज्यादा से ज्यादा गर्मी के दिन में भी कोप लगा तो वो सबसे बड़ा फायदा होता।
1: दिलीप भाई, आपने उस गांव में कैसे काम किया, जल संचय की कामगिरी के, जो जहां पर बोरवेल के मशीन नहीं आनी बंद हो गई?
0: बहुत सारे ऐसे गांव की उदाहरण है, लेकिन एक बात मैं अगर बताऊं, हमारा गिर गंगा का तरीका होता है। मैं मानना चाहता हूं कि लोगों को जागरूक, जैसे जन आंदोलन के बिना कामयाबी नहीं होगी, वो मेरा सूत्र है, तो लोगों को कैसे जोड़ा जाए, तो हमारा एक छोटा सा तरीका होता है। हम जब गांव में जाते हैं ना तो गांव को पहले देखने के बाद वहां पे एक मीटिंग करते हैं, लोगों को एक छोटी सी गांव सभा बोला जाता है, वहां पे हम समझाते हैं लोगों को पानी का महत्व समझाते हैं और वहां पे ही गांव की एक 10-11 लोगों की कमिटी बनाते हैं, वहां भी चैरिटी करते हैं और वो चैरिटी गांव में ही रखते हैं। वो चैरिटी का वही टीम के सदुपयोग करके हमने काम शुरू करते हैं। जिस गांव की बात की मैंने, एक वरणा की बात की, ऐसा एक टोडी गांव है, पावनगर डिस्ट्रिक्ट के सीहोर तालुका का टोडी गांव है, वहां पे एक विपस्याना केंद्र के जैन समाज के ग्रुप के आर्थिक सहयोग से वहां काम शुरू किया। जो समझना की बात है, उस गांव में भी पानी की यही हालत थी। क्षत्रिय समाज का गांव है, 800-900 फीट पे पानी और वो डुंगराल प्रदेश का गांव, अगर बारिश चौमासे के दिन में अगर बारिश कम होती है तो चौमासु पाक भी फेल हो जाता था। उस गांव में हमने एक सीरीज ऑफ डैम बनाना शुरू किया, एक ही गांव में 15-17 डैम बना पाए। 30 साल हम गर्मी में गया था ना तो वो पहले दूसरे तीसरे लास्ट वाले डैम से नदी बह रही थी गर्मी के दिन में। वो किसान की अगर वो प्रसंग हमको महसूस करना है ना तो वहां को किसान को मिलना चाहिए। अगर किसान को पानी मिल जाए ना तो उसकी 90% खुशियां मिल जाती है। तो वो हमने देखी तो वो यहाँ की गांव की खुशियां अगर देखा जाए, क्योंकि पानी है सबको, 90 समस्या के एकमात्र विकल्प है तो पानी है। किसान क्या बोलते हैं ना कि पशु को खुराक मिलता है, पंखियों को चण मिलता है, लोगों को रोजगारी मिलती है, अच्छा अनाज पैदा होता है। हम क्या है ना, हरियाली और खुशहाली गांव में अगर देखना है ना तो पानी बचाना है, वो हमने नजदीक से देखा है।
1: बहुत ही उम्दा तरीके से बताया जल संचय की कामगिरी। भरत भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने आसपास के लोगों को आप कैसे जल संचय की कामगिरी में आप लोगों को प्रेरित करते हैं?
2: जो भी पानी साहब ने जो बताया पहले, हर आदमी पानी बचाए और कम बिगाड़े, तो इस सूत्र है कि पानी जितना बिगाड़े

0: न कम बिगड़े, ऐसी जो समझदारी की बात है। हम तो बिजनेसमैन है, खेती बाड़ी तो है नहीं, लेकिन उतना समय पानी बना भी नहीं सकते, बचाने की कोशिश करने के साथ समझदारी सबको देते हैं।
1: हम जो सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पर शहरी विस्तार और ग्रामीण विस्तार दोनों विस्तार है, तो आप जब भी सेमिनार का आयोजन करते हैं जल संचय के बारे में, तो शहरी विस्तार और ग्रामीण विस्तार उसमें से आपको कैसा प्रतिभाव मिलता है?
0: जो जलाने का मैं पहला काम करता हूँ, हर जगह मैं एक ही काम करता हूँ, दिलीप भाई को सुने और पानी बचाने का क्या फायदा गैर फायदा होता है उसके बारे में मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। मालूम नहीं है, कभी टेस्ट नहीं किया तो मालूम। हमारी सोचा जब भी बात हुई मैं दिलीप भाई को बार बार बुलाता हूँ और जो सुनता है, सुनने जो भी प्रेरणा मिलती है वो प्रेरणा से आगे आगे बार काम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम चाहे रखते हुए दिलीप भाई से पूछेंगे कि आपके जल संचय के कामगिरी में आपको सरकार की ओर से किस तरह से सपोर्ट मिलता है?
2: हमारी गिर गंगा की जो पानी का काम में गवर्नमेंट की अगर बात किया जाए तो वो पहले तो मैं सोच रहा था कि जब हम गांव में काम करने जाते हैं तो गांव में क्या होता है, लोक भागीदारी से सब प्रकार का काम होता है। गांव में गेट भी बनता है, गांव में समाज भी की बाड़ी भी बनती है, गांव में बेंच भी लगाया जाता है, गांव में स्मशान भी अच्छी बनती है, गांव में मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो जाता है। लेकिन जब पानी की बात होती है कि तो लोगों में साइकोलॉजी होती है कि क्या काम गवर्नमेंट करेंगे, तो इस विषय के लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़ता था कि गवर्नमेंट करेगी ऐसा दिमाग में क्यों है। तो ये बात भी सही है कि जिस समय जिस काम किया था सब गवर्नमेंट में किया था, तो लोगों की मानसिकता में आया था कि पानी का गाप गवर्नमेंट में, तो इस विषय में लोगों को भी भावना है कि गवर्नमेंट में इसमें जुड़े। तो जब हमारी संस्था का काम करना के शुरुआत की तो हम तो लोग भागीदारी से लोगों को जोड़ना करते थे, लेकिन इस देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने जब सूत्र दिया, इस सूत्र को बार पहली बार हमारे देश में जल शक्ति मंत्रालय तैयार की और इस मंत्रालय का काम कर रहे सीआर पाटिल साहब, सीआर पाटिल जी ने गिर गंगा परिवार को खूब प्रोत्साहित किया है। और कभी भी छोटे मोटे कोई भी प्रोग्राम गिर गंगा का होता है तो सर का आशीर्वाद रहता है। मेरे को मालूम है कि लोकसभा के अंदर भी सर ने गिर गंगा एनजीओ का नाम लिया कि वहां पे एनजीओ अच्छा काम कर रहे, राज्यसभा ने अंदर भी यहाँ के एमपीओ ने काम किया कि गिर गंगा अच्छा काम कर रहे। तो ये गवर्नमेंट के जो भी लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं वो भी हमारी सराहना कर रहे थे। दूसरी बात, जल शक्ति मंत्रालय ने अगले साल बेस्ट एनजीओ का अवार्ड भी हमको गिर गंगा को दिया है। तो इससे क्या हुआ, हमारी प्रेरणा बढ़ी, हमको हिम्मत मिली। हम कहीं भी काम करते तो लोकल वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जो भी कलेक्टर होते हैं वो भी अधिकारियों को सूचना देते हैं कि गिर गंगा जब काम कर रही है तो हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जितनी भी मदद करेंगे लेकिन उसकी काम में कहीं रुकावट नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से, इस होप्स के हिसाब से हम बड़ा काम कर पा रहे हैं। तो इस हिसाब से और आगे अभी भी नया नया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बना रही है कि इस साल कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से आर्थिक सहयोग भी कैसे मिल पाए, ये चल रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट की प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस अगर खत्म होगी तो आर्थिक भी सहयोग कुछ ना कुछ मिलेंगे, लेकिन उसने जो हमको वो कहीं ना कहीं आर्थिक के बिना जो भी मदद की है वो बढ़िया की है और हिसाब से काम आगे बढ़ रहा है।
1: दिलीप भाई, आप ये जो जल संचय कामगिरी कर रहे हैं तो हमारे श्रोताओं को प्रेरणादायी बात बताइए और श्रोताओं के लिए संदेश भी बताइए।
2: मैंने पहले भी बोला था, लास्ट भी बोल रहा हूँ कि पानी कोई बना नहीं सकता, बिना पानी से काम हो नहीं सकता। पैर नहीं है फिर भी चलता है पानी, जीव नहीं है फिर भी जिंदा रहता है पानी। ये पानी की मूल्य है, ऐसा कीमती और अमूल्य पानी बचाना है वो गवर्नमेंट एक का काम नहीं है, हम देशवासी भारत देश के सभी लोगों का यह धर्म है कि सभी को साइकिल चलानी है ना तो पानी की जरूरत है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े इंजीनियर फट फट के इतना आगे बढ़ गए, इतने आगे बढ़ गए, वो मंगल और चंद्र पे चले गए, वहां जाकर भी पानी ढूंढ रहे, तो हम यहाँ पानी क्यों ना बचा पाए। तो पानी बचाने का सभी लोगों का धर्म है। तो गिर गंगा परिवार का तो एक ही ध्येय है कि हम हमारे जन्मदिन में डैम कैसे बना पाए, जब मेरे लड़के का जन्मदिन है तो उसमें डैम बनाए, जब मेरे स्वजनों की मृत्यु होती है, मेरे मम्मी और फादर, मेरे दादा दादी जो भी है, उसका नाम काम डैम क्यों ना बना पाए। ऐसे तरह से हम लोगों को जोड़ रहे हैं, समझा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को मैं बोलता हूँ कि अगर राष्ट्र का विकास करना है, सभी समस्या का विकास करना है ना, तो आप पानी में ध्यान दीजिए। सभी कंपनी के सीएसआर एक्टिविटी में अगर पानी पे लगाए जाए ना तो देश की 90 समस्या खत्म हो जाएगी। बाकी कोई भी सहाय है ना वो लोगों को आरसू कर रहे। मैं छोटा सा प्रसंग देता हूँ। थोड़े दिन पहले अमेरिका का एक भाई हमारे संस्था पे आए, बोले मेरे को जल्दी है, मेरे पास वक्त नहीं है, आप एक मिनट में आपकी संस्था को समझा दो। मैंने बोला आप दो बड़े डोनर मेरे को ढूंढ के दीजिए जो 10-10 करोड़ रुपया लगाते हैं, मैं आपको अच्छे दो गांव दिखाऊंगा। एक गांव में आपको 10 करोड़ रुपया गांव की सुविधा के लिए लगाना, लोगों की सुविधा के लिए, कि वहां पे गेट बनाना है बड़े बड़े, वहां पे बेंच लगानी है,

0: वहां पे गार्डन एक बनाना है, वहां की अगर श्मशान है उसको अच्छी डेवलप करनी है, लोगों को मैरिज के लिए एक वाड़ी बनानी है, वहां के जितने भी मंदिर है वो मंदिरों को जीर्णोद्धार करना है, नया बनाना है। और दूसरे गांव में 10 करोड़ मात्र के मात्र जल संचय में कि वहां चेक डैम बनाना, तालाब बनाना, बोर रिचार्ज, कुआ रिचार्ज, डैम बड़ा करना है, तो सिर्फ के सिर्फ जल संचय में लगाना है। 5 साल के बाद दोनों गांव की आप विजिट करने, क्या फर्क मिलेगा? जिस गांव आपके जल संचय के लिए आपने जो रुपया लगाए ना, उस गांव ने दूसरे गांव का 50% काम लोक भागीदारी से कर दिया होगा। और जिस गांव में आपने लोगों को सिर्फ सुविधा दी है, तो वहां के वही बेंच में बैठे बैठे वो हमारे राजकीय आगेवान को सिखाते रहेंगे कि इन लोगों को देश चलाना नहीं आता है। तो कहने का मेरा इरादा है कि पानी है तो खुशहाली है, तो पानी अगर मिल जाए ने, बाकी की सुविधा लोगों को आरसू करने की सुविधा है, तो बड़ी बड़ी कंपनी को मेरे हिसाब से पानी में ध्यान देना चाहिए, अपने अपने विस्तार में पानी लगाना चाहिए। मेरे वहां पे दो प्रसंग है छोटे। एक अमरेली डिस्ट्रिक्ट का एक किसान का फोन आया था कि दिलीप भाई, मैंने मेरी अगले साल दिकरी की शादी की थी, तो इस शादी में मैंने जो खर्चा तय किया था वो कर कसर से मैंने खर्च किया, तो इनमें से 2 से 2.5 लाख मेरा बचा, लेकिन मैंने रुपया तो दिकरी के नाम में इकट्ठा किया था। मैं सोच रहा था एक साल से कि इस रुपया के मैं क्या करूं, लेकिन आपको सुनने के बाद मेरे को एक विचार आ रहा कि 2-2.5 लाख मेरे पास है, 2-2.5 लाख में और आपको ढूंढ के देता हूं। मैंने जिस गांव में दिकरी दिए ना, इस गांव में मेरे को 4-5 लाख रुपया का छोटे मोटा एक चेक डैम और तालाब बना दीजिए, मेरे को मेरी दिकरी को करियावर में वो गांव में चेक डैम देना है। विचार चला मेरे जामनगर डिस्ट्रिक्ट में सोठा गांव के एक भी एक मीटिंग चल रही थी। कहने का मेरा इरादा है सभी लोगों में अगर ये जागृति आए ने तो और कामयाबी होगी। ऐसा दूसरा एक प्रसंग है, जामनगर डिस्ट्रिक्ट के कालावड़ तहसील का एक सोठा गांव है, वहां पे चालू गांव की सभा में एक बुजुर्ग खड़े हुए मेरे साथ आके वो मेरे को बोला कि आप सर 2 मिनट रुकिए, मेरे 2 लड़के इधर है, आप इसको खड़ा कीजिए। दोनों लड़के को खड़ा किया तो वो बुजुर्ग ने क्या बोला, बुजुर्ग ने बोला कि खबरदार, मेरे मरने के बाद आपने कोई खर्चा किया है, अगर आपको मेरे पास कुछ करना है तो मेरे नाम का गांव का तालाब खोद डालना। तब मेरे को बहुत खुशियां मिली। ये अवेयरनेस है ना, वो जागृति का काम कर रही है। तो ऐसे छोटे मोटे अवेयरनेस से लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हम इस गांव को आगे बढ़े रहे।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्तुत्व दिया है जल संचय से जन भागीदारी, और मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने उल्लेख किया है कैच द रेन, तो जल संचय के इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में राजकोट स्थित गिर गंगा परिवार ट्रस्ट के स्थापक प्रमुख दिलीप भाई सखिया और साथ में ट्रस्टी भरत भाई टिलवा उद्योगपति, आप आकाशवाणी अहमदाबाद स्टूडियोज में आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।
2: कैच द रेन, बचपन में जब बारिश होती थी हम सब कागज की नाव बनाकर बहते पानी में छोड़ दिया करते थे और खूब खुश होते थे, लेकिन क्या कभी आज हमने ये सोचा कि जिस पानी को हम बहकर नदी नालों में जाते हुए देखते हैं, वही पानी अगर जमीन के अंदर चला जाए तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के बहुत काम आ सकता है। इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा शुरू किया गया एक बेहद खास अभियान कैच द रेन। कैच द रेन सिर्फ सरकार का कोई कागजी अभियान नहीं है, बल्कि ये हम सब की जिम्मेदारी और हमारे कल की सुरक्षा की चाबी है। छतों से टपकते पानी को सहेजना हो, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना हो, या अपने इलाके के सोखता गड्ढों की सफाई करना हो, हर एक छोटा कदम हमारे गिरते भूजल स्तर को वापस ऊपर उठा सकता है। तो हम सभी अपनी ओर से जल संरक्षण का भरपूर प्रयास करेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं नीलम मलकानिया कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।

0: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। सिक्किम के नाथुला दर्रे के रास्ते से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा कल संपन्न हो गई। इसके माध्यम से 464 तीर्थयात्रियों ने 10 जत्थों में यात्रा की। यह यात्रा 20 जून को आरंभ हुई थी और अंतिम जत्थे के गंगटोक आने के साथ ही संपन्न हो गई। तीर्थयात्रियों ने चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात कर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की है। भारतीय उच्चायोग ने कल बताया कि इस बैठक के बाद तेल और गैस सहयोग पर सरकार से सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन और इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड तथा मॉरिशस के स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बीच एक समझौते का आदान प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गदेरी नदी के तेज बहाव में फंसे 9 लोगों को पुलिस, राज्य आपदा मोचन बल और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया है। 22 अगस्त को भारी बारिश के कारण गुफाओं वाले इलाके में नदी का जलस्तर बढ़ गया था। इसके बाद राज्य आपदा मोचन बल के जवान तेज बहाव के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बचाव के बाद उन सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और सुरक्षित पाए जाने पर उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया। फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल की महिला टीम ने कल कोटा किनाबालू में एएफसी महिला चैंपियंस लीग 2026-27 के ग्रुप ए के आखिरी शुरुआती दौर के मैच में मलेशिया के सबा फुटबॉल क्लब को 2-0 से हरा दिया। इस शानदार जीत के साथ ईस्ट बंगाल ने लगातार दूसरे साल टूर्नामेंट के मुख्य ग्रुप चरण में प्रवेश कर लिया है। अब ईस्ट बंगाल की पुरुष और महिला दोनों टीमें एक ही सीजन में एएफसी ग्रुप स्टेज में हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
0: हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपके रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ के साथ।

फिल्म का नाम ओपेरा हाउस और आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की, संगीत चित्रगुप्त का और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब। ये फिल्म 1961 में प्रदर्शित हुई थी और

ये एक रहस्यमय फिल्म थी जिसका निर्माण किया था ए नाडियाडवाला ने, और इस फिल्म को निर्देशित किया था पीएल संतोषी ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी अजीत, बी सरोजा देवी, केएन सिंह और ललिता पवार ने। अगला गीत फिर से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में।

हरियाली और रास्ता मूवी से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में, संगीत शंकर जयकिशन का और गीतकार शैलेंद्र साहब। ये फिल्म आई थी 1962 में और इस फिल्म को निर्देशित और निर्मित किया था विजय भट्ट ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मनोज कुमार और माला सिन्हा ने। ये फिल्म मनोज कुमार की पहली हिट फिल्म थी और इस फिल्म में शंकर यानी मनोज कुमार, शोभना, माला सिन्हा और रीता यानी कि शशिकला के बीच एक त्रिकोणीय प्रेम को बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाने की कोशिश की गई है। अगला गीत महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

धूल का फूल फिल्म से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में, संगीत दत्ता नायक का और गीतकार थे साहिर लुधियानवी। ये फिल्म आई थी 1959 में और इस फिल्म का निर्माण किया था बी आर चोपड़ा ने और निर्देशन किया था यश चोपड़ा साहब ने। यश चोपड़ा की ये निर्देशक के रूप में पहली फिल्म थी, हालांकि नया दौर फिल्म में वो एज ए सहायक निर्देशक के रूप में काम कर चुके थे। सातवें फिल्म फेयर पुरस्कारों में माला सिन्हा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और मुखराम शर्मा को सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए नामांकित भी किया गया था। अगला गीत गीता दत्त और आशा जी की आवाज़ में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:46 और 2 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म दिल एक मंदिर से सुन रहे थे आप ये गीत। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत था शंकर जयकिशन का। ये फिल्म आई थी 1963 में और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्देशन सीवी श्रीधर ने किया था और इसकी पटकथा लिखी थी राज बलदेव राज ने। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी, राजकुमार और महमूद ने अभिनय किया था। इस फिल्म के सभी गाने बहुत लोकप्रिय हुए। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट रही थी। और अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दिल का हाल कहते रहना चाहिए, क्योंकि दिल का हाल कहने से दिल हल्का रहता है। फिलहाल गीत सुहाने में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी कि 2 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। अब से फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है

0: एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का यह सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। मध्य प्रदेश के सांची सब पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन आज शाम करीब 5 बजे वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इस पोस्ट ऑफिस का नवीनीकरण किया गया है। सांची के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए इसकी इमारत को नया और आधुनिक रूप दिया गया है। सांची सब पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, आधार और पार्सल जैसी सेवाएं मिलेंगी। लोग डाक और वित्तीय सेवाओं का लाभ भी आसानी से उठा सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क नहीं देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस फीस में समुद्री पर्यावरण लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। सरकारी प्रसारक के अनुसार यह कदम हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक कार्रवाई योजना के अनुच्छेद 3 को मंजूरी मिलने के बाद उठाया गया है। दूसरी ओर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अहम जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। उन्होंने एक तस्वीर साझा की जिसमें हॉर्मुज जलडमरू मध्य को अमरीका का नया इलाका दिखाया गया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। महिला हॉकी विश्व कप में नीदरलैंड के एम्स्टलवीन में कल रात खेले गए दूसरे राउंड के अपने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारतीय महिला टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इस नतीजे के बाद ज्यादा गोल करने के नियम के कारण ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
0: हमें ऐसा एक और खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
2: Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released.

ड्रीम करते हुए कभी कभी मैंने महसूस किया है कि तुम्हारा कोई हिस्सा मेरे अंदर आ चुका है। प्रेम करते हुए कभी कभी मैंने महसूस किया है कि तुम्हारा कोई हिस्सा मेरे अंदर आ चुका है। कभी कभी मैंने तुम्हें मुझसा बर्ताव करते हुए देखा है। इस प्रमाण के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रेम दो व्यक्तियों को एक दूसरे के भीतर अमर कर देता है। एक मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12:03। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम रात को महसूस करते हैं बातों के साथ और गीतों के साथ। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

जब मोरनी आधी रात को बोल रही है तो फिर हमें डर किस बात का। चले आइए और जुड़ जाइए मेरे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, साथ वो जो साथ साथ चले। अगला गीत आप ही के लिए।

इतनी छोटी सी बात हमें समझ नहीं आती कि दिल उसे देना है जो जान दे दे। कई बार तो इस छोटी सी बात को समझने में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है और हम इस जिंदगी की सच्चाई को समझ ही नहीं पाते। जिंदगी में हम उसे ढूंढते हैं जिसे हम चाहते हैं, है ना, जबकि होना तो ये चाहिए कि तलाश उसकी हो जो हमें चाहता हो। क्या समझे? अगला गीत आप ही के लिए।

0: कर रहा हूँ।
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
2: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

0: जब प्यार में इतना खुल्लम खुल्ला ऐलान हो ही चुका है तो फिर क्या गिला और क्या शिकायत। मोहब्बत में शायद सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि किसी का हाथ थामकर हमें बस इतना कहना होता है कि ये सफर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। अगर आपको प्यार में इजहार करना नहीं आता तो फिर ये अगला जो गीत है ट्रेनिंग के लिए, आप ही के लिए।
1: ओहो, अरे कोई सांस तो छेड़ो, झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू।
2: नहीं नहीं नहीं,

0: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो,
1: अरे तू भी चुप हो जा।
2: खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
3: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
4: ऐसा क्या?
3: हाँ।

0: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच-सच देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गलियों पे निखार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

और तुम गए तो कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? हाँ, ये सवाल इतनी मासूमियत से पूछा गया कि वो बेबाक बादल ठहर गया, वो उसी गली बरस गया, वो उसी शहर में बस गया। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:43 और 15 सेकंड। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई।

एक बात कहूँ आपसे, जुबान से कहीं ज्यादा, जुबान से जो बातें कही जाती है उससे ज्यादा भरोसेमंद बातें होती हैं आंखों की। क्या आपने कभी किसी की आंखों में अपने लिए वो प्यार देखा है? अगर देखा है तो फिर आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई और इंसान नहीं। अगला गीत आप ही के लिए।

जब दिल किसी एक इंसान को चुन लेता है तो फिर भीड़ में भी नजरें उसी इंसान को ढूंढने लगती है ना। लाख चेहरे सामने आते हैं लेकिन दिल बार बार कहता है कि उसी इंसान को ढूंढा जाए, उसी इंसान को तलाशा जाए। मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि दिल हजारों लोगों, लाखों लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का हो जाता है।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी अर्चना बिसारिया। मुझे यानी अपनी रात की हम सफ़र मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिवस हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा

0: तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का यह सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। मध्य प्रदेश के सांची सब पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन आज शाम करीब 5 बजे वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इस पोस्ट ऑफिस का नवीनीकरण किया गया है। सांची की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए इसकी इमारत को नया और आधुनिक रूप दिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनुरू गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान वे मुसुनुरू में भारत का पहला गैर अनुवांशिक रूप से संशोधित उच्च विस्तार क्षमता वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज जारी करेंगे। साथ ही किसानों को सम्मानित करेंगे तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और अन्य प्रतिभागियों को भी संबोधित करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। यह सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के रोडमैप को आगे बढ़ाता है, जिसके अंतर्गत भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी समुदाय पीछे न छूटे समावेशी राष्ट्रीय विकास के प्रमुख स्तंभ हैं। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उड़के करेंगे। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस फीस में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। सरकारी प्रसारक के अनुसार यह कदम हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक कार्रवाई योजना के अनुच्छेद 3 को मंजूरी मिलने के बाद उठाया गया है। दूसरी ओर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस अहम जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल की महिला टीम ने कल कोटा किनाबालू में एएफसी महिला चैंपियंस लीग 2026-27 के ग्रुप ए के आखिरी शुरुआती दौर के मैच में मलेशिया के सबा फुटबॉल क्लब को 2-0 से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
2: हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day yesterday, PM Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache.

3:10 हुए हैं दोस्तों, आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम हमराही। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया।

दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें छुपाना चाहो भी तो दिल की खुशी चेहरे पर नजर आ ही जाती है। आंखें कुछ कहती हैं, मुस्कान कुछ राज खोल देती है, और फिर जमाना पूछता है आखिर माजरा क्या है। मोहब्बत जब दिल में दस्तक देती है तो उसकी आहट सिर्फ दो दिलों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसकी खुशबू आस

इस खूबसूरत गीत को हमने लिया था फिल्म ब्रह्मचारी से, और आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की। दोस्तों कहते हैं प्यार की सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसे वक्त की कसौटी पर परखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सच्चा प्यार हो तो वक्त बीतता जाता है मगर एहसास वही ठहरा रहता है। 60 के दशक का

एक ऐसे ही बेहद प्यारा सा रोमांटिक नगमा है जिसे हम आपको सुनवा रहे हैं, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुरी की है। इसी खूबसूरत मासूम और अटूट भावना को सुर देती है इस गीत के जो बोल हैं, वो इतने खूबसूरत हैं, और शंकर जयकिशन का संगीत इसे और भी खूबसूरत बना देता है। अब जब बात ही कर रहे हैं इस

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: हमराही कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मोहब्बत में एक खूबसूरत पल वो होता है जब दिल किसी को अपना मान ले और फिर दुनिया की कोई भी दूरी उस एहसास को कम नहीं कर सकती। कभी किसी की मुस्कान दिल को अपना बना लेती है तो कभी उसकी आवाज़ यादों में बस जाती है और फिर धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि कब कोई अजनबी हमारी ज़िंदगी का एक सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। तो आइए मोहब्बत के इसी मासूम और दिलकश एहसास के साथ सुनते हैं फिल्म आई मिलन की बेला का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, कभी कभी किसी का साथ इतना सुकून देता है कि दुनिया की सारी हलचल जैसे कुछ पल के लिए थम जाती है। पास होने का एहसास, आंखों की खामोश बातें और दिल में उठती एक मीठी सी लहर, यही तो मोहब्बत की खूबसूरती है। कुछ रिश्तों में शब्द कम पड़ जाते हैं क्योंकि एहसास खुद अपनी कहानी कहने लगते हैं, और जब दो दिल एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो पल किसी खूबसूरत गीत की तरह यादों में बस जाते हैं। तो आइए प्यार के उसी नर्म और खूबसूरत एहसास को महसूस करते हुए सुनते हैं फिल्म वक्त का ये खूबसूरत सा गीत, जिसे गाया है महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त

0: सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: 3:33 और 5 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और आज मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम में आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। दोस्तों, कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। उनकी धुन में जैसे कोई पुरानी याद धीरे से दस्तक देती है और दिल अनायास ही मुस्कुरा जाता है। कहते हैं ना, जब दिल में कोई बात हो तो जुबां खामोश हो, तो कभी कभी गीत वही बात कह जाते हैं जो हम खुद नहीं कह पाते। तो आइए यादों और मोहब्बत की इसी मधुर धुन में खो जाते हैं। सुनते हैं फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें का ये खूबसूरत सा गीत, आवाज सुमन कल्याणपुर और मुकेश की है।

दोस्तों, कभी कभी कोई तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं होती, वो किसी की याद बनकर दिल में उतर जाती है। फिर वक्त गुजरता रहता है, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में वो चेहरा वैसा ही महफूज रहता है। कुछ रिश्ते पास रहकर भी अधूरे होते हैं और कुछ दूर रहकर भी दिल के बहुत करीब होते हैं। यादों की यही खूबसूरती है, इन पर वक्त का ना असर होता है ना दूरी का। आइए सुनते हैं माया फिल्म का ये गीत, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

दोस्तों, मोहब्बत की यही तो खूबसूरती है कि किसी का होना हमारी नज़रों को भी एक नया नज़रिया दे देता है। फिर हर खुशी में उसी की झलक और हर धुन में उसी का एहसास सुनाई देने लगता है। तो आइए इसी खूबसूरत एहसास और दिलकश अंदाज के साथ सुनते हैं फिल्म बेटी बेटे का गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की।

दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें दूरियां भी मोहब्बत को कम नहीं कर पाती। बस एक आवाज़ और दिल को लगता है जैसे कोई बेहद अपना करीब करीब आ गया हो। मोहब्बत में इंतज़ार भी कितना खूबसूरत होता है, जब यकीन हो कि सामने वाला आपको याद करता है, आपकी आवाज़ सुनना चाहता है और बस एक पुकार की देर होती है। इसी प्यारे एहसास को अपने सुर में समेटे हुए है हमारा कार्यक्रम का ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म प्रोफेसर से।

दोस्तों, इस खूबसूरत गीत को अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कोई इंसान हमें इतना अपना लगने लगता है कि उसके बिना भविष्य की कल्पना भी अधूरी सी लगती है। लेकिन हर चाहत मुकम्मल हो ये जरूरी तो नहीं। कुछ रिश्ते दिल में उतरते हैं मगर किस्मत की किताब में उनका नाम नहीं लिखा होता। हम उन्हें भूलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन यादें कहाँ इतनी आसानी से हमारा साथ छोड़ती हैं। शायद प्यार का एक सच ये भी है कि हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता। कुछ कहानियाँ अधूरी रहकर भी दिल में हमेशा पूरी लगती हैं। तो चलिए इसी एहसास के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। एक बेहद खूबसूरत और दर्द भरा सा नगमा है। फिल्म का नाम है प्रेम रोग और आवाजें सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की।

हमराही कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की मुझे यानी अर्चना विस्तारिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का यह सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। मध्य प्रदेश के सांची सब पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन आज शाम करीब 5 बजे वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। भारत

0: सरकार के पोस्ट ऑफिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इस पोस्ट ऑफिस का नवीनीकरण किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरु में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। यह सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनुरू गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान वे मुसुनुरू में भारत का पहला गैर अनुवांशिक रूप से संशोधित उच्च विस्तार क्षमता वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज जारी करेंगे। साथ ही किसानों को सम्मानित करेंगे तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और अन्य प्रतिभागियों को भी संबोधित करेंगे। ईरान ने कहा है कि हॉर्मूज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस फीस में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। सरकारी प्रसारक के अनुसार यह कदम हॉर्मूज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक कार्रवाई योजना के अनुच्छेद 3 को मंजूरी मिलने के बाद उठाया गया है। दूसरी ओर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अहम जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। उन्होंने एक तस्वीर साझा की जिसमें हॉर्मूज जलडमरू मध्य को अमरीका का नया इलाका दिखाया गया है। महिला हॉकी विश्व कप में नीदरलैंड के एम्स्टल वीन में कल रात खेले गए दूसरे राउंड के अपने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारतीय महिला टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इस नतीजे के बाद ज्यादा गोल करने के नियम के कारण ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचा। इससे पहले दिन में नीदरलैंड ने चीन को 4-1 से हराकर बाहर कर दिया था। फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल की महिला टीम ने कल कोटा किनाबालू में एएफसी महिला चैंपियंस लीग 2026-27 के ग्रुप ए के आखिरी शुरुआती दौर के मैच में मलेशिया के सबा फुटबॉल क्लब को 2-0 से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build a global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
2: हमें ऐसा एक aura खड़ा कर देना चाहिए कि इस field में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई startup से जुड़ जाओ, भारत की कोई space agency से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा talent pool जो है एक magnet की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: मिस्टर मोदी स्टेटेड दिस ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन विद सीईओज एंड फाउंडर्स ऑफ 20 स्पेस स्टार्टअप्स रिसेंटली। अकॉर्डिंग टू द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द इंटरेक्शन व्हिच वाज रिलीज्ड ऑन नेशनल स्पेस डे यस्टरडे, पीएम मोदी आल्सो हाइलाइटेड इंडियाज कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इन लॉन्चिंग स्पेस वेंचर्स। ड्यूरिंग द इंटरेक्शन मिस्टर मोदी अर्ज्ड द स्पेस सेक्टर स्टार्टअप्स टू रिमेन कंसिस्टेंट इन देयर एफर्ट्स एंड बिल्ड अ रोबस्ट स्पेस सेक्टर इकोसिस्टम कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग टैलेंट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR हैज क्लैरिफाइड दैट नो न्यू स्ट्रेन ऑफ H1N1 कॉमनली नोन एज स्वाइन फ्लू हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड देयर इज नो कॉज फॉर पैनिक, एश्योरिंग दैट करंट वैक्सीन्स रिमेन इफेक्टिव। अकॉर्डिंग टू सीनियर साइंटिस्ट्स एट द ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. Union Home Minister Amit Shah will attend the 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. The two-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reached Moscow on a two-day official visit to Russia. During the visit, the minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade and Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. He will also meet Russian foreign

4:10 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और दोस्तों, ये वक्त है कार्यक्रम अरुणिमा का, और आपका एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ मैं, आपकी दोस्त अर्चना बिजारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी में कुछ मुलाकातें हमें सिर्फ खुशी नहीं देती, बल्कि हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। किसी की निगाहों में मिली उम्मीद, किसी की बातों में मिला भरोसा, ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे सफ़र को खूबसूरत बना देती हैं। लेकिन असली खूबसूरती तब है जब हम किसी याद को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लें। जो अच्छा मिला उसके लिए शुक्रिया, और जो छूट गया उसके मुस्कुराकर विदा कर दिया। तो आइए दिल की भावनाओं को हौसले की रोशनी में महसूस करते हैं फिल्म प्रेम पर्वत के इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा करके रख देती है जहाँ लगता है अब शायद कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, हालात चाहे जैसे भी हो, अगर हौसला जिंदा है तो कहानी अभी बाकी है। जिंदगी किसी दिन एक दिन की मोहताज नहीं होती। आज मुश्किल है तो कल आसान हो सकती है, आज रास्ता अनजान है तो कल मंजिल सामने हो सकती है। बस जरूरत है खुद पर भरोसा रखने की और हर सुबह एक नई शुरुआत करने की, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने डर से आगे निकल जाता है, उसी दिन जिंदगी उसके नाम से मुस्कुराना शुरू कर देती है। इसी उम्मीद, आत्मविश्वास और जीत के जज्बे को महसूस कराता है फिल्म सन ऑफ इंडिया का ये खूबसूरत संगीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

0: आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कभी कभी हमें लगता है कि जिंदगी तभी पूरी होगी जब हमारी हर चाहत पूरी हो जाएगी, लेकिन शायद जिंदगी की खूबसूरती इसी अधूरेपन में छिपी है। हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, किसी को मंजिल मिलती है तो रास्ता मुश्किल होता है, किसी के पास रिश्ते होते हैं तो वक्त कम पड़ जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिंदगी अधूरी है। जो मिला है उसकी कद्र करना और जो नहीं मिला उसके लिए उम्मीद बनाए रखना, ये भी तो जीने का हुनर है। कभी कोई कमी हमें मजबूत बनाती है, कभी कोई अधूरा सपना हमें आगे बढ़ने की वजह देता है। इसलिए अपनी कहानी की तुलना किसी और से मत कीजिए। आपकी राह, आपकी कहानी और आपकी रफ्तार सब आपकी अपनी ही हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए

कभी कभी जिंदगी हमें रोकती है, थकाती है, रास्ते बदलने पर मजबूर कर देती है, लेकिन हर रुकावट का मतलब हार नहीं होता। कई बार वही मुश्किलें हमें उस इंसान में बदल रही होती हैं जो हम बनना चाहते हैं। बस फिर एक दिन दिल कहता है, अब डरना नहीं, अब पीछे नहीं हटना, जो भी है सामने है और मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। जिंदगी से शिकायतें बहुत की, अब जिंदगी को गले लगाने की बारी है। नए सपने हैं, नई उम्मीदें हैं और कदमों में फिर वही भरोसा है कि मंजिल चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो, रास्ता तय किया जा सकता है।

जिंदगी हमेशा हमारी पसंद के मुताबिक नहीं चलती, कभी खुशियां देती हैं, कभी चुनौतियां सामने रख देती हैं। लेकिन शायद जिंदगी को खूबसूरत बनाने का राज यही है कि हम हर रंग को स्वीकार करना सीखें। मुश्किल दिनों से घबराए मत, ये दिन हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनाने आते हैं। गिरे तो संभलिए, थके तो थोड़ा ठहरिए, लेकिन अपने सपनों से रिश्ता मत तोड़िए, क्योंकि जिंदगी से लड़ते रहने के बजाय कभी कभी उसे पूरे दिल से लगाना भी जरूरी होता है। जो मिला उसके लिए शुक्रिया, जो नहीं मिला उसके लिए उम्मीद, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास।

4:40 और 32 सेकेंड हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ। दोस्तों, जिंदगी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि दिल में उतर जाते हैं। किसी की एक अच्छी बात, एक सच्ची मुस्कान या हौसले से कही गई छोटी सी बात कभी कभी इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। इसलिए अपनी बातों में मिठास रखिए और किसी के सपनों को छोटा करने के बजाय उन्हें उड़ान देने वाले शब्द दीजिए, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। वो किसी का दिन बदल सकते हैं, किसी का आत्मविश्वास लौटा सकते हैं।

ज़िंदगी हमेशा बड़ी बड़ी खुशियों का नाम नहीं होती। कभी कभी छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी उपलब्धियाँ और कुछ खूबसूरत पल मिलकर इसे खास बनाते हैं। हम अक्सर उस बड़ी मंजिल का इंतज़ार करते रहते हैं जहाँ पहुँचकर सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि सफ़र में मिलने वाले छोटे छोटे अनुभव ही हमें मंजिल के लिए तैयार करते हैं। इसलिए आज जो मिला है उसे महसूस कीजिए, छोटी जीत का जश्न मनाइए, अपने प्रयासों की कद्र कीजिए और हर नए दिन को एक नए मौके की तरह स्वीकार कीजिए।

दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि जिंदगी का सफर कभी सीधा नहीं होता। कहीं धूप है, कहीं छांव, कहीं उम्मीदें हैं, तो कहीं ऐसे मोड़ भी आते हैं जो हमें भीतर से बदल देते हैं। लेकिन हर मोड़ अपने साथ कुछ नया सिखाकर जरूर जाता है। इसलिए बीते हुए कल को बोझ बनाकर मत रखिए। जो अच्छा था उसे यादों में संजोइए, जो मुश्किल था उससे सीख लीजिए, और फिर पूरे भरोसे के साथ आज को जीना शुरू कीजिए। क्योंकि जीवन की असली खूबसूरती मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि हर पल को महसूस करते हुए आगे बढ़ने में है।

और दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में सिर्फ इतना कहूंगी कि हर इंसान के भीतर एक अधूरा सा सपना, एक अनकहा सा गीत और किसी अपनी की तलाश छिपी होती है। कभी वो ख्वाबों में मिलता है तो कभी ख्यालों में, और जब ये एहसास हकीकत का रूप लेता है तो जिंदगी जैसे एक नया अर्थ पा लेती है। तो कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रही हूँ डैडी फिल्म का ये गीत, तलत अजीज और दिलराज कौर की आवाज़ों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनुरु गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरु में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 तारीख तक 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सांची उप डाकघर का उद्घाटन आज शाम करीब 5 बजे वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। भारत सरकार के डाकघर आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इस डाकघर का नवीनीकरण किया गया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडे

0: तेरी नदी में तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस, एसडीआरएफ और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। सूचना मिलते ही बचाव दल घने जंगल और दुर्गम इलाके से होते हुए लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलकर घटनास्थल पर पहुंचा। एसडीआरएफ के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। राष्ट्रीय चिड़ियाघर नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। इसके साथ ही ये समाचार।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
2: हमें ऐसा एक aura खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day yesterday, PM Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. Union Home Minister Amit Shah will attend the 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. The two-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. Vice President C.P. Radhakrishnan will visit Musunuru village in Eluru district of Andhra Pradesh today. During his visit, the Vice President will launch India's first non-genetically modified organism, GMO, high expansion popcorn maize hybrid seed in Musunuru. He will also felicitate farmers and address agricultural stakeholders and other participants. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reached Moscow on a two-day official visit to Russia. During the visit, the minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade and Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. He will also meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a four-day visit to Japan from today till the 27th of this month, travelling to Tokyo, Nagoya and Osaka, leading India's largest ever business delegation to Japan. The delegation comprises more than 200 business representatives. The Commerce and Industry Ministry said that the visit reflects the scale of ambition both nations bring to their special strategic and global partnership and comes at a time when India and Japan are looking to significantly deepen trade and investment ties. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is

सुबह के 5:11 हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। एक बार फिर से मैं अर्चना बिसारिया आपका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म लोफर से।

0: गम का फसाना।
1: दोस्तों ये गीत है किशोर कुमार की आवाज में फिल्म पंचली से।
2: अच्छा जी,

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: भोर सुहानी में आइए अब आपको सुनवाते हैं लव स्टोरी फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और अमित कुमार ने।